0: वो है तुम्हारा मौला, बहुत ही अच्छा है वो मौला और बहुत ही अच्छा है वो मददगार। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك يا

يهديك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: नन्ही महक बच्चों के साथ खेल रही थी कि सोनी ने उसके ऊपर रेत फेंक दी। आमना ने कहा, सोनी पर तुम भी रेत फेंको और हम मिलकर उसे मारते हैं। महक ने कहा, नहीं नहीं, बदला नहीं लेते। महक बहुत मासूम और सादा अच्छी बच्ची थी। वो हर वक्त साफ सुथरी और निखरी निखरी रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। इसमें कोई भी बुरी आदत ना थी, ना कभी वो किसी से लड़ती थी, ना ही कोई गाली गलौज करती और ना ही किसी की बुराई करती थी, बल्कि बच्चों को बुरी बातों से रोकती थी और हर एक से प्यार से बात करती थी। बड़ों से अदब से पेश आती, हर काम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ती, कोई भी चीज खा कर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती। इसके मासूम से चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट खिली रहती थी। वो रस्ते में हर रुकावट को दूर करने की कोशिश करती थी। कोई केले का छिलका, झाड़ी या पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा देती। राह चलते जिससे भी मिलती सलाम करती। इतनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत सी अच्छी सी बातें सीख ली थीं। एक दिन महक के पापा हसन का बिजनेस पार्टनर सेठ अकरम से झगड़ा हो गया। क्योंकि उनका बिजनेस पार्टनर लालची और झूठा शख्स था, उसने हसन के बाबा से बदला लेने के लिए चंद गुंडों के जरिए महक को अगवा भी करवा लिया। नन्ही महक सहम कर रह गई। सेठ अकरम ने जब नन्ही महक की फोन पर उसके पापा से बात करवाई कि महक उनके पास है, तो

उसके पापा तो बहुत डर गए और सेठ अकरम ने कहा, अगर तुम अपना फ्रॉड का बयान वापस ले लो जो मैंने फ्रॉड किया है, तो मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत वापस कर दूंगा। तुम जानते हो कि मैं बदला लेना खूब जानता हूँ। हसन अली ने महक की आवाज फोन पर सुनकर सेठ अकरम से वादा कर लिया कि वो अपना बयान वापस ले लेंगे, क्योंकि उन्हें महक की जिंदगी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। महक ने सेठ अकरम से कहा, अंकल बदला नहीं लेते, बदला लेना बुरी बात है। आप अगर मेरे पापा से बदला नहीं लेंगे तो कोई और भी आपसे बदला नहीं ले सकता। सेठ अकरम नन्ही मुन्नी सी बच्ची की जबान से इतनी पुख्ता बात सुनकर हैरान रह गया। उसने महक को गोद में उठाया, प्यार किया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा कभी किसी से बदला नहीं लूंगा। ये कहकर उसने महक को अपनी गाड़ी में बिठाया और घर छोड़ाया और हसन अली से माफी मांगी और महक की बात भी बताई। और इस तरह एक भटके हुए इंसान को नन्ही बच्ची ने सीधी राह दिखाई।

0: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ कतर ग्रीन बीट पर। तो आज की कतर ग्रीन बीट की बीट्स क्या कहती है, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगी कि कैसे हैं आप, कैसा गुजर रहा है आपका ये वीक? हाँ, और मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। और आज की जो बात है ना, वो कुछ इस तरह से है कि आज हम अपनी उस लेगेसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जिक्र अभी सिर्फ हमारे कतर में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में हो रहा है। कभी कभी जब मैं शाम को लुसैल या अल जनूब के पास से गुजरती हूँ ना, तो मुझे अब भी वही पुरानी इंटेंसिटी महसूस होती है। वो लोगों का जुनून, स्टेडियम में गूंजते फैंस की आवाज़ें और हिस्ट्री बनते देखने का वो एक अलग ही जुनून, या यूँ कह सकते हैं एक अलग ही खुमार। क्या खूबसूरत बात थी उस टाइम पर, है ना? ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ हम पर टिकी थी। लेकिन अब जब फाइनल विसल बज चुकी है और फैंस अपने घर जा चुके हैं ना, तब एक नया सफर शुरू हुआ है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि इन बड़े बड़े जायंट्स का क्या होगा, क्या ये स्टेडियम सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? नहीं जनाब, कतर ने सिर्फ स्टेडियम्स नहीं बनाए, हमने एक मिराज, या यूं कहें हमने एक लेगेसी तैयार की है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज हम बात करेंगे स्टेडियम लेगेसी की। हम देखेंगे कि कैसे हर एक ईंट और हर एक सीट को 2030 के फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो चलिए, इस खूबसूरत खेल के जरिए एक खूबसूरत फ्यूचर की तरफ बढ़ाते हैं हम अपने कदम और अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं कतर ग्रीन बीट पर। तो कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: कतर ग्रीन बीट। वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ। और अब कतर ग्रीन बीट पर चलिए बात करते हैं द ग्रीन वायर की। तो जनाब, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेडियम का DNA कैसा होता है? अक्सर स्टेडियम पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट से बनते हैं, भारी भरकम और हमेशा के लिए एक ही जगह टिके हुए। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी इंजीनियरिंग की कहानी है जो किसी साईफाई मूवी या मार्वल फिल्म से कम नहीं लगेगी। मैं बात कर रही हूँ हमारे सबसे अनोखे, सबसे वाइब्रेंट और सबसे स्मार्ट स्टेडियम की, स्टेडियम 974। जब मैं पहली बार राज अबू अबूद के पास से गुजरी और दूर से इस स्टेडियम को देखा, तो मुझे यकीन ही नहीं आया। वो कलरफुल कंटेनर्स, वो स्टील का फ्रेमवर्क, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समुंदर के किनारे एक जायंट, वो जो बच्चों के ब्लॉक्स गेम होते हैं ना, उसका सेट तैयार कर दिया हो। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये कतर के माइंडसेट का एक जीता जागता सबूत है। आपने कभी सोचा है कि इसका नाम 974 ही क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी है। सबसे पहले तो ये हमारा इंटरनेशनल डायलिंग कोड है, कतर की पहचान है। जब भी कोई बाहर से फोन करता है तो 974 डायल करता है। लेकिन इसका दूसरा राज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टेडियम को बनाने में एग्जैक्ट 974 रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर्स का इस्तेमाल हुआ है। इमेजिन कीजिए वो कंटेनर्स जो कभी समुंदर में बड़े बड़े जहाजों पर सामान ढोते थे, आज उन्होंने मिलकर एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम बना दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा कवर्ड फुटबॉल स्टेडियम है जो पूरी तरह डीमाउंटेबल है, यानी इसका एक एक हिस्सा, एक एक कंटेनर और स्टील का एक एक बोल्ट खोला जा सकता है। ये कोई परमानेंट बर्डन नहीं है हमारे ज़मीन पर, बल्कि एक टेम्प्ररी इंतज़ाम है या एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट है जो बेमिसाल है। इसने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम में 5-star रेटिंग हासिल की है। क्या कमाल की बात है। और ये रेटिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ट्रेडिशनल स्टेडियम को बनाने में जितना कंक्रीट और पानी जाया होता है, 974 ने उसका एक छोटा सा हिस्सा ही यूज किया। इसने कार्बन फुटप्रिंट को इतना कम कर दिया कि दुनिया भर के इंजीनियर्स आज कतर की मिसाल दे रहे हैं। तो जनाब, असली करिश्मा इसकी कंस्ट्रक्शन में नहीं बल्कि इसकी लेगेसी में है। अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स के बड़े स्टेडियम वाइट एलिफेंट्स बन जाते हैं, यानी ऐसी इमारतें जो खाली पड़ी रहती हैं और जिनका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है। लेकिन स्टेडियम 974 का डेस्टिनी कुछ और ही है। इसके हिस्सों को बिल्कुल जैसे बच्चों के ब्लॉक गेम्स होते हैं, उसकी तरह अलग किया जाएगा। और पता है क्या होगा? ये कंटेनर्स और ये स्टील फ्रेम्स डेवलपिंग नेशंस में भेज दिए जाएंगे ताकि वहाँ के बच्चों के लिए छोटे स्पोर्टिंग वेन्यू, स्टेडियम या हेल्थ सेंटर्स बनाए जा सकें। हमने सिर्फ कतर के लिए स्टेडियम नहीं बनाया, हमने दुनिया के लिए एक स्टेडियम इन अ बॉक्स तैयार किया है। तसव्वुर कीजिए, आज जो कंटेनर हमारे दोहा में बैठकर हमें मैच दिखा रहा है, कल वही कंटेनर किसी और मुल्क में एक नया स्पोर्ट्स स्टार पैदा कर रहा होगा। क्या ये एनवायरनमेंट और इंसानियत के प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन कदम नहीं है? ये है कतर की असली पावर, सोच और अमल का सही मेल। जब मैं 974 के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा 974 होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, रिसोर्सफुल और हमेशा कुछ नया देने के लिए तैयार। हम अक्सर चीज़ों को परमानेंट समझ लेते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तब है जब हम रिसोर्सेज को इतने ध्यान से यूज़ करें कि हमारे जाने के बाद भी वो किसी और के काम आ सकें। तो आज का मेरा सवाल आप सबसे यही है कि आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या रीयूज़ कर सकते हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है जो आज आपका काम कर रही है लेकिन कल किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है? स्टेडियम 974 ने हमें सिखाया है कि इंजीनियरिंग सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का खेल नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस हमारी आने वाली नस्लों से है। कीप दिस थॉट इन योर हार्ट, हाँ जी, कि स्टे सस्टेनेबल, स्टे ग्रीन, बिल्कुल। और ये जो वादा हमने अभी किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ज़रिए, मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसे एक मिसाल की तरह इस्तेमाल करेगी और अपनी लाइफ को और सूदिंग बनाएगी। और मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट। आगे भी हमारी बातें बहुत सारी हैं बाकी, सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: कतर ग्रीन बीट।

वेलकम वंस अगेन. आप सुन रहे हैं अपनी अमिता को कतर ग्रीन बीट पर. अब वक्त है हमारे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट का. जी हाँ, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया. याद कीजिए, जब कतर को होस्ट चूज किया गया था इन 2022, तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? सब एक ही बात कर रहे थे कि इतनी गर्मी में फुटबॉल कैसे खेला जाएगा. उफ, लोग कह रहे थे कि इस डेजर्ट की धूप में प्लेयर्स थक जाएंगे और फैंस बेहाल हो जाएंगे. लेकिन कतर ने एक बहुत बड़ा वादा किया था, हम ना सिर्फ कूलिंग देंगे बल्कि हमारा टूर्नामेंट कार्बन न्यूट्रल होगा. अब ये तो वही बात हो गई कि आपको आग भी जलानी है और धुआं भी नहीं निकालना. हाँ, बहुत से लोगों को लगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कतर की मिट्टी में ऐसे जीनेसिस बेस है जो नामुमकिन को एक चैलेंज की तरह लेते हैं. और यहाँ एंट्री होती है हमारे रियल लाइफ सुपर हीरो की, जिन्हें दुनिया आज डॉक्टर कूल के नाम से जानती है, यानी डॉक्टर साउथ घानी. उनकी और गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने दिन रात एक कर दिए, एक ऐसा रास्ता निकाला जो सस्टेनेबल भी हो और असरदार भी. इन्होंने कूलिंग के पुराने तरीकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया. डॉक्टर साउद ने सोचा, हमें पूरे आसमान को ठंडा करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वहां ठंडक चाहिए जहां लोग हैं. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पॉट कूलिंग. ये एक रेवोल्यूशनरी सोलर पावर्ड सिस्टम है जो कन्वेंशनल एसी मेथड से पूरे 40% कम एनर्जी कंज्यूम करता है. डॉक्टर साउद ने एरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करके स्टेडियम को एक असली ठंडी थैली या यूं कहें कूल बबल में बदल दिया, जहां बाहर की गर्म हवा अंदर आ ही नहीं सकती. ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी जनाब, ये स्ट्रेटजी थी. अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता ये काम कैसे करता है. तो चलिए मेरे साथ इमेजिन कीजिए और अब आगे बढ़ के थोड़ा सा और डिटेल में हम इसकी जानकारी लेते हैं. जैसे कि अल जनूब और एजुकेशन सिटी इनके स्टेडियम्स हैं. स्टेडियम से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा सोलर फार्म लगा है, ठीक है. वहाँ कतर की तेज सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, वहीं बिजली ठंडा पानी जनरेट करती है जो स्टेडियम के अंदर पाइपिंग के जरिए आता है, लेकिन असली मैजिक सीट्स के नीचे है. अगर आप कभी स्टेडियम गए हैं तो आपने देखा होगा कि हर सीट के नीचे छोटे छोटे वेंट्स हैं. वहां से ठंडी हवा बिल्कुल धीरे से निकलती है, इतने धीरे कि प्लेयर्स को या फैन को डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इतनी असरदार कि आपको पसीना ना आए. और सबसे बेहतरीन बात, ये सिस्टम हवा को रीसाइकल करता है. ठंडी हवा स्पेक्टेटर लेवल पर आती है, फिर ऊपर जाती है, वहां से मशीन उसे वापस खींच लेती है, दोबारा ठंडा करती है और वापस भेज देती है. कुछ भी जाया नहीं होता. ये एक इटर्नल साइकिल है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हमें सुकून देता है. तो जनाब, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फुटबॉल स्टेडियम के 90 मिनट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसकी असली यूटिलिटी तो अब नजर आ रही है. आज यही टेक्नोलॉजी हमारे लोकल ग्रीन हाउसेस में यूज हो रही है. सोचिए, हमारे जो फार्मर्स हैं जो कतर की गर्मी में भी साल भर सब्जियां और फ्रूट्स या यूं कहें फल उगा सकते हैं, वो भी कम एनर्जी खर्च किए. इसका मतलब है हमारी फूड सिक्योरिटी और भी मजबूत हो रही है. इतना ही नहीं, अगर आप कटारा गए हैं या 21 हाई स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ की आउटडोर कूलिंग इसी टेक्नोलॉजी की देन है. कतर ने दुनिया को लीड करके दिखा दिया है कि डेजर्ट में रहने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बंद कमरों में रहें. हमने आउटडोर स्पेसेस को सस्टेनेबल बनाया है ताकि हमारी नेचर, हमारा लाइफस्टाइल दोनों साथ साथ चल सके. और जनाब, डॉक्टर कूल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान की लगन और साइंस मिलते हैं ना, तो कोई भी मौसम हमें रोक नहीं सकता. हमने सूरज की गर्मी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, सनलाइट से ही ठंडक पैदा की. ये कतर नेशनल विजन 2030 का एक बहुत बड़ा पिलर है. हम दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, हम इनोवेट करते हैं. हमने दिखा दिया कि साइंस और नेचर जब

0: एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो अगली बार जब आप स्टेडियम में बैठकर वो ठंडी हवा महसूस करें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एसी नहीं है, वो कतर का एक वादा है एक बेहतर और ठंडे फ्यूचर के लिए। हाँ जी, मैं हूँ अमिता आपके साथ, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट। अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की। आज हमारे स्टेडियम्स का एक ही कहना है, हाँ, रीयूज रीयूज और रीयूज, और यही सबक हमें अपने घरों तक ले जाना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इस स्टेडियम लेगेसी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो द गियर गिव बैक, हाँ जी, आपके पुराने फुटबॉल बूट्स या जर्सी जो अब छोटे हो गए हैं उन्हें डस्टबिन में मत फेंकिए। कतर चैरिटी और एजुकेशन अबव ऑल के ऐसे ही प्रोग्राम्स हैं जो इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को उन बच्चों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपकी पुरानी चीज किसी का ख्वाब बन सकती है। लोकल पिच लव, हाँ जी, हम सब कम्युनिटी पार्क्स और पिचेस यूज करते हैं। याद रखिए इनमें से कई वेन्यूज वर्ल्ड कप के मटेरियल से ही बने हैं, इन्हें इज्जत दीजिए, वहां रिसाइकल बिन्स का इस्तेमाल कीजिए और हमारे ग्रीन स्पेसेस को हमेशा साफ रखिए। होस्ट सस्टेनेबल गेम्स, यानी कि अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ मैच ऑर्गेनाइज करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को बाय बाय कहिए। सब लोग अपनी रीयूजेबल फ्लास्क साथ लेकर आए। अगर सिर्फ 22 प्लेयर्स 1 गैलन पानी का यूज करते हैं तो हम साल के 1000 प्लास्टिक बॉटल्स बचा सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क है। लुसेल का वो डेजर्ट रोज डिजाइन हो या अल्बेत का टेंट लाइक कैनोपी, हमारे स्टेडियम्स सिर्फ आर्किटेक्चर के नमूने नहीं हैं, ये एक प्रॉमिस है, ये एक वादा है जो पूरा किया गया है। इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मेगा इवेंट्स का मतलब मेगा वेस्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये स्टेडियम्स हमारे इनोवेशन के मॉन्यूमेंट्स बनकर खड़े रहेंगे। ये हमें याद दिलाते रहेंगे कि सबसे बड़ी जीत स्कोरबोर्ड पर नहीं होती, असली जीत वो है जो लेगेसी है, जो हमें आने वाली नस्लों को, जनरेशंस को देनी है और उनके लिए बनानी है। Well, मैं हूँ अमिता आपके साथ एंड आई एम वेरी सर्टेन कि आज का जो हमारा कतर ग्रीन बीट है उसका एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो क्या करना है, आपको अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस, अपने व्यूज हमसे शेयर करने हैं 6622107 पर, 6622107 पर, अपने नाम के साथ, और डेफिनेटली हम उन्हें ज़रूर कंसिडर करेंगे। और इसी के साथ अब आपको मुझे देना होगी इजाज़त क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का। आपकी मेरी मुलाकात होगी कतर ग्रीन बीट के अब अगले एपिसोड में। तो जाने से पहले कहूँगी हमारे सोशल मीडिया FM 107 से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी आरजे अमिता को सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। और अभी के लिए ना खूब सारा ख्याल रखिए और याद रखिए कि ये जो गेम की हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल है। रिस्पेक्ट द फील्ड, स्टे ग्रीन और कीप द बीट। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 103.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Sameen कहते हैं ना कि बंदर को साथ में रखोगे तो वो जरूर तुम्हारे कंधे पर सवार होगा. कहावत का मतलब ये है कि अगर किसी खास मिजाज वाले शख्सियत के साथ ताल्लुक रखते हैं हम या इनके साथ उलझते हैं तो आपको इनसे होने वाले नुकसान या तकलीफ को जरूर बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ही इस किस्म की सूरत हाल का इंतखाब किया है. अरबी जबान की कहावत है, इल्ली यलअब मअल गतु यस्बर अला खराबीशह, यानी जो बिल्ली पालता है, बिल्ली के साथ खेलता है, उसे जरूर उसके नाखूनों को बर्दाश्त करना होगा. इल्ली यलअब मअल गतु यस्बर अला खराबीशह.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

0: सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। डिस्टेंस छोटी मगर बहुत ही ताकतवर आदत है जो हमारी सेहत को हैरत अंगेज तौर पर बदल देती हैं। जी हाँ, हम यही बात करेंगे आज माइक्रो हैबिट्स पर। वो छोटी 30 सेकंड या एक मिनट की आदत जो सेहत पर बहुत ही अच्छा असर डालती हैं। ये आदत मुश्किल नहीं है मगर मुसलसल अपनाई जाएं तो नींद, हमारा दिमाग, हमारा वजन और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा दिल सब बेहतर होते चले जाते हैं। अब ये कि जो माइक्रो हैबिट्स हैं वो हैं क्या, और ये छोटे छोटे से अमल हैं, इनमें वक्त कम लगता है और लंबे प्लान की ज़रूरत नहीं होती मगर उसके असरात बहुत गहरे होते हैं। मिसाल के तौर पर 30 सेकंड के लिए कुछ पानी पीना और 2 मिनट स्ट्रेचिंग करना, 1 मिनट डीप ब्रीदिंग करना, ये सब हमारे जिस्म के जो निज़ाम हैं या हमारा जो सिस्टम है उसको रीसेट करते हैं। इसी तरह से फिर यह कि सुबह उठकर एक ग्लास नीम गर्म पानी लीजिए, वो हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें फ्लश आउट करता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह से 5 सेकंड आप इनहेल कीजिए और 5 सेकंड जो हैं उसे रोके रखिए, और जब एक्सहेल करें तब भी आप 5 सेकंड जरूर लीजिए। उससे दिल की धड़कन जो है वो तेज़ सही हो जाती है, ज़हनी दबाव कम होता है और हम एक्टिव हो जाते हैं। खाने से पहले 30 सेकंड के लिए रुकना, यानी ये ब्रेन को प्रिपेयर्ड करता सिग्नल देता है, ओवर ईटिंग कम करता है और जो शुगर की स्पाइक आती है उसे भी कम कर देता है। तो हर 30 से 40 मिनट के बाद 1 मिनट खड़े होकर चलना, और जो मोबाइल फ़ोन है वो सोने से 40 मिनट पहले बंद कर दीजिए। और इसी तरह से नमकीन चीज़ों के बाद 2 जो सिप्स हैं वो आप इजाफी पानी ले लीजिए। हर 3 घंटे के बाद आप 12 बार डीप शोल्डर रोल्स जो है वो आप कीजिए। इन तमाम चीज़ों पर हमें फोकस करना है। छोटी छोटी सी आदत हैं मगर ये है कि हम अगर इसे अपनाएं, क्योंकि सेहत बदलने के लिए, सेहत को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े मंसूबे नहीं बल्कि छोटे छोटे आसान और रोज़मर्रा के जो माइक्रो स्टेप्स हैं वो हमें चाहिए। और अगर आप और हम आज से ही सिर्फ 3 माइक्रो हैबिट्स जो शुरू कर दें तो आप 4 हफ्तों में अपनी सेहत में बहुत ही वाज़े बेहतरी देखेंगे। Health for All,
1: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107, Dil Se Desi.

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे कतर के एक वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स मुबारक मुस्तफ़ा के बारे में। मुबारक मुस्तफ़ा कतर फुटबॉल और अल अरबी क्लब की तारीख के सबसे नुमाया खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। उन्होंने अपनी गैर मामूली स्किल्स और शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत फुटबॉल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। वो कतर फुटबॉल के गोल्डन एरा की निशानी थे और खास तौर पर अल अरबी क्लब की तारीख में उनका किरदार बहुत अहम रहा। दोस्तों 1990 की दिहाई में मुबारक मुस्तफ़ा ने अल अरबी को बेशुमार चैंपियनशिप जितवाने में अहम किरदार अदा किया और इसी शानदार दौर की वजह से अल अरबी क्लब को उस वक्त द ड्रीम टीम के नाम से भी जाना जाता था। मुबारक मुस्तफ़ा ने 1985 में अल अरबी क्लब की यूथ टीम को ज्वाइन किया और सिर्फ 17 साल की उम्र में 1990 में फर्स्ट टीम का हिस्सा बन गए। करियर के आगाज में वो राइट बैक के तौर पर डिफेंसिव पोजीशन पर खेलते थे लेकिन बाद में विंगर और फिर स्ट्राइकर बन गए और अपनी गोल स्कोरिंग सलाहियत की वजह से वो अल अरबी क्लब की तारीख के बेहतरीन गोल स्कोरर्स में शुमार हुए और क्लब के साथ कई डोमेस्टिक टाइटल्स जीते। दोस्तों कतर की कौमी फुटबॉल टीम के लिए भी उनका करियर इंतहाई कामयाब रहा। उन्होंने 1992 बर्सलोना ओलंपिक गेम्स में कतर की नुमाइंदगी की जहां टीम ने क्वार्टर फाइनल्स तक क्वालिफाई की और इसके अलावा उन्होंने दोहा में मुनक़द 11th और 17th अरबियन गल्फ कप जीतने वाली कतरी टीम का भी अहम हिस्सा बनकर मुल्क का नाम रोशन किया। इंफरादी तौर पर भी मुबारक मुस्तफ़ा ने बहुत से कामयाबी हासिल की। उन्हें 1992 और 1998 में दो मरतबा गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया जो उस दौर के बेहतरीन अरब फुटबॉलर को दिया जाता था। उनकी कामयाबियां आज भी कतर फुटबॉल की तारीख का एक रोशन बाब मानी जाती हैं और वो नई जनरेशन के फुटबॉलर्स के लिए एक मिसाल है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम जानेंगे कि जो बर्न आउट है उस कैफियत से बाहर निकलने और जिंदगी में दोबारा तवाजुन पैदा करने के लिए क्या क्या इकदामात किए जा सकते हैं। बर्न आउट से बहाली का पहला कदम ये तस्लीम करना है कि आप यहाँ मुसलसल दबाव और थकन का शिकार हैं। अपनी कैफियत को नज़रअंदाज करने के बजाय उसे समझना और कबूल करना ज़रूरी है। बहाली के चंद जो तरीके हैं वो ये हो सकते हैं कि रोज़ाना 7 से 9 घंटे मायारी नींद हमारे जिस्म और दिमाग की बहाली के लिए बेहद ज़रूरी है। अपने दिन में मुख्तसर वक्फे शामिल कीजिए। मुसलसल काम करने के बजाय चंद मिनट का आराम और जहनी तवानाई बहाल करने में बेहद मददगार साबित होता है। रोजाना वॉक कीजिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए या जो स्ट्रेचिंग है वो आप कर लीजिए। इससे जहनी दबाव कम करने और मूड बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मतवाजन गजा जिस्म को जरूरी तवानाई फ्राहम करती है और थकन को भी दूर करती है। और हर जिम्मेदारी कबूल करना जरूरी नहीं है, बाज़ोकात नहीं कहना भी अपनी सेहत की हिफाजत का अहम हिस्सा है। अपने जज्बात और परेशानियों को काबिले एतमाद अफराद के साथ शेयर करना ज़हनी बोझ कम कर सकता है। अब डीप ब्रीथ कीजिए, यानी गहरी सांसें लीजिए, मुराकबा और जो ज़हनी आगाही है, माइंडफुलनेस है, उसकी जो एक्सरसाइज है वो ज़हनी सुकून पैदा करती है। अगर बर्न आउट के अलामात शदीद हों या रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको मुतासिर कर रही हों तो किसी माहिर नफ्सियात या ज़हनी सेहत के माहिर से मशवरा करना नहायत मुफीद साबित हो सकता है। सामिन, अच्छी कारकर्दगी के लिए मुसलसल काम नहीं बल्कि

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नासिया।
3: One Step to 2030.
2: और आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूथ इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर की। आज के इस मॉडर्न दौर में, आज के इस दौर में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यूथ इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर आगे बढ़ाया जाए। और ये कल्चर किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए बड़ा ही अहम समझा जाता है। दुनिया भर में यंग एंटरप्रेन्योर्स नए आइडियाज और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स के जरिए इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की तरफ इनकरेज कर रहे हैं। वेल, यूथ इनोवेशन से मुराद है कि यंग जनरेशन अपने क्रिएटिविटी, नॉलेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके नए आइडियाज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या सॉल्यूशंस डेवलप करें जो सोसाइटी के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकें। आज के यूथ के पास डिजिटल टूल्स, इंटरनेट, डेटा एनालिटिक्स और ग्लोबल नॉलेज एक्सेस है, जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा रैपिडली इनोवेशन कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्टार्टअप कल्चर एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां यंग एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेकर नए बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप्स अक्सर किसी प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इनोवेशन को मार्केट तक पहुंचाते हैं। आपको पता ही है कि कितने सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका हमने कभी सोचा ही नहीं था, कभी स्टार्टअप हुई नहीं थी और आज ये मैं नाम क्यों लूं, बड़े ग्लोबल ब्रांड्स बन चुके हैं। तो स्टार्टअप कल्चर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस थिंकिंग को चेंज करता है। पहले लोग स्टेबल जॉब्स को करियर का एक बेहतरीन रास्ता समझते थे, लेकिन आज कई यूथ प्रोफेशनल्स अपने स्टार्टअप लॉन्च करने को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस का जरिया नहीं है बल्कि इनोवेशन और इम्पैक्ट क्रिएट करने का भी एक प्लेटफॉर्म है। आज की इस डिजिटल इकोनॉमी में यूथ के पास बहुत से अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ई कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थ टेक, एड टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटीज और ना जाने क्या कुछ। एक अच्छा आइडिया और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी कई मरतबा बड़ी इन्वेस्टमेंट के बगैर भी सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए, इनोवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है क्यूरियोसिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। यंग लोग जब अपने आसपास के मसाइल देखते हैं और उनका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इनोवेशन पैदा होता है और शायद इसी प्रोसेस से सक्सेसफुल स्टार्टअप जन्म लेता है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, ट्रैवल का नाम सुनते ही हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है, जैसे मेरे चेहरे पर अभी आई है। भाई, नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना और ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाना। देखिए भाई, सफर जो होता है ना, वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस में से एक होता है। चाहे फैमिली वेकेशन हो, बिजनेस ट्रिप हो या वीकेंड गेटअवे हो, हम सब ये चाहते हैं कि भाई हमारा सफर कंफर्टेबल और एंजॉयबल हो। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारे ट्रेवल चॉइसेस का एनवायरनमेंट पर भी असर होता है? ट्रांसपोर्ट, होटल स्टे, फूड चॉइसेस और डेली हैबिट्स, ये सब मिलकर नेचर को अफेक्ट करते हैं। तो भाई, हमारा आज का इको स्विच का टॉपिक है इको हैबिट्स ड्यूरिंग ट्रेवल, यानी सफर का मजा लेना लेकिन एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए। अच्छा, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, टूरिज्म और ट्रैवल दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये एक फैक्ट है। लेकिन ज्यादा ट्रैवल के साथ कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी आते हैं। मिसाल के तौर पर, ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन से कार्बन इमिशन बढ़ती है, सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स और पैकेजिंग वेस्ट क्रिएट होता है, होटल्स में पानी और एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ट्रैवल के दौरान हम कभी कभी अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट कर देते हैं। साथियों, जरा सोचिए, अगर एक टूरिस्ट एक जगह पर कुछ दिन के लिए जाता है और हर दिन डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करता है, लाइट और एयर कंडीशनिंग का जरूर इस्तेमाल करता है, जरूरत से ज्यादा, तो उसका इम्पैक्ट भी होता है भाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि सफर को इको फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं होती, बस कुछ स्मार्ट चॉइसेस काफी होती हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल इको स्विच सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, तो साथियों, ट्रैवल के दौरान कुछ सिंपल इको हैबिट्स अपनाई जा सकती हैं। पहली चीज ये कि रीयूजेबल आइटम्स साथ रखें। सफर पर निकलते वक्त अपनी रीयूजेबल वाटर बॉटल, कॉफी कप और शॉपिंग बैग साथ रखें। इससे सिंगल यूज प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो कम होता है। दूसरी चीज ये कि ट्रांसपोर्ट स्मार्टली चूज करें। जहां मुमकिन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग या शेयर्ड ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस प्रेफर करें। अगर किसी सिटी को एक्सप्लोर करना है तो पैदल चलना शुरू कर दें। सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है भाई। तीसरी चीज है होटल में एनर्जी सेव करना। देखिए, होटल रूम से निकलते वक्त आप लाइट्स, टीवी और अननेसेसरी जो अप्लायंसेस होते हैं ना, उनको बंद कर दें। एयर कंडीशन को रिस्पॉन्सिबल टेम्परेचर पर रखना भी एनर्जी बचाने में मदद करता है। चौथी चीज है पानी की कदर करें। भाई देखें, ट्रैवल के दौरान भी पानी को वेस्ट ना करें। टॉवल और बेड लाइन को रोज चेंज करवाना जरूरी ना हो तो होटल के सस्टेनेबल ऑप्शंस फॉलो करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकल चीजों को सपोर्ट करें। देखिए, लोकल रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और प्रोडक्ट्स को चूज करना, लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करना और कभी कभी ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को भी ये चीजें कम कर देती हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखें। अगर एक रियल लाइफ

0: फॉर एग्जाम्पल ली जाए साथियों, तो बहुत से ट्रैवलर्स अब अपनी ट्रिप्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सफर पर अपनी रियूजेबल बॉटल्स और शॉपिंग बैग्स जरूर लेकर जाते हैं। कुछ फैमिलीज वेकेशन के दौरान एक रूल फॉलो करती हैं कि जितना कम वेस्ट क्रिएट हो उतना बेहतर है। कुछ ट्रैवलर्स होटल्स में सिर्फ उतनी ही चीजें यूज करते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फैमिली बीच वेकेशन पर जाती है तो वो अपना कचरा साथ कलेक्ट करती हैं और जगह को साफ छोड़कर जाती हैं। ये छोटी छोटी आदतें एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर की पहचान होती हैं साथियों। तो भाई आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगली बार जब आप ट्रैवल करें तो एक इको फ्रेंडली हैबिट जरूर अपनाएं, चाहे वो रियूजेबल वाटर बॉटल रखना हो, वेस्ट कम करना हो या एनर्जी सेव करना हो। और हमें जरूर बताएं कि आप ट्रैवल के वक्त कौन सी एक ऐसी आदत अपनाते हैं जो एनवायरमेंट के लिए बेहतर होती है। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए, सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं होती बल्कि इस बात में भी होती है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक

शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल।

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल शो कॉल्ड इंस्पायरिंग विमेन.
1: इंस्पायरिंग विमेन, उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है.
0: दोस्तों, इस शो में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी विमेन लीडर से जो अपने काम, अपने जज्बे और अपनी अप्रोच से सोसाइटी में फर्क ला रही हैं. आज हमारी मेहमान एक डायनामिक एंटरप्रेन्योर है. फैशन, स्किन, सलोन बिजनेस और फिटनेस वर्ल्ड में उनका नाम धीरे धीरे ब्रांड बन रहा है. आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा राशिद, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन जिन्होंने कतर में अपने सलोन चेन स्टैब्लिश की है, स्किन केयर और फैशन की फील्ड में नए स्टैंडर्ड्स को सेट किया है और साथ ही फिटनेस ट्रेनिंग को ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट किया है. चलिए इनको वेलकम कहेंगे एफएम 107 पे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, कैसी हैं आप?
2: वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर.
0: Pleasure to have you here and we are really looking forward for some very interesting and exciting conversations, inshallah. So Aisha, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इतनी सारी fields में जो है वो कामयाबी हासिल की है, फिर चाहे fashion हो, skin care हो या आपका अपना setup हो, अपना initiative हो, इस सभी journey का सबसे बड़ा आपका secret success का क्या है?
2: सबसे बड़ा सीक्रेट जो होता है ना सक्सेस का, वो फैमिली सपोर्ट होती है. सो जब आप कुछ करने को सोचते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करने को सोचते हैं, एंड एज ए वूमेन, सो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होती है ना वो आपके हस्बैंड की होती है. सो हस्बैंड की और बच्चों की, क्योंकि जब कोई औरत बाहर निकलती है काम करने के लिए, उसको अपने घर से थोड़ा सा कट करना पड़ता है. तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट मिलती है वो अपनी फैमिली से मिलती है, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना है, बाहर भी जाना है, पूरे दिन बाहर रहना है.
0: या ब्यूटीफुल. अच्छा, कतर का जो मार्केट है या उसका कल्चर जो है वो थोड़ा सा यूनिक है, और अगर सलोन की बात की जाए तो ये चेन जो है इसे एस्टैब्लिश करना यहाँ इस कल्चर में थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहा होगा, तो किस तरह के चैलेंजेस को इनिशियली आपने फेस किया?
2: हाँ जी बिल्कुल. एक्चुअली यहाँ पे मिक्स कल्चर के लोग होते हैं, तो जब वो आते हैं सलोन में, सबकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है उनका. सो उनको हैंडल करना, वो सारा क्रेडिट जो जाता है ना वो मेरी टीम को जाता है. मैं भी हैंडल करती हूँ, बट मोर इज अबाउट माई टीम. जो टीम है मेरी, वो मेरी फैमिली है.
0: Oh, wow.
2: So they are with me 16 years. They are very expert के अरब नेशनल को किस तरह ट्रीट करना है, यूरोपियन को किस तरह, क्योंकि हर तरह का हमारे पास क्लाइंट आता है. सो उनको समझाना, उनको चीज़ें एक्सप्लेन करना, क्योंकि हबीब हेयर एंड ब्यूटी इट्स इंडियन फ्रेंचाइज, तो उसमें यूरोपियन भी आते हैं, अमेरिकन भी आते हैं, और अरब्स भी आते हैं, और हमारी एशियन कम्युनिटी भी आती है. सो सारा क्रेडिट जो है ये मेरी टीम को जाता है. वो बहुत अच्छी तरह उनको हैंडल करती है, उनको एक्सप्लेन करती है कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं. सो या
0: ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा आयशा, थोड़ा हम आपको जो है ना आपके पास्ट में लेके जाना चाहेंगे, आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहेंगे. क्या कोई ऐसी दिलचस्प बात आप हमें बताना चाहेंगी जिसने कहीं ना कहीं आपको मुतासर किया इस बिजनेस की तरफ आने के लिए?
2: बहुत ही फनी सी चीज़ है.
0: अच्छा, ओके.
2: क्योंकि सलोन्स पे जाने मुझे ना बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना, अपने अच्छे बाल बनाना, अच्छी कपड़े पहनना बहुत शौक था सलोन्स पे जाने का. तो जब मैं सलोन्स पे जाती थी, आई वाज 17 और 18, सो वहाँ पे जब बिल बनता था ना तो मुझे बहुत
0: खलता था.
2: तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं मैं कोई इस तरह से कुछ करूँ, मैं अपना खुद का सलून खोलूँ. तो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी. सो मैंने अपने फैमिली को बोला कि मुझे सलून खोलना है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा. बहुत ही फनी सी चीज है, मुझे पैसे देते भी ना,
0: पैसे खल रहे थे. तो खल रहे थे. और जब सर्विसेज देती हैं वो काफी अफोर्डेबल हैं?
2: अफोर्डेबल बिल्कुल है, अफोर्डेबल. हमारे पास हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं. देखिए, तो हमने सबके लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, तो उसमें उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं अगर हम पैकेजेस देते हैं. तो इतना ज़्यादा पेमेंट, क्योंकि सब तरह की कम्युनिटी है, सबको हमें हैंडल करना है. मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी आए और वो सलोन से बिना सर्विस के बाहर जाए. सो 100% देने की कोशिश करती हूँ मैं भी और मेरी टीम भी उनको.
0: एक अच्छे बिजनेसमैन होने की निशानी है, बिजनेसमैन होने की
2: इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बस क्लाइंट हैप्पी होके जाए, सेटिस्फाइड होके जाए. That's first and foremost. Beautiful. बहुत अच्छी बात की. अच्छा, जब आपने पहली बार अपना जो था प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उस वक्त का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि मुझे सब छोड़ देना चाहिए?
3: नहीं, ऐसा फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको खोला था तो एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत था, क्योंकि मैं काफ़ी कोर्सेज करती रहती थी रिलेटेड टू ब्यूटी, रिलेटेड टू हेल्थ. आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर ऑल्सो, आई एम ए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ऑल्सो. सो ये सब कोर्सेज मैंने करे हुए हैं, तो एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में गई थी. तो बीच में येस ऑफकोर्स कोविड के टाइम पर इस तरह की चीज़ें हुई थी कि वो हैंडल नहीं हो पा रहा था. सो वो टाइम आया था, वो टाइम काफ़ी डिफिकल्ट था, कि हम लोगों के ऑलमोस्ट 5 फ्रेंच लोकेशंस थी यहाँ पे, जो कोविड टाइम पे हमें काफ़ी मुश्किलें आई हैं. हमने उसको फिर बंद करा है, तो आई थी इस तरह की सिचुएशन और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू नॉर्मल,
2: अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, जब आप कोई अपना नया फैशन कलेक्शन या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट ऑफ कोर्स लॉन्च करती हैं, तो उसका रिसर्च प्रोसेस कैसा होता है? क्या आप पर्सनली टेस्टिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो पाती हैं?
3: अब बिल्कुल, ये स्टार्ट होता है क्लाइंट की फीडबैक से. Okay. क्लाइंट को उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको क्या चाहिए, फिर जब हमें पता चलता है तो फिर हम रिसर्च करते हैं. हम लोग ब्यूटी एग्जीबिशंस होती हैं लाइक सऊदी अरब में वर्ल्ड बिगेस्ट ब्यूटी एग्जीबिशन होती है दुबई में, उसको हम अटेंड करते हैं, वहाँ हम जाते हैं. मैं खुद पर्सनली जाती हूँ, अपने स्टाफ को भी लेके जाती हूँ, और फिर वहाँ पे रिसर्च होती है, फिर हम उसके एक्सपर्ट से मिलते हैं, फिर हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कराते हैं, और फिर जब कोई चीज़ हमें समझ आती है उसको फिर मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ. चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे नेल्स हो, कुछ भी हो, सबसे पहले मैं अपने ऊपर उसको ट्राई करती हूँ. जब मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, जब मुझे समझ आता है कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी स्किन केयर है, स्किन के लिए अच्छा है या बालों के लिए अच्छा है, तब मैं उसको उसमें सलून में लेके आती हूँ.
2: वेरी वेल सर. वेल, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इस शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के.

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: अच्छा ऐसा, यहाँ की अगर बात करें स्पेशली मिडल ईस्ट की, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट, ह्यूमिड और हार्श है। तो ऐसे में जब आप स्किन केयर फॉर्मुलेशंस को बनाती हैं, जब उसको प्रिपेयर करने का प्रोसेस चल रहा होता है, तो किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होता है?
2: एक्चुअली दोहा का जो है क्लाइमेट काफ़ी ड्राई है, तो स्किन लोगों की बहुत सन एक्सपोज बहुत ज़्यादा है। ड्राइविंग मदर्स जो होती हैं वो ड्राइविंग करती हैं, तो हमारे पास जितने भी स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो है था ना, वो स्किन की स्किन के डिहाइड्रेशन से रिलेटेड हो जाती है स्किन, उस तरह के हम सर्विसेज देते हैं। उसमें ऑर्गेनिक सर्विसेज भी हैं और हमारे जो प्रोडक्ट हैं केमिकल फ्री, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल्स हैं, जो गुड ब्रांड्स हैं, लग्जरी सलोन्स में यूज हो रहे होते हैं, सो वही हम प्रोडक्ट यूज करते हैं विदाउट केमिकल फ्री।
1: ओह ब्यूटीफुल, फिर तो मुझे भी ट्राई करना है।
2: बिल्कुल आप आ रही हैं बस।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे पता चला कि आप एक सर्टिफाइड जो हैं वो फिटनेस ट्रेनर भी हैं, सो ये फिटनेस का एलिमेंट जो है आप किस तरह से अपनी सर्विसेज में भी इंक्लूड कर पाते हैं?
2: ओके, एक्चुअली फिटनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, और आप जब अंदर से आपकी आपकी गट हेल्थ, आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी तभी आपके वो फेस पे आएगी। अगर आप अंदर से ही ठीक नहीं है, आपकी गट हेल्थ या इंटरनल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो आप डल भी रहते हैं, आप फ्रेश भी नहीं होते हैं। तो हम क्लाइंट्स को बताते हैं, क्योंकि मेरे पास एक अलग से भी ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उसमें हम क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। सो सलून के अंदर ये सब कुछ लेके हम लोग चलते हैं।
1: देखिए बहुत सारी ऐसी वर्किंग लेडीज हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो चाहती तो हैं कि वो एक्सरसाइज करें और सारी चीज़ें, लेकिन टाइम नहीं है, तो फिर ऐसे में कैसे गुड बैलेंस बनाया जाए?

0: उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करती हैं, और व्हाइल रिक्रूटिंग देम किन क्वालिटीज़ को आप सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत देती हैं?
1: ओके, जो मेरी टीम है वो टीम तो नहीं है, वो मेरी फैमिली है.
0: ओके, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आप फैमिली कहिए.
1: वो मेरी फैमिली है, उनको मोटिवेट करने, उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनके काम को अप्रिशिएट करती हूँ, उनको ट्रेनिंग्स पे दिलवाती हूँ, उनको उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करती हूँ, क्योंकि वो भी आए हुए होते हैं यहाँ पे अपनी फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के. तो उससे रिलेटेड मैं इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ. और जब मैं रिक्वायरमेंट वाले उस पर आती हूँ, सो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड का बहुत अच्छा होना, ऑफकोर्स एक्सपीरियंस भी, लेकिन एक अच्छी वाइब्स आना, अच्छा एटीट्यूड होना, स्माइली फेस होना, मैं ये सब चीज़ें बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है.
0: और आप इसका ध्यान?
1: मैं बहुत ध्यान रखती हूँ.
0: अच्छा, आने वाले 3-4 सालों में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल विजन्स क्या हैं? क्या कोई नया वेंचर भी लॉन्च करना चाहती हैं? एक तो आपने बात की,
1: वो ही,
0: उसके अलावा भी
1: नहीं,
0: कुछ
1: नहीं है? मैं इंशाल्लाह मेरी जो अभी नई चीज़ है वो इंशाल्लाह दुबई में ओपनिंग होने वाली है. दोहा में प्लान मेरे हैं, नॉट नाउ बट मे बी आफ्टर 2 years और 3 years मैन से रिलेटेड सलून खोलने का.
0: ओके, बातचीत

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: आपके नजदीक सक्सेस का एक्चुअल में मतलब क्या है? व्हाट इज सक्सेस टू यू?
2: लोगों का प्यार? लोगों का जो प्यार है वही सक्सेस है। अगर आपको नजर आ रहा है कि हर जगह आपको लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सो आई थिंक मेरे लिए तो वही
1: सबसे इम्पोर्टेंट
2: सबसे इम्पोर्टेंट है।
1: वेरी वेल सर। अच्छा, आप क्या ये मानती हैं, समझती हैं कि जो इनर हीलिंग है या फिर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिजनेस सक्सेस के लिए अहम है?
2: बिल्कुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनर हीलिंग आपकी जो होती है, जब आप अंदर से हेल्दी फील करेंगे, आप मेंटली रिलैक्स फील करेंगे, सो ऑफ कोर्स
1: इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपका खुद का मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है? आर यू अ कॉफी पर्सन या फिर आपको चाय पसंद है? किस तरह से आप खुद को जो है ना हेल्दी रखती हैं और अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट किस तरह से करती हैं?
2: ब्लैक कॉफी
1: विद घी। ओके, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आप एग्जैक्टली बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को?
2: ब्लैक कॉफी विद घी इज रिलेटेड टू योर इंटरनल हेल्दी गट, जो आपके अंदर मॉइस्चर और सो जस्ट वन टेबल स्पून की विद ब्लैक कॉफी अर्ली मॉर्निंग इज वेरी गुड। या
1: वेरी,
2: इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर दैट एंड आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट मोर देन 2-3 इयर्स एवरी मॉर्निंग। या
1: एवरी मॉर्निंग बिना कुछ लिए, बिना अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट दिस एंड देन व्हाटएवर,
2: देन व्हाटएवर, देन माय योगा एंड एक्सरसाइज या वर्कआउट कुड बी।
1: अच्छा जी, आफ्टर दैट यू गो फॉर ब्रेकफास्ट?
2: आफ्टर दैट या आई विल हैव ब्रेकफास्ट।
1: ओके, अच्छा स्किन रूटीन के बारे में, अपने स्किन रूटीन के बारे में बताइए कि किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इतने स्टेप्स हैं, गो फॉर क्लीनिंग देन दिस थिंग्स रहते हैं, अगर बहुत ही बेसिक्स में और कोई वर्किंग वूमेन है वो इतना सारा कुछ नहीं तामझाम कर पाती, तो कौन कौन से रिचुअल्स को आपके हिसाब से फॉलो करना ही करना चाहिए वो मैंडेटरी है फॉर गुड स्किन?
2: हाँ, देखिए मार्केट में इतनी चीज़ें हैं, वो सब मार्केटिंग है प्रोडक्ट्स की, कि आपको 7-8 चीज़ें लगानी है, एक चीज़ लगानी है। सो अच्छी स्किन के लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है पानी पीना, बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप सुबह में बाहर जा रहे हैं तो आपकी क्लीन, आपके फेस अच्छे फेस वॉश से वॉश करिए, देन अच्छा सिरम एंड सन क्रीम एंड दैट्स।
1: अच्छा अच्छा, सिरम, व्हाट डू यू मीन बाय सिरम, मतलब कौन से सिरम? सिरम्स
2: भी इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा स्किन के लिए, जिसमें वाइटामिन सी होता है।
1: ओके,
2: जो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है वाइटामिन सी, देन आप उसके ऊपर सन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉइस्चराइजर, ये आपके सुबह का रूटीन होना चाहिए। एंड देन रात में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरा फेस क्लीन करके कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के, हमेशा नाइट रूटीन में मॉइस्चराइजर करना स्किन को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो उसी टाइम आपकी जो स्किन है वो हील हो रही होती है, सो अच्छा प्रोडक्ट लगा के सोना इट्स गुड।
1: अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि द मिनिमम यू स्टिक और यू पुट ऑन योर स्किन, ज़्यादा वो आपकी ग्लो करती है, ज़्यादा अच्छी होगी, तो ट्राई टू बी यू नो

0: प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए उतना ज्यादा आपकी स्किन जो है वो हेल्दी दिखेगी. तो ये क्या मिथ है या फिर इट रियली वर्क्स?
1: इट रियली वर्क्स अगर आप अच्छी चीजें लगाते हैं. बट फिर मैं दोबारा से बोलूंगी, आपकी अच्छी डाइट आपकी स्किन ग्लो उसी से ही होगी.
0: सो डाइट
1: इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. पानी एंड द गुड डाइट. आप अगर आप अच्छा पानी पीते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल एक मॉइस्चराइजर लगाएंगे और आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी.
0: दोस्तों देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसे इधर उधर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्दी रूटीन. अपनी हेल्दी रूटीन, अपनी डाइट, बैलेंस डाइट पे काम कीजिए. एंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय गुड डाइट? किस तरह की डाइट को आप कहती हैं कि एग्जैक्टली गुड है और वो स्किन के लिए अच्छी है?
1: गुड डाइट मीन्स वेजिटेबल्स.
0: ओके.
1: या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लोग आई थिंक इतना ज़्यादा डेली रूटीन में नहीं खाते हैं. सैलड्स का खाना, अच्छे फ्रूट्स का खाना, अच्छे जूसेस पीना, अच्छे स्मूदीज पीना, वो एक आपके स्किन से रिलेटेड, अगर आप स्किन की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ये वाली जो डाइट है. एंड ऑफ कोर्स आपको अपनी स्किन का बाहर, जैसे इंटरनल आप ख्याल रख रही हैं, इस तरह बाहर भी आपको ख्याल रखना है. आपको फेशियल्स कराने होते हैं रूटीन, जिससे क्योंकि फेशियल के अंदर आपके मसाज होता है फेस का, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे आपकी बाहर वाली स्किन पे ग्लो आता है. तो फेशियल्स का भी एवरी मंथ या एवरी आफ्टर 40s या आफ्टर 30s यू हैव टू डू योर फेशियल लाइक मंथली और 15 डेज और 20 डेज आपको कराना बहुत ज़रूरी होता है. कि जैसे आपको इंटरनल ख्याल रखना है, इसी तरह आपको बाहर भी ख्याल रखना है.
0: बट
1: बोथ साइड
0: दोनों तरह से काम करना है तभी आप अच्छी और खूबसूरत नजर आएंगे. अच्छा, व्हाट इज दैट बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट द ब्यूटी इंडस्ट्री व्हिच यू रियली वांटेड टू डिबंक? कोई है ऐसा मिसकंसेप्शन ब्यूटी इंडस्ट्री को लेकर? है
1: अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा.
0: अच्छा, किसी तरह के कोई ऐसे हार्श क्रिटिसिज्म्स या फिर नेगेटिव कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं फ्रॉम द क्लाइंट एंड हाउ डू यू हैंडल देम?
1: ओह, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा.
0: ओके.
1: क्लाइंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स बहुत मिलते हैं. सो उसको फिर मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ और उनको फिर सेटिस्फाइड भी करके भेजती हूँ. उनको मैं नाराज़ करके नहीं भेजती हूँ. होते हैं, सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं. तो मैं उन सब चीज़ों को मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ. टीम भी हैंडल करती है. बट जब एक ओनर होता है ना, कोई आपका क्लाइंट खुश नहीं है, ओनर उनसे बात करता है, उनकी प्रॉब्लम पूछता है, तो वो उससे फिर थोड़े कूल डाउन हो जाते हैं, भूल जाते हैं.
0: हाँ, थोड़ा रिलैक्स होता है, लगता है कि हमारी बात ऊपर तक पहुंची है.
1: बट होते हैं लोग,
0: होते हैं,
1: वो किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. बहुत लोग ऐसे होते हैं.
0: हाउ टू यू नो सेटिस्फाई फीमेल्स?
1: इस तरह की इंडस्ट्री है.
0: जी जी जी. अच्छा, आप अब बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह का आप जो है मैसेज है, एडवाइस देना चाहती हैं उन इंस्पायरिंग वुमेन को जो इसी फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं? कैसे वो स्टार्ट करेंगे इसी तरह का बिजनेस, इसी फील्ड में आना चाहें?
1: इसके लिए आपको खुद को पर्सनली एक्सपीरियंस चाहिए होता है. अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में या लाइक फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, उसके लिए आपको खुद को, अगर आप इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले आपको खुद को सीखनी है वो चीज पर्सनली. सो
0: पहले
1: आपको खुद को या होमवर्क करना चाहिए, फिर आपको इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए.
0: जाहिर है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि इट्स वेरी इजी.
1: नो नो,
0: एनीबॉडी कैन स्टार्ट अप दिस काइंड ऑफ अ सैलून और हम रन करा लेंगे, बहुत सारे लोगों को हायर कर लेंगे, इट्स गोना वर्क. बट अगर आपका खुद का अच्छा उसमें
1: एक्सपीरियंस होएगा तो आप उस पे ज्यादा अच्छा काम करेंगे.
0: यस, दैट्स ट्रू. तो मतलब आप जो भी काम करें पैशनेटली करें, दिल से, अपने दिमाग से, दिमाग बाद में, पहले दिल से, पहले पूरी तरह से इन्वॉल्व हो. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच आयशा फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम एंड टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच.
1: यू मोस्ट वेलकम नाजिया, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर.
0: थैंक यू वंस अगेन. वेल, इसी के साथ दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें।

0: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इलाज सिर्फ दवा नहीं,
2: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाज़े रहनुमाई,
1: मिथ्स की खोल, प्रैक्टिकल टिप्स, हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे,
2: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ।
3: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: है कि आपकी शुगर कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होती है. अब आप ये मत समझिए कि खाली शुगर सिर्फ खून में बढ़ जा रही है, खून शुगर का मतलब सिर्फ शुगर है और सिर्फ थोड़ा सा खून में बढ़ रही है. नहीं
1: जी.
0: शुगर जब भी आपके खून में बढ़ती है तो ये जिस्म के हर ऑर्गन में जाती है, आपके छोटे शरीयान हैं या बड़े शरीयान, हर जगह जाती है और हर जगह इसके नुकसान हो जाते हैं इसके. तो प्री डायबिटीज़ में क्या होता है, प्री डायबिटीज़ में जो है जैसे कि आप के ख़ानदानी रुझानात हैं या फिर आपका गैर सेहतमंदाना वज़न है या फिर आप वर्जिश नहीं कर रहे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है या फिर आप काफ़ी मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं. तो ये रिस्क फैक्टर्स की वजह से आपको जो है शुगर होने के चांसेस होते हैं. तो जब शुगर होने के चांस होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे अंदर पैदा होता है. अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, अब आप बेसिकली ये समझिए कि भाई हमारे जिस्म में जब शुगर, जब हम जो हम खाना खाते हैं इसका हाजमा होता है, तो जो शुगर जो बनती है वो खून में दौरान खून में आती है
1: जी.
0: तो खून में से जब ये जो है हमारे जिस्म के आज़ा में जब खलियों में जब उसको जाना होता है तो उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है.
1: ठीक है.
0: ताकि ये जब अंदर जाए तो इसका इस्तेमाल हो सकता है, इससे एनर्जी बनती है आपको
1: जी.
0: लेकिन जब ये नहीं होता है तो आपके खून में जो है शुगर बढ़ जाती है. इसका आसान से इसका तस्वर आप ऐसा करें कि आप एक कमरा है, कमरे में जो है आप अंदर आना चाह रहे हैं लेकिन दरवाज़ा बंद है और वो दरवाजे का जो चाबी जो है वो इंसुलिन है
1: जी.
0: तो इंसुलिन की कमी की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से शुगर बाहर रह जाती है, अंदर नहीं आ सकती. तो ये खून में जो है इसका दौरान इसका ज्यादा लेवल हो जाता है. तो अब इसका लेवल कितना है,
1: बहुत ही अच्छी जो एग्जांपल है बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आमतौर पर हम नहीं समझ पाते कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या
0: जी.
1: बिल्कुल यही कि एब्जॉर्प्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे ना, बिल्कुल कि वो ब्लड में चली जाती है. ठीक.
0: क्योंकि ये ज्यादा गैर सेहतमंद वजन की वजह से अगर पेट की तरफ अगर ज्यादा चर्बी है मसलन
1: जी,
0: या आपका वेट ज्यादा है तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है. यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि नॉर्मली जो है हर रोज हमारे दिन हमारे जिस्म में 15-20 यूनिट इंसुलिन बनता है.
1: अच्छा.
0: लेकिन जब ये वजन और आपके लाइफस्टाइल जो है अगर आपके हेल्दी नहीं है तो आपकी बॉडी को 30-40 यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, बल्कि 50 भी पड़ सकती है. तो जो हमारा
1: जो
0: हमारा लबलबा होता है तो शुरुआती इनिशियल दौर में वो उतनी इंसुलिन बनाता है उस उतनी मिकदार में
1: जी.
0: लेकिन ये इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है, बर्डन है ये
1: जी.
0: तो ये काफ़ी दिनों तक, चंद महीने चंद साल जो है बना सकता है, उसके बाद ये फेल हो जाता है. जब ये फेल हुआ तो जब डायबिटीज आती है, तो ये जब जब इंसुलिन ज्यादा बन रहा है ये जो दौर है इसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं
1: जी.
0: तो इसमें होता है कि आपकी जो शुगर नॉर्मली जो शुगर होती है फास्टिंग शुगर का हम बात कर लें तो 100 के नीचे होती है
1: जी. ठीक.
0: और डायबिटीज में जो है 126 के ऊपर होती है. तो अब जो शुगर जो प्री डायबिटीज में जो होती है 100 से लेके 126 के बीच में होती है.
1: अच्छा.
0: तो ये प्री डायबिटीज स्टेट है. आप एक नहीं इसके दो मरतबा आप चेक कर लें, या फिर खाने के बाद नॉर्मली जो शुगर होती है आपकी 140 के अंदर होना चाहिए
1: जी.
0: लेकिन आपकी शुगर अगर 140-200 के बीच दरमियान में अगर है तो ये भी प्री डायबिटीज है.
1: अच्छा.
0: और अगर आपकी शुगर 200 के ऊपर है खाने के बाद
1: जी
0: तो ये डायबिटीज में शुमार हो जाएगा. एक और एक टेस्ट
1: 200 से ऊपर
0: एक और एक टेस्ट जो आम लोगों में लोगों काफी इसके बारे में मालूम है, HbA1c जो हम करते हैं जो 3 महीने का जो एवरेज बतलाता है, तो वो भी एक टेस्ट जिससे हम प्री डायबिटीज हम डायग्नोस कर सकते हैं
1: जी.
0: तो बाज ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये है कि 6 से 6.5 प्री डायबिटीज की रेंज है. अब जैसे अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बोलता है कि 5.7 से लेके 6.4 तक डायबिटीज है, ये प्री डायबिटीज है. तो ये जो रेंज है ये प्री डायबिटीज की रेंज है. लेकिन आप ये जान लें कि सबसे अहम चीज़ कि प्री डायबिटीज भी एक बीमारी है. अगर इसको सही वक्त पर रोका नहीं गया, इसको रिवर्स नहीं किया गया तो ये डायबिटीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती है
1: जी.
0: डायबिटीज आगे आने वाले खासकर उन हजरात उन लोगों में, फॉर एग्जांपल मसलन जो औरतें हैं जिसको हमल में जिसको शुगर हुआ है, जिसका वजन ज्यादा है, जिसको फैमिली में फैमिली हिस्ट्री वालदेन को अगर शुगर है, या फिर आपका एक्सरसाइज आपका जॉब काफी सेडेंटरी है, आप एक ही जगह बैठ के जॉब कर रहे हैं, आप ज्यादा मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है डायबिटीज. अब ये देखना हो ये होता है कि कितनी जल्दी आपको शुगर आ रही है. तो ये प्री डायबिटीज स्टेट कैसा पता, ये तो बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक है. मसला ये है कि
1: ठीक
0: पेशेंट को या किसी अफराद को इसे कोई अलामत नहीं होती।
1: किस तरह पता चले?
0: ये बहुत ही साइलेंट है। डायबिटीज भी इसको साइलेंट किलर बोलते हैं,
1: जैसे ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो भी साइलेंट किलर।
0: जैसे किसी को मार लग गया सडनली आपको दर्द होता है, या किसी की हड्डी टूट गई तो फौरन दर्द होता है, उसका इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई अलामत नहीं होती। इसलिए पेशेंट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट मिथ है, यानी मिसकंसेप्शन है कि बोलते हैं मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं मीठा

0: नहीं कहा था इसलिए मुझे शुगर नहीं हो सकती, मतलब ऐसे काफी जो है मिथ होते हैं मुझे। तो ये जो है, ये जो बीमारी जो पकड़ में आती है, ये सिर्फ आपको जब आप टेस्ट करेंगे। अब देखिए, अब हम हर साल गाड़ी का टेस्ट कराते हैं
1: जी,
0: इस्तेमाल कराते हैं, गाड़ी का हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो फिर क्यों ना अपनी सेहत पर आप चेक ना करें। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप हर साल 5 चीजें चेक करें आप
1: जी।
0: नंबर 1 है शुगर, चाहे आप फास्टिंग शुगर करिए, HbA1c करिए, शुगर चेक करिए हर साल
1: जी।
0: नंबर 2 है आपका ब्लड प्रेशर,
1: ठीक,
0: बहुत जरूरी है। आप ये मत समझे कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं यंग हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, नहीं, आपको ये करना जरूरी है। तीसरी चीज कोलेस्ट्रॉल, हर इवन बच्चों में जो 12 साल से ज्यादा बच्चे हैं, उन लोगों, उन बच्चों में से लेकर बड़ों तक एक बार तो कोलेस्ट्रॉल चेक करना जरूरी है, ताकि आप चेक कर लें आप कोलेस्ट्रॉल क्या है,
1: मतलब हर साल
0: एक बार कर लें, खासकर जिसके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं। चौथी चीज आपका वजन, हर साल चेक करिए आप वजन, मैं तो हर साल बोलने बल्कि आप हर महीना चेक करिए वजन, देखिए कि आपका वजन बढ़ तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ये मालूम होता है कि सडनली आपका वजन 10 किलो बढ़ गया, तो ये तो वजन का चेक करना भी जरूरी है। और पांचवी अहम चीज, आपकी वेस्ट लाइन, आपकी कमर की साइज कितनी है,
1: ठीक,
0: ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर अब आजकल हम लोग जो है मोटापा सिर्फ BMI से मापते हैं
1: जी।
0: लेकिन BMI खासकर हमारे जो एशियन पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्ला, इसमें देखिए आप, हमारी फिजिक बहुत ही जो है उतनी, जैसा कि यूरोपियंस है, अमेरिकन है, उस टाइप की फिजिक नहीं होती है
1: जी।
0: लेकिन फिर भी ये शुगर होती है
1: जी,
0: BMI फिर कम होता है, लेकिन फिर भी शुगर होती है, क्योंकि आप देखिए वेस्ट लाइन, कमर की सर्कम्फ्रेंस,
1: एब्डोमिनल फैट
0: जी, अगर कमर की सर्कम्फ्रेंस मर्दों में 90 सेंटीमीटर के ऊपर है, यानी 36 इंच,
1: अच्छा,
0: और औरतों में 80 सेंटीमीटर यानी 32 इंच, यानी आपको बहुत बड़ा खतरा है। किन चीजों से खतरा है? नंबर 1 शुगर
1: जी,
0: नंबर 2 ब्लड प्रेशर, नंबर 3 हार्ट डिजीज,
1: ठीक,
0: और हो सकता है सांस की तकलीफ, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, तो एक काफी सारे और हार्ट, ये 4-5 बीमारियों का आपको काफी ज्यादा खतरा होता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। कमर की तरफ की चर्बी का मतलब, अलामत मतलब ये है कि आपकी जिस्म में चर्बी हर जगह फैल रही है, आपके दिल में, आपके गुर्दों में, आपके लबलबे में, आपका लीवर में, खासकर आपके हार्ट में,
1: तो ये इसी में फैटी लीवर की जो बात करते हैं वो भी बिल्कुल अच्छा, ठीक है।
0: तो ये चीजें होती हैं
1: इसमें प्री डायबिटिक
0: जी,
1: वो और उसमें स्पेशली जैसे कि ओबेसिटी की आपने
0: जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये आपको सालाना टेस्ट करना जरूरी है। आप कौन से हजारा टेस्ट करें
1: जी?
0: नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि जो भी 35 ईयर्स के ऊपर हैं आप टेस्ट करें, लेकिन 35 की नीचे लोग टेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, अगर आपकी आपकी लाइफ में कोई वर्जिश ही नहीं है, आप काफी मीठे मशरूबात का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं तो बल्कि कहूँ कि हर एक को जो है इसका टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि आजकल शुगर एक काफी खतरनाक रुख ले रही है।
1: बिल्कुल,
0: वो क्या है, पहले अक्सर पेश शुगर जो है, आप इस बात से एग्री करेंगे, 50-60 साल में पता चलती थी, लेकिन अभी आप देखिए आज के नौजवानों में शुगर हो रही है
1: जी,
0: बल्कि बच्चों में शुगर काफी पाई जा रही है।
1: बच्चों में
0: आप
1: की
0: स्टडी से अगर आप ले लें तो बच्चों में भी मोटापा, हर 10 में से 2 बच्चे जो है मोटापे के शिकार हैं।
1: इस तरह से ये भी उतनी ही
0: बिल्कुल
1: जो है डेंजरस है।
0: बल्कि मैं और चंद उसूलों का जो है मैं खुलासा करना चाहूंगा
1: जी, जरूर,
0: कि ऐसे चंद चीजें क्या हैं जो आप कल से कर सकते हैं। नंबर 1 चीज है हरकत में, जिसको बरकत बोलते हैं, आप जितना हो सके आप हरकत करिए, मूव करिए आप,
1: ठीक है,
0: कम से कम रोजाना 15-20 मिनट आप इसको फर्ज कर लिए, फर्ज एल कर दें आप अपने लिए। ये आजकल की इंटरनेशनल गाइडलाइन से भी है कि हमको हर फर्द को, हर अफरा जो भी हैं जिसको शुगर नहीं भी है, 150 मिनट हर हफ्ता वॉकिंग की सख्त जरूरत है। ये समझिए कि वॉकिंग इज मेडिसिन
1: जी,
0: चलना फिरना भी एक दवा है, बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 है, अगर आप कल से अगर शुरू करना है तो आप वॉकिंग करें, आप जितना भी आपसे हो सक रहा है, शुरुआत आप 5 मिनट से करिए, 10 मिनट से करिए, आहिस्ता आहिस्ता 20 मिनट, 25 आप हो सके तो आधा घंटा करिए आप,
1: ठीक है,
0: आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन आप मूव करिए
1: जी,
0: चाहे आप घर में मूव करिए, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो आप रात में मूव करिए, आप साइकिल चलाइए, जो है आप मूव करिए थोड़ा सा, और मूवमेंट जो इस तरीके से आप वॉकिंग करें, थोड़ा सा तेज,
1: अच्छा,
0: थोड़ा सा दिल का जो रफ्तार जो है तेज होना चाहिए,
1: ठीक है, थोड़ी स्वेटिंग जो है
0: स्वेटिंग थोड़ी हल्की होना चाहिए, तो ये बहुत ही आइडियल है। नंबर 1 चीज ये करिए आप। नंबर 2 स्लीप, स्लीप भी मेडिसिन है, अच्छी नींद, रात की नींद बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: 6 घंटे अगर आप सो रहे हैं रात में, 6-7 घंटे आपकी नींद हो रही है, जल्दी सोइए। मैं अपने आप को भी पहले बताऊंगा और दूसरे नाजरीन सामीन को भी ये बताऊंगा, मशवरा ये है कि भाई नींद का होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: क्यों? अगर आपकी नींद सही नहीं हो रही
1: जी,
0: तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा
1: जी,
0: शुगर बढ़ेगा, और हार्ट की बीमारी के लिए सबसे नुकसानदेह चीज ये है कि आप रात की नींद सही नहीं है
1: सही।
0: तो नींद बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है,
0: 6 से 8 घंटे आप नींद करनी है, रात की नींद बहुत जरूरी है,
1: ठीक है।
0: तीसरी चीज ये है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी प्लेट अगर बदलेंगे, अगर आप आज अपनी प्लेट जो खाने वाली प्लेट बदलेंगे तो आप आपको आप शुगर को जो है आने नहीं देंगे, रोक सकते हैं आप कंप्लीटली।
1: किस तरह से
0: करना
1: जी,
0: है
1: जी, बिल्कुल।
0: आप देखिए, आप अपने प्लेट को 3 हिस्सों में बांट लीजिए, आधा हिस्से में आप सिर्फ सब्जी को डाल दीजिए, सब्जी का इस्तेमाल करिए, वेजिटेबल्स हैं या फिर आपके सैलड्स हैं, आधी प्लेट भरकर आपको जो है वो खाना है। 1/4 प्लेट आपकी मछली है या चिकन है या गोश है या दाल है या पल्सेस है, ग्रेन्स जो भी है, वो प्रोटीन
1: है, ठीक है।
0: दूसरा और एक जो 1/4 आप वो की रोटी हो गई या राइस हो गई या ऐसे दीगर चीजें जिसको आप जो है कार्बोहाइड्रेट जिससे आपको मिलता है ये कर लें। तो अगर आप ये प्लेट इस तरीके से आप देखिए, जिंदगी में हमेशा आपको लगेगा ये क्या है, तो बहुत ही मामूली चीज है, लेकिन ये छोटे छोटे अगर आप नुस्खे छोटे छोटे उसूल को अगर आप पाबंदी से करेंगे तो बहुत बड़े बड़े इसका असर आपकी लॉन्ग लाइफ आपकी जो है सकते हैं।
1: बिल्कुल, और ये बहुत अहम होते हैं, इसलिए हम छोटी छोटी बातें जैसे आमतौर पर टिप्स की तरह हैं
0: जी,
1: तो ये उसी तरह अपने जहन में हमें रखनी है, जैसे आप हमें बता रहे हैं ये थर्ड स्लीप है, अब ये कि प्लेट चेंज डिफरेंट सा है ये कि किस तरह चेंज हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि पोर्शंस जो हैं,
0: पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या खा रहे हैं आप हमेशा। अब चौथी चीज ये है कि आप देखिए कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम करें
1: जी,
0: अल्ट्रा प्रोसेस फूड रेडीमेड जो फास्ट फूड जो मिलता है इसका इस्तेमाल बहुत से कम करें
1: जी।
0: मशरूबात जो शुगर वाले जो मशरूबात हैं,
1: तब इसमें थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, मैं लिसन सुन रहे हैं कि ये जो जो अल्ट्रा फास्ट ये जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें क्या होता है कि हमें उसे अवॉइड करना है, क्योंकि आमतौर पर तो इजी मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, और फिर ज़्यादातर जो है बच्चे भी, और जैसे ही हम कोई भी ईजी चीज मिल जाए तो हम उस तरफ आते हैं, तो थोड़ा समय इसको
0: अक्सर मार्केट वगैरह में आपको जो है रेडीमेड बिस्किट्स हैं, ऐसे दीगर चीजें जो होते हैं जो रेडीमेड जो खाने हैं, चिप्स वगैरह हैं, अब इसमें देखिए ये आपको आपके जायका को बेहतरीन जायका देने के चक्कर में जो है
1: सॉल्ट बहुत
0: काफी सॉल्ट और काफी चिकना फैट का इस्तेमाल करते हैं, और वो फैट भी जो चिकना जो ऑयल होता है वो भी बहुत ही जो है अनहेल्दी ऑयल होता है, जो आपको ऑलिव ऑयल का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे वो लोग
1: जी, बिल्कुल जी।
0: तो ये 2 चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से आपको टेस्ट जबरदस्त आता है, टेस्ट एनहेंसर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर, ये काफी सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं
1: जी
0: जी। तो बस लोग बोलते हैं चलो हम डाइट वाली चीज़ इस्तेमाल, लेकिन डाइट वाली चीज़ भी उतनी आपको सेहतमंद नहीं है, जो चीज़ आप घर में फ्रेश बना के खा रहे हैं उसकी बात अलग है, जिसमें आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, आप तेल
1: जितना डाल रहे हैं जैसे शुगर फ्री हैं
0: जी जी जी,
1: तो वो भी तो कैसे
0: शुगर फ्री चीज भी जो है इसके ऊपर भी काफी आजकल रिसर्च हो रही है, ये उससे ये मालूम हो रहे हैं कि उसका खुलासा ये है कि वो भी चीज़ लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है
1: जी,
0: शुगर फ्री कभी कभी कभी कभार आप ओकेजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन एक मुसलसल रोजाना आपकी हैबिट होगी तो फिर वो भी अच्छी चीज नहीं है।
1: तो ये हमारे कि शुगर फ्री जैसे प्रोडक्ट्स हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज्यादा हैं और शुगर उन्होंने लिखा होता है नील है, तो इसका क्या, क्योंकि डायबिटीज में तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उन्हें भी तो रिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा करना होगा ना
0: जी,
1: तो फिर ये नुकसानदेह हुई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो शुगर फ्री तो लिखते हैं लेकिन उसके अंदर फिर दूसरे एडेड शुगर्स होते हैं, आप अगर आप देखें एडेड शुगर बोल के रहता है,
1: अच्छा ठीक,
0: तो इसलिए आपको जो है लेबल पढ़ना जरूरी होता है, जो भी चीज आपने मुंह में, जैसे कि आप बिस्किट खा रहे हैं मसलन, आप तो आप देखिए कि एक बिस्किट से कितने कैलोरीज हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, आप रोटी भी ब्रेड भी खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल खुबस खरीद रहे हैं, तो आप देखिए उसके अंदर प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, बाज़ार एडेड शुगर्स बोल के होता है, एक्स्ट्रा शुगर डालते हैं आप, मसलन जो है बच्चों की जो भी मसलन फ्रूट जाम ले लें या फिर न्यूटेला वगैरह आप ले लें, उसमें देखिए आप अगर आप कैलकुलेट करें आप तो न्यूटेला के अंदर आधी तकरीबन आधी शुगर ही होती है, आप एक डब्बे में आधी सिर्फ शुगर खिला रहे हैं बच्चों
1: जी।
0: तो इस तरीके से होता है, या मैंने करा कि अब आजकल ऐसा हो गया है माहौल कि भाई आप अनअवॉइडेबल है, लेकिन कम से कम इस्तेमाल करें
1: जी।
0: बहुत ही जो है माइंडफुल इस्तेमाल करें उसका, ये काफी जरूरी है,
1: ठीक है।
0: तो ये चीजें आपको यानी कॉमन आदमी को यानी हमारे आम आदमी को भी इसका जो है थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए कि भाई इसके देखना चाहिए कि कंटेंट क्या है, ये मेरे लिए फायदेमंद है नहीं है, कितने कैलोरीज हैं, एक चिप्स के अगर पैकेट खा लिए कितने कैलोरीज मिल रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए।
1: और दूसरी बात ये कि जो कैलोरीज लिखी होती हैं उसको कम मिकदार में वन सर्विंग का लिखा होता है, और अक्सर हम ये समझते हैं कि शायद ये पूरा जो पैकेट है उस पर इतनी
0: जी
1: ये भी बहुत
0: इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बिल्कुल, कि मसलन अगर आप एक कोई चिप्स के पैकेट खरीदे जो 200 ग्राम की है तो वो सर्विंग साइज बोल के लिखी थी उसने, अब वो सर्विंग साइज होती 50 ग्राम्स मसलन, तो 50 ग्राम्स के अंदर कितनी शुगर है कितना कोलेस्ट्रॉल बताता है, लेकिन फिर अगर 200 है तो ये तो उसको मल्टीप्लाई पे 4 करना पड़ेगा आपको
1: जी,
0: तो ये सर्विंग साइज आप देखिए, हाँ बहुत जरूरी होती है
1: ठीक।
0: तो ये चीज़ें हैं, तो आप जो है मशरूबात का इस्तेमाल कम करें, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करें और जो है प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम करें, और एक चीज़ ये है कि अब हम वॉकिंग पे तो स्ट्रेस कर रहे हैं लेकिन अब आजकल जो साइंस ये भी बता रही है कि भाई वर्जिश जो बोलते हैं जो हफ्ते में 2 या 3 दिन आपकी फुल बॉडी की जो वर्जिश होती है
1: जी,
0: मसल्स की वो भी ज़रूरी है,
1: स्ट्रेंथनिंग
0: एक्सरसाइज जो बोलते हैं मसल की जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है, आप चाहे आप इसके मुख्तलिफ तरीक़े हैं करने के, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे कर सकते हैं, ऑनलाइन आप देखिए आप कैसे कोर मसल एक्सरसाइज बोलिए, प्लैंक्स बोलिए, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, सिंपल स्क्वाट्स होते हैं चेयर के साथ, वॉल पुशअप्स पुल के होते हैं, तो काफ़ी आप सिंपल, या फिर आप जो रबर के बैंड्स आते हैं एक्सरसाइज के उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मसल्स बना सकते हैं आप, या हल्की बॉटलों से आप जो है उठाकर जो है वो भी कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज रेजिस्टेंस और क्यों, इससे क्या होता है कि आपके मसल्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, तो वो शुगर को सही इस्तेमाल करते हैं। देखिए जब आपके मसल्स एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके मसल्स को जो है हमारे इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद शुगर मसल्स के अंदर दाखिल हो जाती है, तो इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है, तो ये काफी आपको फायदेमंद होगा।
1: ठीक है, कि स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो
0: है जरूरी है जी,
1: वॉकिंग तो है ही, वॉक करनी तो आपने जिस कहा कि 150 आवर्स जो है पर वीक जो है वो मस्ट हमें करनी है, और ये कि स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत जरूरी है जी
0: जी। इसके अलावा जो जदीद जो अदविया जो हमारे पास हैं, जो मौजूदा इसमें मॉडर्न डायबिटीज जो ऐसे मेडिसिन हमारे पास हैं जिससे हम प्री डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: अच्छा प्री डायबिटिक जो है या प्री डायबिटीज उसमें भी मेडिसिन देते हैं, दे सकते हैं
0: जी हाँ, क्योंकि अक्सर पेशतर ये लोग ये हजरात को जो है वजन का ही मसला होता है, दूसरे भी मसले चलते रहते हैं, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, तो काफ़ी सारे पेचीदगियाँ होती हैं उसके अंदर, तो मसलन अगर किसी का वजन जो है 100 kg से, अब हम बोलते हैं कि भाई आप वजन कम करिए, तो वजन कम करना भी बहुत नेक्स्ट ये टॉपिक है, वजन कम करना है
1: जी।
0: तो अब देखिए लोग बोलते हैं वजन कम करना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 5 kg भी अगर वजन कम करें तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी शुगर इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म में हार्ट के रिस्क भी आप बच सकते हैं।
1: ठीक,
0: एनी वेट लॉस, थोड़ा भी वेट लॉस भी काफी फायदेमंद है, आप इससे ये ना हो जाए, नाउमीद ना हो जाए कि अरे बस थोड़ा वेट लॉस है कुछ भी नहीं, लेकिन आप यकीन करिए 3-5 kg भी बहुत मायने रख सकता है, खासकर एशियन हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम अगर किसी का BMI नॉर्मल भी है 25-26 भी है लेकिन ज्यादातर चर्बी सिर्फ वेस्ट लाइन पे है, वो शख्स अगर सिर्फ 4-5 kg भी अगर कम कर ले वेस्ट से तो काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, हो सकता है शुगर भी रिवर्स हो सकती है।
1: अच्छा
0: जी, डायबिटीज अगर डायबिटीज किसी को है जो न्यूली डायग्नोस जदीद डायबिटीज है यानी 5-6 साल का अरसा गुजरा है, तो ये जो हजरात है ये भी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसको हम रेमिशन बोलते हैं, लेकिन इसमें शर्त है, लेकिन आप ये खुद से ना करें, ये डेफिनेटली जब आपके डॉक्टर्स के पास आपको जाना होता है, आप उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लेना है, और जब आपको डॉक्टर्स बताएंगे तो आप फिर तभी आप मेडिसिन बंद करना है, खुद से आप मेडिसिन ना बंद करें। तो ऐसे इंजेक्शंस हैं, ऐसे दवाएं हैं जिससे आपका वजन कम होता है
1: जी।
0: आप वजन कैसा भी कम करिए, चाहे आप दवा से कम करिए, चाहे आप डाइट से करिए, एक्सरसाइज से करिए, या आजकल जो जदीद बेरियाटिक सर्जरी है उससे भी करिए
1: जी। ठीक,
0: ये जितने भी वजन लूज करने के तरीके हैं, अगर आपका वजन अब डबल डिजिट का वजन लूज हुआ आपका यानी 10-15%,
1: ठीक है,
0: यानी मसलन अब किसी का वजन 100 kg था वो 15 kg कम कर लिए,
1: ठीक है,
0: तो ये डायबिटीज को रिवर्स कर देगा।
1: ठीक,
0: लेकिन तब तक रिवर्स है, शर्त यह है कि जब तक वो वजन मेंटेन है तब तक आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है, आपको डायबिटीज नहीं है जी।
1: से जो वजन है उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, और जैसे एब्डोमिनल सरकमफेरेंस भी आपने बताया कि जो वो भी उसी के साथ जो है वो
0: एब्डोमिनल सरकमफेरेंस भी चेक करना है, और जदीदी और एक मेजरमेंट ये है कि जो हमारा जो एब्डोमिनल जो हमारा पेट के जो वेस्ट लाइन है, कमर का सरकमफेरेंस है, और हमारी जो हाइट की जितनी हाई है, जो हाइट है
1: जी,
0: तो हमारी कमर की जो सर्कमफ्रेंस है हाइट से 50% कम होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अगर 50%

0: ज्यादा है, मसलन अगर किसी की हाइट 180 सेंटीमीटर है
1: जी,
0: और कमर 92 सेंटीमीटर है, यानी 50% ज्यादा हो गया है
1: जी,
0: तो उनको हार्ट का रिस्क ज्यादा है,
1: अच्छा,
0: शुगर का रिस्क ज्यादा है। ये काफी सारे पूरे, ये क्या है, इसको एक न्यू जदीद जो है हम लोग टर्मिनोलॉजी दी है, CKM, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल रहे हैं इसको आजकल। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं कनेक्टेड हैं, हार्ट, गुर्दे और आपका जो मेटाबॉलिज्म है, तीनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। किसी एक में कुछ बीमारी है, कोई मसला है, तो वो बाकी दोनों में भी मसले पेचीदगी शुरू कर सकता है।
1: सही।
0: एग्जांपल बता दूं आपको, कि जो भी शख्स जिसको डायबिटीज है, आप यकीन नहीं करेंगे, जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उसमें से 40% लोगों को किडनी की बीमारी होती है।
1: अच्छा, ठीक।
0: 100 में से 40,
1: ठीक है,
0: और वही 100 में 40 लोगों को हार्ट के फेलियर की भी बीमारी है। अब हार्ट फेलियर एक बहुत ही इमर्जिंग नया कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। अब हार्ट फेलियर की भी मुख्तलिफ आ रहा है, उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं। एक बोलते हैं कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो हम चेक करते हैं, जब इको करते हैं तो हार्ट का फंक्शन मालूम करते हैं, 60% नॉर्मल है बोलते हैं, 40% तो थोड़ा कम हो गया, 30% और कम हो गया। तो रफली सामान्य क्रम के लिए मैं आसान करना चाह रहा हूँ कि 40% से कम रहा तो उसको रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, 40 के ऊपर रहा तो जो है उसको जो है ठीक है बोलते हैं। तो हार्ट फेलियर हो रहा है जिसमें आपका इजेक्शन फ्रैक्शन फिर भी नॉर्मल लग रहा है, 40 है 50 है, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को हार्ट फेलियर की अलामत है, इसको हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये 40% डायबिटीज पेशेंट में पाया जाता है जी। तो इससे काफी तकलीफ होती है, सांस में तकलीफ होती है, पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, रात में 1-2 तकियों का इस्तेमाल करना पड़ता है सोने के लिए, पैरों में सूजन आ सकती है, तो इससे काफी सारी पेचीदगियां पैदा होती हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक ऑर्गन में प्रॉब्लम होने से दूसरा ऑर्गन भी
1: इन्वॉल्व हो सकता है
0: जी,
1: बिल्कुल सही।
0: फिर और एक जो तीसरी जो खतरनाक जो आजकल और एक चीज आ रही है वो फैटी लीवर की है
1: जी, फैटी लीवर, बिल्कुल।
0: तकरीबन 70% डायबिटीज पेशेंट में फैटी लीवर है
1: जी,
0: बहुत ज्यादा है।
1: इसकी क्या डॉक्टर वजह है? ये भी के फैट्स जो है वो डिपोजिशन है,
0: बिल्कुल। नॉर्मली जो फैट जो हमारे बॉडी में जहाँ होना होता है
1: जी,
0: जब एक्स्ट्रा फैट, जब हम ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं, ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो हर मशरूबात हर चीज फैट में तब्दील हो जाती है,
1: ठीक।
0: तो फैट का जो स्टोरेज जो एरिया है हमारे बॉडी में, तो वहां पे जब स्टोरेज खत्म हो जाएगा स्टोर, तो जाहिर बात तो बाहर निकलेगा,
1: ठीक है।
0: और वो बाहर कहाँ जाएगा? आपके पेट, आपके अब्डोमेन, आपके पेट यानी आपके कमर में जाएगा, आपके लीवर में जाएगा। नंबर वन तो सबसे पहले लीवर में जाएगा,
1: ठीक है।
0: तो लीवर में जाके फैटी लीवर करेगा, लीवर भी बोलेगा बस भाई मैं बहुत ले लिया, अब मैं ज्यादा नहीं ले सकता। फिर उसके बाद वो निकलेगा, फिर किडनीज में जाएगा, हार्ट में जाएगा, आपके लेवल है, तो इस तरह से मुख्तलिफ मकामात पे हो जाएगा। तो ये इस फैटी लीवर की, इसकी वजह से फैट लीवर होता है।
1: सही।
0: तो वजन, मोटापा, ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये दो चीजें बहुत बड़े ड्राइवर्स हैं इसके,
1: ठीक है
0: जी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी। जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
5: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा ला

0: खतरनाक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से न सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: जैसा कि अब हम शुगर तो कंट्रोल कर लिए
1: जी,
0: अब हम दूसरी चीजों पे हमको फोकस करना है। अगर हम हार्ट से बचना है, फॉलेज अटैक स्ट्रोक से बचना है, किडनी की बीमारी से परेशानी से बचना है, तो सबसे अहम है कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए हम करते हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट हाई रिस्क है, हाई रिस्क में कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल 70 के नीचे होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो हम बोलते हैं देखिए भाई, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपको बेशक हार्ट नहीं है फिलहाल, बेशक को कोई मसला नहीं, लेकिन आपका 70 के नीचे आपका कोलेस्ट्रॉल होना, इसीलिए आपको प्रिवेंशन में हम आपको जो है प्राइमरी, एज ए प्राइमरी प्रिवेंशन आपको ये गोली कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो स्टैटिन जो बोलते हैं वो हम देते हैं।
1: ठीक है,
0: तो अभी हार्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम पहले से ही कंट्रोल कर रहे हैं, ये जरूरी होती है।
1: बाजूका चाहिए, बल्कि आप जो है टेबलेट शुरू कर देते हैं कोई भी एंटी कोलेस्ट्रॉल जो है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल सही होता है बिल्कुल, फिर भी अच्छा
0: जी हाँ, फिर भी लेना होता है जी हाँ।
1: ठीक,
0: क्योंकि हम लोग इस पे रिसेंटली हमारी रिसर्च करें हम लोग, मैं इसमें शामिल था, तो हम लोग यहाँ के लोगों का जो डायबिटीज जो पेशेंट्स हैं
1: जी,
0: तो यहाँ के उनके पेशेंट्स का रिस्क मालूम करें हम लोग कि कितने लोगों को हार्ट की बीमारी है, कितने लोग हाई रिस्क पे हैं
1: जी।
0: तो ये पता चला कि उसका खुलासा ये है कि 25% लोग जिसको डायबिटीज है उसको हार्ट का मसला है।
1: अच्छा ठीक,
0: 25% लोग, और बाकी के पूरे लोग हाई रिस्क पे हैं, यानी उनके अंदर कुछ ऐसे चीजें हैं जैसा कि उनका वेस्ट सर्कमफेरेंस ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या उनको सांस में तकलीफ, स्लीप एपनिया है, या उनका जो है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि बताया मैं आपको, सिर्फ हम शुगर को नहीं देख रहे हैं, शुगर तो सिर्फ एक ही चीज हो गई,
1: ठीक है,
0: हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारा पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, 130 80 के नीचे है, क्या हमारे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है
1: जी,
0: जी, क्या ये पेशेंट ये बेहतरीन जो जदीद अदिया उस पे है
1: जी,
0: क्या इनका वजन सेहतमंदाना हो गया है, क्या इनका BMI कंट्रोल में आ गया, इनके वेस्ट सर्कमफेरेंस कम हुआ
1: जी,
0: तो ये पूरी चीजों को हम देखना है, पूरी पिक्चर देखना है। तो अगर ये पेशेंट में पूरे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो वो पेशेंट जो है डेफिनेटली लो रिस्क पे रहेगा।
1: ठीक
0: जी,
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। यहाँ दोस्तों, कतर का नुमाया एमेचर गोल्फर्स में अली अब्दुल्ला अल शहरानी का नाम बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन गोल्फ स्किल्स की बदौलत मुल्क और बैन अवी सतह पर कतर का नाम रोशन किया है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2021 में आई जब उन्होंने कतर ओपन एमेचर चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस कामयाबी के साथ वो 1986 के

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर

0: ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Aap sun rahe hain Health Check.
3: Assalamu alaikum listeners. गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बात की कि जख्म, खून बहने और जलने की सूरत में इब्तदाई तिबी इमदाद किस तरह दी जा सकती है। आज हम चंद ऐसी जो हंगामी हालात हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे जो कि बेहद ज़रूरी हैं। जैसे अगर कोई शख्स बेहोश हो जाए, यानी बेहोशी की सूरत में सबसे पहले उसकी सांस और आप जो पल्स है वो चेक कीजिए, और अगर उसकी सांस आ रही है तो उसे एहतियात से करवट के पट लटा दीजिए। उसने जो लिबास पहना है, जो कपड़े हैं, उन्हें लूज कर दीजिए और फौरी तिब्बी इमदाद तलब कीजिए। अगर सांस में मुश्किल हो तो फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कीजिए, और अगर आप तरबियत याफ्ता हो तो CPR शुरू कर दीजिए। कभी कभी चोकिंग हो सकती है, और जैसे कि खुराक या कोई चीज़ सांस की नाली में खुदा न खास्ता फंस जाए तो उसमें ऐसे महसूस होता है कि सांस लेने में दुश्वारी है और खांसी जो है वो नहीं आ रही, बोलने में मुश्किल हो रही है और गले की तरफ हाथ का ले जाना। अगर कोई शख्स खांस सकता है तो उसे खांसने की तरगीब दीजिए, और अगर सांस मुकम्मल तौर पर बंद हो रही है तो फौरी तिबी इमदाद हासिल कीजिए। तरबियत याफ्ता अफराद मुनासिब फर्स्ट एड टेक्निक इस्तेमाल करें, और खुदा न खास्ता अगर फ्रैक्चर होने का शुबा हो तो मुतासर हिस्से को हरकत ना कीजिए, आर्जी सहारा फ्राहम कीजिए, और सूजन को कम करने के लिए कपड़े में लिपटी हुई ठंडी पट्टी जो है वो इस्तेमाल कीजिए, और जल्द अज जल्द तिबी मुआयना जरूर कराइए। फर्स्ट एड के लिए हर घर में, ऑफिस में और गाड़ी में एक बुनियादी फर्स्ट एड किट मौजूद होनी चाहिए, जिसमें जरासीम से पाक जो बैंडेजेस हैं, गौज हैं, बैंडेजेस उसके साथ होती हैं, और इसी तरह जरासीम कुछ जो सॉल्यूशंस हैं वो हों, ग्लव्स हों और सीजर हो और थर्मामीटर, ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। फर्स्ट एड का मकसद इलाज करना नहीं है बल्कि पेशावराना तिबी इमदाद आने तक मरीज की हिफाजत और मदद करना है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में सबसे अहम बात पुरसकून रहना है, सूरत हाल का जायजा लेना और बर वक्त मदद हासिल करना है। लिसनर्स, महफूज रहिए, सेहतमंद रहिए, और इब्तदाई तिबी इमदाद के बुनियादी उसूल सीख कर अपने और दूसरों के लिए मदद

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे? हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कतर को बना रहा है लीडर इन सस्टेनेबिलिटी। ट्यून इन टू कतर ग्रीन बीट विद ए फॉर अमिता। फ्यूचर की आवाज आज सुनो सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ कतर ग्रीन बीट पर। तो आज की कतर ग्रीन बीट की बीट्स क्या कहती है, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगी कि कैसे हैं आप, कैसा गुजर रहा है आपका ये वीक? हाँ, और मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और आज की जो बात है ना वो कुछ इस तरह से है कि आज हम अपनी उस लेगेसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जिक्र अभी सिर्फ हमारे कतर में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में हो रहा है। कभी कभी जब मैं शाम को लुसैल या अल जनूब के पास से गुजरती हूँ ना, तो मुझे अब भी वही पुरानी इंटेंसिटी महसूस होती है, वो लोगों का जुनून, स्टेडियम में गूंजते फैंस की आवाज़ें और हिस्ट्री बनते देखने का वो एक अलग ही जुनून, या यूँ कह सकते हैं एक अलग ही खुमार। क्या खूबसूरत बात थी उस टाइम पर, है ना? ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ हम पर टिकी थी। लेकिन अब जब फाइनल विसल बज चुकी है और फैंस अपने घर जा चुके हैं ना, तब एक नया सफर शुरू हुआ है। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि इन बड़े बड़े जायंट्स का क्या होगा, क्या ये स्टेडियम सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? नहीं जनाब, कतर ने सिर्फ स्टेडियम्स नहीं बनाए, हमने एक मिराज, या यूं कहें हमने एक लेगेसी तैयार की है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज हम बात करेंगे स्टेडियम लेगेसी की, हम देखेंगे कि कैसे हर एक ईंट और हर एक सीट को 2030 के फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो चलिए इस खूबसूरत खेल के जरिए एक खूबसूरत फ्यूचर की तरफ बढ़ाते हैं हम अपने कदम और अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं कतर ग्रीन बीट पर। तो कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।
0: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट, वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ। और अब कतर ग्रीन बीट पर चलिए बात करते हैं द ग्रीन वायर की। तो जनाब, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेडियम का DNA कैसा होता है? अक्सर स्टेडियम पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट से बनते हैं, भारी भरकम और हमेशा के लिए एक ही जगह टेके हुए। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी इंजीनियरिंग की कहानी है जो किसी साईफाई मूवी या मार्वल फिल्म से कम नहीं लगेगी। मैं बात कर रही हूँ हमारे सबसे अनोखे, सबसे वाइब्रेंट और सबसे स्मार्ट स्टेडियम की, स्टेडियम 974। जब मैं पहली बार राज अबू अबूद के पास से गुजरी और दूर से इस स्टेडियम को देखा, तो मुझे यकीन ही नहीं आया वो कलरफुल कंटेनर्स, वो स्टील का फ्रेमवर्क, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समुंदर के किनारे एक जायंट, वो जो बच्चों के ब्लॉक्स गेम होते हैं ना, उसका सेट तैयार कर दिया हो। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये कतर के माइंडसेट का एक जीता जागता सबूत है। आपने कभी सोचा है कि इसका नाम 974 ही क्यों रखा गया? इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी है। सबसे पहले तो ये हमारा इंटरनेशनल डायलिंग कोड है, कतर की पहचान है। जब भी कोई बाहर से फोन करता है तो 974 डायल करता है। लेकिन इसका दूसरा राज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टेडियम को बनाने में एग्जैक्ट 974 रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर्स का इस्तेमाल हुआ है। इमेजिन कीजिए वो कंटेनर्स जो कभी समुंदर में बड़े बड़े जहाजों पर सामान ढोते थे, आज उन्होंने मिलकर एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम बना दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा कवर्ड फुटबॉल स्टेडियम है जो पूरी तरह डीमाउंटेबल है, यानी इसका एक एक हिस्सा, एक एक कंटेनर और स्टील का एक एक बोल्ट खोला जा सकता है। ये कोई परमानेंट बर्डन नहीं है हमारे ज़मीन पर, बल्कि एक टेम्प्ररी इंतज़ाम है या एक टेम्प्ररी अरेंजमेंट है जो बेमिसाल है। इसने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सिस्टम में 5-star रेटिंग हासिल की है। क्या कमाल की बात है। और ये रेटिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ट्रेडिशनल स्टेडियम को बनाने में जितना कंक्रीट और पानी जाया होता है, 974 ने उसका एक छोटा सा हिस्सा ही यूज किया। इसने कार्बन फुटप्रिंट को इतना कम कर दिया कि दुनिया भर के इंजीनियर्स आज कतर की मिसाल दे रहे हैं। तो जनाब, असली करिश्मा इसकी कंस्ट्रक्शन में नहीं बल्कि इसकी लेगेसी में है। अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स के बड़े स्टेडियम वाइट एलिफेंट्स बन जाते हैं, यानी ऐसी इमारतें जो खाली पड़ी रहती हैं और जिनका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है। लेकिन स्टेडियम 974 का डेस्टिनी कुछ और ही है। इसके हिस्सों को बिल्कुल जैसे बच्चों के ब्लॉक गेम्स होते हैं, उसकी तरह अलग किया जाएगा। और पता है क्या होगा, ये कंटेनर्स और ये स्टील फ्रेम्स डेवलपिंग नेशंस में भेज दिए जाएंगे ताकि वहाँ के बच्चों के लिए छोटे स्पोर्टिंग वेन्यू, स्टेडियम या हेल्थ सेंटर्स बनाए जा सकें। हमने सिर्फ कतर के लिए स्टेडियम नहीं बनाया, हमने दुनिया के लिए एक स्टेडियम इन अ बॉक्स तैयार किया है। तसव्वुर कीजिए, आज जो कंटेनर हमारे दोहा में बैठकर हमें मैच दिखा रहा है, कल वही कंटेनर किसी और मुल्क में एक नया स्पोर्ट्स

0: सेहत के प्रोटेक्शन के लिए एक बेहतरीन कदम नहीं है? ये है कतर की असली पावर, सोच और अमल का सही मेल। जब मैं 974 के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी जिंदगी में थोड़ा 974 होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, रिसोर्सफुल और हमेशा कुछ नया देने के लिए तैयार। हम अक्सर चीजों को परमानेंट समझ लेते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तब है जब हम रिसोर्सेज को इतने ध्यान से यूज करें कि हमारे जाने के बाद भी वो किसी और के काम आ सके। तो आज का मेरा सवाल आप सबसे यही है कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में क्या रीयूज कर सकते हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जो आज आपका काम कर रही है लेकिन कल किसी और की जिंदगी बदल सकती है? स्टेडियम 974 ने हमें सिखाया है कि इंजीनियरिंग सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का खेल नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस हमारी आने वाली नस्लों से है। कीप दिस थॉट इन योर हार्ट, हाँ जी, कि स्टे सस्टेनेबल, स्टे ग्रीन, बिल्कुल। और ये जो वादा हमने अभी किया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जरिए, मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसे एक मिसाल की तरह इस्तेमाल करेगी और अपनी लाइफ को और सूदिंग बनाएगी। और मैं हूँ आपके अमिता आपके साथ, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट। आगे भी हमारी बातें बहुत सारी हैं बाकी, सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कतर ग्रीन बीट, वेलकम वंस अगेन, आप सुन रहे हैं अपनी अमिता को कतर ग्रीन बीट पर। अब वक्त है हमारे प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट का। जी हाँ, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। याद कीजिए, जब कतर को होस्ट चूज किया गया था इन 2022, तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? सब एक ही बात कर रहे थे कि इतनी गर्मी में फुटबॉल कैसे खेला जाएगा। उफ, लोग कह रहे थे कि इस डेजर्ट की धूप में प्लेयर्स थक जाएंगे और फैंस बेहाल हो जाएंगे। लेकिन कतर ने एक बहुत बड़ा वादा किया था, हम ना सिर्फ कूलिंग देंगे बल्कि हमारा टूर्नामेंट कार्बन न्यूट्रल होगा। अब ये तो वही बात हो गई कि आपको आग भी जलानी है और धुआं भी नहीं निकालना। हाँ, बहुत से लोगों को लगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कतर की मिट्टी में ऐसे जीनेसिस बेस है जो नामुमकिन को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। और यहाँ एंट्री होती है हमारे रियल लाइफ सुपर हीरो की, जिन्हें दुनिया आज डॉक्टर कूल के नाम से जानती है, यानी डॉक्टर साउद घानी। उनकी और गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने दिन रात एक कर दिए, एक ऐसा रास्ता निकाला जो सस्टेनेबल भी हो और असरदार भी। इन्होंने कूलिंग के पुराने तरीकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। डॉक्टर साउद ने सोचा, हमें पूरे आसमान को ठंडा करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वहां ठंडक चाहिए जहां लोग हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पॉट कूलिंग। ये एक रेवोल्यूशनरी सोलर पावर्ड सिस्टम है जो कन्वेंशनल एसी मेथड से पूरे 40% कम एनर्जी कंज्यूम करता है। डॉक्टर साउद ने एरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करके स्टेडियम को एक असली ठंडी थैली, या यूं कहें कूल बबल में बदल दिया, जहां बाहर की गर्म हवा अंदर आ ही नहीं सकती। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी जनाब, ये स्ट्रैटेजी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता ये काम कैसे करता है, तो चलिए मेरे साथ इमेजिन कीजिए और अब आगे बढ़ के थोड़ा सा और डिटेल में हम इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे कि अल जनूब और एजुकेशन सिटी इनके स्टेडियम्स हैं। स्टेडियम से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा सोलार फार्म लगा है, ठीक है, वहाँ कतर की तेज सूरज की रोशनी से बिजली बनती है। वही बिजली ठंडा पानी जनरेट करती है जो स्टेडियम के अंदर पाइपिंग के जरिए आता है, लेकिन असली मैजिक सीट्स के नीचे है। अगर आप कभी स्टेडियम गए हैं तो आपने देखा होगा कि हर सीट के नीचे छोटे छोटे वेंट्स हैं, वहां से ठंडी हवा बिल्कुल धीरे से निकलती है, इतने धीरे कि प्लेयर्स को या फैन को डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इतनी असरदार कि आपको पसीना ना आए। और सबसे बेहतरीन बात, ये सिस्टम हवा को रीसाइकल करता है। ठंडी हवा स्पेक्टेटर लेवल पर आती है

फिर ऊपर जाती है। वहां से मशीन उसे वापस खींच लेती है, दोबारा ठंडा करती है और वापस भेज देती है। कुछ भी जाया नहीं होता। ये एक इटर्नल साइकिल है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हमें सुकून देता है। तो जनाब, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फुटबॉल स्टेडियम के 90 मिनट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसकी असली यूटिलिटी तो अब नजर आ रही है। आज यही टेक्नोलॉजी हमारे लोकल ग्रीन हाउसेस में यूज हो रही है। सोचिए, हमारे जो फार्मर्स हैं, जो कतर की गर्मी में भी साल भर सब्जियां और फ्रूट्स या यूं कहें फल उगा सकते हैं, वो भी कम एनर्जी खर्च किए। इसका मतलब है हमारी फूड सिक्योरिटी और भी मजबूत हो रही है। इतना ही नहीं, अगर आप कटारा गए हैं या 21 हाई स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ की आउटडोर कूलिंग इसी टेक्नोलॉजी की देन है। कतर ने दुनिया को लीड करके दिखा दिया है कि डेजर्ट में रहने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बंद कमरों में रहें। हमने आउटडोर स्पेसेस को सस्टेनेबल बनाया है ताकि हमारी नेचर, हमारा लाइफस्टाइल दोनों साथ साथ चल सके। और जनाब, डॉक्टर कोल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान की लगन और साइंस मिलते हैं ना, तो कोई भी मौसम हमें रोक नहीं सकता। हमने सूरज की गर्मी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, सनलाइट से ही ठंडक पैदा की। ये कतर नेशनल विजन 2030 का एक बहुत बड़ा पिलर है। हम दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, हम इनोवेट करते हैं। हमने दिखा दिया कि साइंस और नेचर जब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो अगली बार जब आप स्टेडियम में बैठकर वो ठंडी हवा महसूस करें, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एसी नहीं है, वो कतर का एक वादा है एक बेहतर और ठंडे फ्यूचर के लिए। हाँ जी, मैं हूँ अमिता आपके साथ, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट। अब आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की। आज हमारे स्टेडियम्स का एक ही कहना है, हाँ, रीयूज रीयूज और रीयूज, और यही सबक हमें अपने घरों तक ले जाना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इस स्टेडियम लेगेसी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो द गियर गिव बैक, हाँ जी, आपके पुराने फुटबॉल बूट्स या जर्सी जो अब छोटे हो गए हैं, उन्हें डस्टबिन में मत फेंकिए। कतर चैरिटी और एजुकेशन अबव ऑल के ऐसे ही प्रोग्राम्स हैं जो इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को उन बच्चों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपकी पुरानी चीज किसी का ख्वाब बन सकती है। लोकल पिच लव, हाँ जी, हम सब कम्युनिटी पार्क्स और पिचेस यूज करते हैं। याद रखिए, इनमें से कई वेन्यूज वर्ल्ड कप के मटेरियल से ही बने हैं, इन्हें इज्जत दीजिए। वहां रिसाइकल बिन्स का इस्तेमाल कीजिए और हमारे ग्रीन स्पेसेस को हमेशा साफ रखिए। होस्ट सस्टेनेबल गेम्स, यानी कि अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ मैच ऑर्गेनाइज करें, तो सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को बाय बाय कहिए। सब लोग अपनी रीयूजेबल फ्लास्क साथ लेकर आए। अगर सिर्फ 22 प्लेयर्स 1 गैलन पानी का यूज करते हैं, तो हम साल के 1000 प्लास्टिक बॉटल्स बचा सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा फर्क है। लुसेल का वो डेजर्ट रोज डिजाइन हो या अल्बेद का टेंट लाइक कैनोपी, हमारे स्टेडियम्स सिर्फ आर्किटेक्चर के नमूने नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, ये एक वादा है जो पूरा किया गया है। इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मेगा इवेंट्स का मतलब मेगा वेस्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये स्टेडियम्स हमारी इनोवेशन के मॉन्यूमेंट्स बनकर खड़े रहेंगे। ये हमें याद दिलाते रहेंगे कि सबसे बड़ी जीत स्कोरबोर्ड पर नहीं होती, असली जीत वो है जो लेगेसी है, जो हमें आने वाली नस्लों को, जनरेशंस को देनी है और उनके लिए बनानी है। वेल, मैं हूँ अमिता आपके साथ, एंड आई एम वेरी सर्टेन कि आज का जो हमारा कतर ग्रीन बीट है, उसका एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो क्या करना है, आपको अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस, अपने व्यूज हमसे शेयर करने हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, अपने नाम के साथ, और डेफिनेटली हम उन्हें ज़रूर कंसिडर करेंगे। और इसी के साथ अब आपको मुझे देना होगी इजाज़त, क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का। आपकी मेरी मुलाकात होगी कतर ग्रीन

0: रिपीट के अब अगले एपिसोड में. तो जाने से पहले कहूंगी, हमारे सोशल मीडिया FM 107 से भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी आरजे अमिता को सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और अभी के लिए ना खूब सारा ख्याल रखिए और याद रखिए कि ये जो गेम की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल है. रिस्पेक्ट द फील्ड, स्टे ग्रीन और कीप द बीट. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar. दिल से देसी.

0: number 1 hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरी

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में। हर हफ्ते मैं आता हूँ और आपको नए स्कैम्स या फ्रॉड के बारे में अवेयर करता हूँ, और इस हफ्ते भी एक ऐसे ही स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल्दो ये स्कैम आपके साथ कतर में हो या ना हो, लेकिन आपके अपने मुल्क में या फिर जो खेती से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस तरह का स्कैम होना आसान होता है या के साथ स्कैम हो सकता है। तो इसलिए ये आपके लिए नहीं लेकिन आपके फैमिली मेंबर के लिए या फिर आपके अपने घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने घर वालों को अपने फैमिली मेंबर को इस तरह के स्कैम के लिए अवेयर जरूर करना चाहिए। वेल, ये है फेक स्मार्ट एग्रीकल्चरल IoT डिवाइस स्कैम, जो आमतौर पे गाँव के एरियाज में ज्यादा होता है। रूरल एरियाज के फार्मर्स को टारगेट करने के लिए स्कैमर्स मॉडर्न स्मार्ट IoT एग्रीकल्चर डिवाइस जैसे कि सॉयल टेस्टर या ऑटोमेटेड वाटर कंट्रोलर्स सस्ते दाम पर बेचने आते हैं। वो दिखाने के लिए एक सस्ती या नकली मशीन दे देते हैं और कहते हैं कि इसका हाईटेक सॉफ्टवेयर एक्टिव करने के लिए अभी कार्ड स्वाइप करें या एडवांस पेमेंट जरूर करें। एडवांस लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं और डिवाइस बिल्कुल कचरा निकलती है, और आप उनको पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही कोई ऑफिस है, तो ऐसे लोगों को आप सामने से पकड़ भी नहीं सकते। इसकी एक और वजह ये भी है कि जब वो आपको डिवाइस देते हैं, वो डिवाइस कुछ वक्त बाद आपको कहते हैं कि एक्टिव होगी, जो कि कंपनी से एक्टिव होती है, और वो दुनिया भर की चीजें बताते हैं, लेकिन ये तब कहते हैं जब आप पेमेंट करेंगे तब, यानी कि पेमेंट करने के बाद ये डिवाइस एक्टिव होगी, और वो यानी कि वो शख्स जो आपको डिवाइस बेचने आए वो वहां से चले जाते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि ये तो डिवाइस खराब है। ये स्कैमर्स अक्सर फेक गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स का झांसा देते हैं ताकि किसान जल्दी भरोसा कर रहे। वो कहते हैं कि अगर अभी स्कीम का फायदा नहीं उठाया तो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बहुत से भोले किसान इसका शिकार हो जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। ये नकली डिवाइस ना तो कोई सही डेटा दिखाती है और ना ही खेती में किसी तरह से भी काम आती है, उल्टा इनमें लगाए गए कार्ड से बैंकिंग फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। खेती बाड़ी के लिए ऐसी कोई भी स्मार्ट डिवाइस हमेशा रजिस्टर्ड डीलर या गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से ही खरीदें। किसी भी आने वाले अनजान सेल्समैन को फील्ड में कैश या कार्ड एडवांस पेमेंट बिल्कुल ना करें। किसी भी डील को फाइनलाइज करने से पहले हमेशा लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर से राब्ता करके स्कीम की सच्चाई का जरूर पता लगाएं। उसके अलावा आप बाकी के किसानों से, आसपास के लोगों से राब्ता रखें कि क्या इस तरह की कोई स्कीम चल रही है जिसमें आपको डिवाइस दिया जाता है और उसमें सॉइल टेस्ट करना या फिर तमाम जो चीजें हैं वो क्या शामिल होती हैं या नहीं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। तब तक होशियार रहें और सतर्क रहें इस तरह के फ्रॉड से, और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर इत्तला करें। और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की। क्लाउड टेक्नोलॉजी किस तरह कंपनीज को फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बना रही है। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग ने बिजनेस ऑपरेशंस का तरीका ही बदल दिया है। पहले कंपनीज को अपने ऑफिसेज में एक्सपेंसिव सर्वर्स और हार्डवेयर मेंटेन करने पड़ते थे। आज क्लाउड की वजह से डेटा और एप्लीकेशंस इंटरनेट के जरिए कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी एक ऑनलाइन स्टोरेज है और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज अपना डेटा सिक्योर रख सकती हैं और जरूरत के मुताबिक रिसोर्सेज यूज कर सकती हैं। देखिए, कोविड के दौरान इसका सबसे बड़ा फायदा देखने को मिला, जब एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे थे, क्लाउड टेक्नोलॉजी ने उन्हें ऑफिस सिस्टम्स तक रिमोट एक्सेस दिया। मिसाल के तौर पे, अगर एक रिटेल कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हो, तो क्लाउड सिस्टम हर ब्रांच का सेल्स डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम शो करके दिखा सकता है। इससे मैनेजमेंट को फास्टर और बेटर डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। क्लाउड का एक और बड़ा फायदा है, अगर बिजनेस ग्रो करे तो कंपनी एडिशनल रिसोर्सेज फॉरन ऐड कर देती है, वो भी बिना नए हार्डवेयर खरीदे। क्लाउड कॉस्ट को भी कम करता है।

0: बिजनेस कंटिन्यूटी को भी इम्प्रूव करता है. क्लाउड टेक्नोलॉजी बिजनेस को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है. इसीलिए फ्यूचर की सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड फर्स्ट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रही हैं. आज के इस फास्ट मूविंग बिजनेस दुनिया में कंपनीज को स्पीड चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और क्लाउड इन तमाम चीजों को पॉसिबल बनाता है. पहले अगर किसी कंपनी को नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था या स्टोरेज बढ़ानी होती थी तो उसे नए सर्वर्स और हार्डवेयर्स पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था. लेकिन आज क्लाउड की वजह से कंपनीज अब सिर्फ उतने रिसोर्सेस के पैसे देती हैं जितनी उनकी जरूरत होती है और इस मॉडल को पे एज यू यूज कहा जाता है. और ये मॉडल बहुत सारी कंपनीज अडॉप्ट कर चुकी हैं जो बिजनेसेस के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव है. वहीं क्लाउड का एक सबसे बड़ा फायदा है कोलैबोरेशन. आज एम्प्लॉइज दुनिया की किसी भी हिस्से से काम कर सकता है और रियल टाइम में एक ही डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट या सिस्टम पर मिलकर काम किया जा सकता है. इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिसीशन मेकिंग फास्टर हो जाती है. मिसाल के तौर पे अगर कतर में किसी रिटेल कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो मैनेजमेंट क्लाउड डैशबोर्ड के जरिए हर ब्रांच की सेल, हर ब्रांच की इन्वेंट्री और कस्टमर ट्रेंड्स को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं. इससे बिजनेस को मार्केट चेंजेस का फौरन पता चल जाता है और टाइमली डिसीजंस लिए जा सकते हैं. क्लाउड इनोवेशन को भी सपोर्ट करता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आसानी से इंटीग्रेट की जा सकती हैं और इस वजह से छोटी और मीडियम साइज कंपनीज भी वही एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर सकती हैं जो पहले सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशंस अफोर्ड कर पाते थे. आने वाले सालों में क्लाउड फर्स्ट स्ट्रेटजी, जी हाँ, क्लाउड फर्स्ट, पहले हम कहते थे लेडीज फर्स्ट, अब कहेंगे क्लाउड फर्स्ट, ये स्ट्रेटजी हर सक्सेसफुल बिजनेस की प्रायोरिटी होगी. जो ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड को अडॉप्ट करेंगी वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव और कस्टमर फोकस्ड होंगी. अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो मैं यही कह सकती हूं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी सिर्फ आईटी सॉल्यूशन नहीं है बल्कि ये बिजनेस ग्रोथ, इनोवेशन और फ्यूचर सक्सेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी है. वेल, आज के लिए दोस्तों इतना ही. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी. One step to 2030.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
2: Mixing in the house.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

हाँ भाई साहब, जहां तक मेरी आवाज जा रही है ये टेक्नोलॉजी की आवाज है, टेक्नोलॉजी के थ्रू जा रही है। पता नहीं ये डायलॉग मैंने क्यों बोला, मगर यू गेट द आइडिया। वेलकम टू टेक इनोवेशन। FM 107 पर मैं हूं दोहावाला कबीर आपके साथ, और ये वन ऑफ माय फेवरेट शोज, बिकॉज इसके बारे में ना मेरी पढ़ाई हो जाती है भाई। आपको बताने के चक्कर में आधी चीजों से मैं अपडेटेड रहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत ही खुशी के साथ इस शो में भी मैं आपके साथ जुड़ता हूं, तो सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आप भी जुड़िए। और अगर आप सुन रहे हैं तो भाई बहुत बढ़िया जगह पर हैं आप। सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस। तो शुरुआत करेंगे कुछ जबरदस्त वेबसाइट्स / AI टूल से, और उसके बाद गैजेट्स एंड देन खबरें टेक्नोलॉजी की दुनिया से, और साथ में गेमिंग की दुनिया से भी, क्योंकि भाई हमारी तरफ गेमिंग की दुनिया में भी बहुत बहुत हलचल हो रही है, इधर से उधर मामला हो रहा है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले इन एप्स दिस वीक। आज बताऊंगा आपको वेबसाइट्स / AI टूल्स। शुरू करते हैं ट्रेंडिंग एप्स। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट जो आज बात करूंगा, अगेन आई एम टेलिंग यू कोई रैंकिंग नहीं है, अब मैं सिर्फ इन ऑर्डर ऑफ माय रिटन पीसेस बता रहा हूं। सबसे पहले बात करूंगा चैटर बॉक्स AI के बारे में। चैटर बॉक्स CHATTER BOX chatterbox.ai। अब जैसे इसके नाम में चैटर है तो ये आवाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये बिल्कुल है आवाज से जुड़ा हुआ। इसके दो वर्जन है, ऑफकोर्स एक पेड वर्जन है, एक फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन जो है वो काफी हद तक आप यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, टेक्स्ट टू स्पीच करता है, लेकिन वो वाली आवाज नहीं जो आपको बाकी AI देते हैं। ना मजा नहीं आता बाकी AI में, वो तो बोल भी नहीं पाते। इसमें जो आपको आवाज मिलेगी वो इतनी नेचुरल है टेक्स्ट टू स्पीच वाली कि कोई कह ही नहीं सकता कि AI है। आई कैन गारंटी यू इसके AI में मॉड्यूलेशन है, इसके AI में पॉजेज हैं, एंड एवरीथिंग दैट यू सी एक नेचुरल आवाज में। इसके साथ साथ

अगर आप चाहते हैं तो इसे एक सैंपल वॉइस दे सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके वॉइस यूज की जाए, आपकी वॉइस को, आपकी आवाज को भी ये एआई यूज कर सकता है। आपको अपना सैंपल रिकॉर्ड करके इसको देना पड़ेगा और जब आप दे देंगे, अपलोड कर देंगे, द एआई विल अंडरस्टैंड योर वॉइस एंड देन क्रिएट एवरीथिंग दैट यू वांट। ये इतनी अमेजिंग चीज है ना भाई। तो आप इसके बहुत सारे यूसेज हैं, यूसेज है इसका। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल हम मेरी तरह स्टोरी नरेशन करना चाहते हैं पर आपको लग रहा है यार बोलने में मुझे दिक्कत आएगी, ठीक है मैं बोलना नहीं चाहता, बट आई कैन राइट, ठीक है ये रहा। कहीं से आपने ट्रांसक्रिप्ट उठा लिया, आप लोगों को लगा यार ये जो है ना मैं चाहता हूँ मेरी आवाज में तो कैसे लगेगी, ठीक है ट्रांसक्रिप्ट निकालिए, ट्रांसक्रिप्ट को एआई को दे दीजिए और अपनी आवाज का सैंपल दे दीजिए, आपकी आवाज में वो सब कुछ पढ़ देगा सब कुछ। एंड इट इज सच अ प्रोफाउंड एआई, मुझे बहुत पसंद आया। तो दिस वीक ऑन द लिस्ट सबसे पहले मैंने इसी के बारे में बात करने का सोचा, chatterbox.ai। दोबारा बता रहा हूँ, chatterbox.ai यूज कीजिए। आई एम प्रीटी श्योर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हैं फॉर प्रोफेशनल यूसेज, आपको और भी फीचर्स मिलेंगे। इसमें वॉइस के टेक्सचर को भी आप बदल सकते हैं, वैसे तो आप फ्री में भी बदल सकते हैं मगर उसमें और भी ज्यादा प्रो ऑप्शंस हैं, जिसमें इफेक्ट्स की बात की जाए, उसमें थोड़ा सा इमोशन की बात की जाए। आप जैसे भी इसे बताएंगे एआई को, प्रॉम्प्ट देना बेहद आसान है बिकॉज इसमें क्या प्रॉम्प्ट सिर्फ अपने आप नहीं देना है आपको, यू हैव अ गाइडेड यूआई, तो वो सब कुछ है उसमें, वो गाइड करता चला जाएगा। सिर्फ आपको यस नो सिलेक्शन करना है और ऑब्जेक्टिवली आप इस एआई को रन कर सकते हैं। सो chatterbox.ai मूविंग ऑन। भाई अगला एआई मुझे बहुत बहुत बहुत बहुत पसंद आया, ये बहुत कमाल का एआई। इसका नाम है रनेबल एआई, रन भागने वाला रन, एबल ए बी एल ई एक साथ लिखिएगा डॉट एआई। ये कैसा एआई पता है, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस। तो इस एआई में बहुत सारे टूल्स हैं और ये एआई आपको एआई बना के दे सकता है। फॉर एग्जांपल इससे आपने बोला कि भाई मेरे को स्पॉटिफाई जैसा एक एआई बना के दे दे, ये आपको बना के दे देगा। आपने इससे बोला भाई क्रिएट अ फ्लैपी बर्ड गेम, ये आपको फ्लैपी बर्ड गेम बना के दे देगा। उसमें चिड़िया का रंग भी आप ही डिसाइड करेंगे, चिड़िया का नाम भी, गेम का नाम भी आप ही डिसाइड करेंगे। मेक श्योर कि आपको जो इंटरनेट है वो अच्छे से रन करता हो, कतर में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू गो आउटसाइड कंट्री वाइज भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। मगर इसके एआई में आप जो भी प्रॉम्प्ट देंगे, इट क्रिएट्स मैजिक ब्रो। आई जस्ट लव्ड दिस एआई। एक बार आप एआई की भीड़ में ये ट्राई करके देखिएगा एंड आई एम प्रीटी श्योर आपकी भी इससे दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत जो लार्ज जो चीजें होती हैं उन्हें बनाना, डिजाइन करना, वेबसाइट फॉर्मेशन, आपको कोई ऐप बनाने की थ्योरी चाहिए, उसे प्रैक्टिकलिटी में बदलना है, एक सैंपल चाहिए, ये बहुत कमाल की चीज है। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल देखा था जिसके बाद मैंने एआई देखा। तो एक बंदा जो था उसने रेस्टोरेंट खोला, ही वॉन्टेड टू मेक एन ऐप फॉर द रेस्टोरेंट, वो भी आपको ये बना के दे सकता है लिटरली, और आपको एक सैंपल के तौर पर दे देगा कि भाई ऐसी ऐप आपकी दिख सकती है एंड दिस इज हाउ इट विल रन। तो ये इतना अच्छा काम का एआई है कि ओए रे छोटे बाबू, इसकी बहुत तारीफ करता हूं मैं, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने ऑफिस में भी फैला दिया है इसको। एंड अगर आपके किसी काम आ सकता है तो जस्ट आप देख लीजिएगा, वो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला सीन है इसके साथ। तो रन एबल एआई, ठीक है दोबारा बोल देता हूं मैं, रन भागने वाला रन, साथ में चिपका के लिखना है एबल ए बी एल ई, रन एबल डॉट एआई। आप जाइएगा और आपको इस पे बहुतेरे टूल्स मिलेंगे, और बहुतेरे, इट यूजेस चैट जीपीटी, इट यूजेस क्लिंग, इट यूजेस सीडेंस एंड लॉट ऑफ अदर एआईज टू जनरेट स्टफ एंड आई लव्ड इट। ओके नाउ मूविंग ऑन, अगली जो ऐप है इसका नाम है ईट एज मच डॉट एआई, यही नाम है इसका, ईट खाने वाला ईट, ई ए टी, ईट दिस मच एज मच, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको, मैं करेक्शन कर देता हूं, ईट एज मच, वो याद आ गया, ईट दिस मच, ओके। तो ई ए टी टी एच आई एस एम यू सी एच, ईट दिस मच डॉट ए आई, ये एक हेल्थ ऐप है, नॉट रियली एन ऐप, इट्स बेसिकली एन एआई। ये क्या करता है, आप इसको बताइए कि भाई मेरी हाइट इतनी, मेरा वेट इतना है, मुझे दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है, ये आपको बताएगा, ठीक है, उन कैलोरीज के हिसाब से आपकी डाइट को तैयार करके देगा कि कितनी डाइट आपको लेनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो आपको बताएगा कि भाई आपका वजन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, जो जो आपका बीएमआई रिपोर्ट है वो बताती है, तो उसके हिसाब से आपको ये खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में ये, लंच में ये, डिनर में ये, ब्रंच में ये आप खा सकते हैं नहीं खा सकते। इट क्रिएट्स अ होल चार्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मास, एंड इतनी कमाल की चीज

0: सही ऐसी बहुत सारी ऐप्स पहले ही आ चुकी हैं. एक मेरा दोस्त है शहबाज, वो बता रहा था हेल्दी फाई करके, बट आई थिंक ये भी बहुत बहुत अच्छी है. तो शहबाज भाई थैंक यू सो मच फॉर दैट ऐप, अगले हफ्ते वो बताएंगे. बट फॉर नाउ ये जो है eatthismuch.ai सच में बहुत कमाल की ऐप है. आपकी बॉडी मास के हिसाब से, यानी BMI के हिसाब से, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आपको पूरा डाइट चार्ट बना के देगी. बहुत बहुत अच्छी चीज़ है. एंड इस एरा में हम जी रहे हैं, यहाँ पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है. सो टू कंट्रोल दैट, टू कर्व दैट, आई थिंक दिस विल वर्क परफेक्ट फॉर यू. ईट दिस मच AI. ठीक है, बढ़ते हैं आगे गैजेट्स दिस वीक की तरफ.
1: Cool gadgets.
0: तो नंबर वन ऑन द लिस्ट आज के गैजेट्स में है एसर चार्जर मेट. एसर चार्जर मेट ये भी एक स्लीव है लैपटॉप को रखने के लिए, बट जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं. आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, लैपटॉप तो मैं बैग में रख सकता हूँ, व्हाई डू आई नीड अ स्लीव. ये जो लैपटॉप स्लीव है इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है स्लीव में ही. 13 इंचेस टू 16 इंचेस लैपटॉप्स आराम से इसमें आ सकते हैं, ये चार्ज कर सकता है. फास्ट चार्जिंग पैड इसके साथ में लगा हुआ है, उस पर आप फोन चार्ज कीजिए, अपने एयरबड्स चार्ज कीजिए, माउस चार्ज कीजिए. इट इज सच अ ग्रेट थिंग टू हैव और बहुत अंडर बजट. आई थिंक यू कैन गेट इट इन अंडर 1000 अगर आप इंडिया से किसी से मंगवाते हैं या खुद इंडिया के लेकर आते हैं, तो अंडर 1000 रुपीज में आपको मिल जाएगा और कतर में तो बहुत ही सस्ता मिलेगा भाई. तो एसर चार्जर मेट अगर कतर में कहीं मिले तो मुझे ही बताइएगा, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर दिस वन. तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है फिलहाल. सो इंटरनेशनली अगर आप इसकी शिपिंग वगैरह कराते हैं तो वो आपकी मर्जी है. आपके दोस्त हैं इंडिया में, आप खुद इंडिया के हैं तो वहां से लेके आ जाइए. यहाँ पे ढूंढना है तो आप ढूंढ के लोकली बता दीजिएगा. आई डोंट थिंक ये लोकली अवेलेबल है फॉर नाउ, एज इफ मतलब एज फार एज आई नो, बट स्टिल यू कैन ट्राई. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर गैजेट. अगला जो है भाई साहब ये है DJI माइक 3. यहाँ पर कतर में जब आप पत्थर उछालेंगे हवा में तो एक ना एक इन्फ्लुएंसर के सर पे जाके गिरेगा, वी ऑल नो इट. पर माइक्स जो है ना वो ऐसे होने चाहिए जो स्टाइलिश दिखे. मैं मानता हूं आपने माइक जो है वो क्लब कर लिया, अपने शर्ट में लगा लिया, टी शर्ट्स में लगा लिया. देर आर मैनी फैशन स्टेटमेंट्स माइक की वजह से, क्योंकि भाई जेन जीज रॉक. तो ये जो माइक है DJI माइक 3, इसकी मैंने तारीफ पहले भी करी थी, अभी भी करूंगा. अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, ये माइक आप ले लीजिए, आपका काम खत्म. इसके बाद आपको वॉइस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आवाज एकदम परफेक्ट जाएगी एंड इट विल बी वेरी क्रिस्पी एंड बहुत अच्छी आवाज का टेक्सचर निकल के सामने आएगा. इट विल साउंड रियली क्लियर, क्योंकि अमूमन जब लोग फोन यूज करके वीडियोज बनाते हैं तो अक्सर आवाज थोड़ी हॉल हो जाती है. आई नो एप्पल में फीचर है कि उससे भी बचा जा सकता है, मगर वो थोड़ी मैकेनिकल हो जाती है टाइम्स. मगर माइक का काम तो भाई माइक ही करता है एंड दिस इज जस्ट ब्यूटिफुल टू हैव. ओके, ब्यूटीफुल मैंने वर्ड यूज किया, माइंड कीजिएगा, क्योंकि सच में इसको आप कैप पे लगाइए, शर्ट पे लगाइए, अंदर चेन लगा के बाहर इसके मैग्नेट से चिपका लीजिए, एनी वे यू वांट टू यूज इट. ठीक है, बढ़ते हैं अगले गैजेट की तरफ. अगला गैजेट है एयर फ्लाई SE. एयर फ्लाई आसमान वाला, एयर फ्लाई FLY स्पेस देखिए SE कैपिटल लेटर्स में. तो आपने देखा होगा कुछ जहाजों में, स्पेशली कतर एयरवेज में जब आप सफर करते हैं तो उन जहाजों में एक हेडफोन आपको दिया जाता है कि भाई पिक्चर विक्चर देख लो, कोई टेंशन नहीं है. बाकी एयरलाइंस में, मगर मैं कतर का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो जो हेडफोन्स होते हैं अक्सर थोड़े से पेनफुल हो जाते हैं, ज्यादा लंबे वक्त तक आप मूवी नहीं देख सकते. मगर ये जो है ये एक टूल है, ये उसमें आपने प्लग इन कर लिया हेडफोन जैक की जगह, अगर ये लगा दिया आपने तो आप अपने खुद के हेडफोन्स यूज कर सकते हैं मूवी देखने के लिए. आप गेमर्स पर जाते हैं, आपका जो हमारा जो प्ले स्टेशन का जो कंट्रोलर है उसमें भी नीचे जैक दिया हुआ होता है, राइट. उस जैक में भी अगर आप ये प्लग इन कर लें तो अपने हेडफोन्स लगा के आप गेमिंग कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है. ये इतना छोटा सा है, इतनी छोटी सी डिवाइस है, बट इट एब्सोल्युटली रॉक्स. ये बहुत काम किए, ट्रस्ट मी ऑन दिस. क्योंकि ये फोन्स में, प्लेस्टेशन कंट्रोलर में, जहाज में उड़े तो वहां पे बहुत काम आएगा आप. तो एक बार आप देखिएगा इसको, एयर फ्लाई SE, AIRFLY SE, DJI और इसके अलावा DJI माइक जो मैंने कुछ से पहले बताया, ये दोनों आपके काम आएंगे, छोटे थे लेकिन बहुत काम के. ठीक है, तो ये सब गैजेट्स दिस वीक. अब बढ़ेंगे जरा न्यूज की तरफ, इन टेक न्यूज.
1: लेटेस्ट टेक न्यूज.
0: सबसे पहली खबर एप्पल से आ रही है। एप्पल की मार्केट में हलचल होना शुरू हो जाती है जब सितंबर आने वाला होता है एंड एप्पल इज ऑल सेट टू रिलीज आईफोन 18। पर एक अफवाह उड़ती उड़ती आई है, अफवाह जो है वो ये कहती है कि 18 प्रो जो आएंगे, जो प्रो सेक्शन होता है हमेशा फोन्स का, वो थोड़ा महंगा करने वाला है एप्पल इस बारी, और इस बार इट कैन टच $1,400 इंटरनेशनल प्राइस। ये कुछ ज्यादा लग रहा है मुझे, आई डोंट नो, आई थिंक एप्पल इतना भी हद तक नहीं जाएगा, अगर जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि $1,400 इज अ लॉट ऑफ मनी ब्रो, मतलब मैं खुद नहीं लूंगा ब्रो। मतलब इतने जमा भी हो जाता मैं सोचूंगा क्यों लूं यार मैं, बिकॉज इट्स अ हेल लॉट ऑफ मनी। एंड इसके साथ साथ जो मैकबुक न्यू है उसका भी प्राइस बढ़ाया गया और काफी सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। मैं रीजन भी बता देता हूँ प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं। आजकल कंपनीज बड़ी बड़ी जो कंपनी है जायंट्स टेक जायंट्स है, उन्हें मेमोरी खरीदनी पड़ रही है, मार्केट में थोड़ा सा एक तनाव बना हुआ है, एक सिचुएशन ऐसी आ गई जहां पे एआई की वजह से, एआई जॉब्स तो नहीं खा रहा है मगर बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए तकलीफ पैदा कर रहा है, बिकॉज डेटा उसके लिए चाहिए मेमोरी है एंड दीज पीपल आर गोइंग टू बाय मेमोरीज, और मेमोरी खरीदने की वजह से जो मेन चीज है वो महंगी होती जा रही है। आपने देखा होगा गेमिंग कंसोल्स में प्ले स्टेशन भी महंगा हो गया है। तो अभी टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है मगर हम उस एरा में है जहां पे चीजें थोड़ी सी और महंगी होती नजर आ रही है। सो जस्ट बी केयरफुल एंड आई डोंट नो एप्पल कितने में लॉन्च करेगा, बट खबर ये कहती है कि $1,000 पार होने वाले हैं इस बार का आईफोन 18 प्रो will be costlier compared to the pros last year. ठीक है, अब बढ़ते हैं गेमिंग न्यूज की तरफ।
2: गेम एंड एंटरटेनमेंट,
0: गेमिंग की खबरें बहुत सारी है, बड़े बड़े गेम्स लॉन्च होने वाले हैं, मगर एक गेम जिसने दिल जीत लिया है वो है बिग वॉक। भाई बिग वॉक बहुत बढ़िया गेम है यार, बहुत बढ़िया गेम है। इसमें क्या है ना, वॉकिंग और टॉकिंग वाला सीन है, तो आप जो है 2 से लेकर 12 दोस्त ऑनलाइन कनेक्ट होकर खेल सकते हैं, और आपको कुछ करेक्टर्स दिए जाएंगे, मल्टी कलर्ड है भाई, वो स्नोमैन की तरह है, लंबी लंबी नागे उनकी, और बड़े क्यूट से दिखते हैं, और उनके साथ आप खेल सकते हैं, दोस्तों के साथ पजल सॉल्व कीजिए। इसमें एक मैकेनिक डाला कि अगर आपका दोस्त दूर हो गया है, कहीं और जाके बैठा हुआ है, तो उसकी आवाज आपको वैसी ही सुनाई देगी जब वो दूर है, गेम के अंदर। एंड ये गेम हिट हो गया आते के साथ ही, वन ऑफ द बेस्ट कोऑप वॉकिंग सिम्स एवर। ये पजल एडवेंचर गेम है और 20+ आर का गेम है। आई थिंक दिस जस्ट सेज अ लॉट अबाउट द गेम, एंड ऐसे छोटे छोटे गेम बड़े बड़े ट्रिपल ए गेम्स को हराते हैं, तो मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है। सो कुडोज टू द टीम ऑफ बिग वॉक। तो ये था आज का टेक इनोवेशन। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज गेट इन टच विद अस, और मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से। मैं कबीर, दिस इज कबीर, मैं कबीर, दिस कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलाम।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, अपने पर्सनल डेटा को फिशिंग से बचाने के लिए इन टिप्स पर अमल कीजिए। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देने को अवॉइड कीजिए। कभी भी जाती मालूमात या डेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें और सिर्फ उन लोगों से बातचीत करें जिन्हें आप जानते हैं। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपकी फैमिलीज के नौजवान यूजर्स के लिए कंटेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव सोच के बारे में। पॉजिटिव सोच जिंदगी को आसान और खूबसूरत बनाती है। जब इंसान हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। अक्सर हम नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं जो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का सबब बनता है, लेकिन अगर हम अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर लें तो हम ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रह सकते हैं। इस्लाम हमें उम्मीद और तवक्कुल का दर्ज देता है, यानी हर हाल में अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखना। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम को इग्नोर करें, बल्कि ये है कि प्रॉब्लम के हल पर फोकस करें। आज का मल ये है कि किसी भी हालात पे एक पॉजिटिव पहलू जरूर ढूंढें और अपनी थिंकिंग को बेहतर बनाएं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्क के मामले में आजमाया न जाए तो तीन काम कीजिए। नंबर एक, जो कुछ मिल रहा है उसे महज अल्लाह की अता समझिए, ना कि अपनी काबिलियत का नतीजा, और साथ ही अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिए। नंबर दो, जिनको कम या नफातुला रिस्क मिल रहा है उन्हें हकीर न जानिए, और ना उन लोगों से असर कीजिए जिन्हें छपर पाड़ रिस्क मैसर है। ये सब राजिक की अपनी तकसीम है और उसके भेद वही जानता है। और नंबर तीन, जितना हो सके अपने रिस्क में दूसरों को शामिल कीजिए, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम शामिल कीजिए। और याद रखिए कि सबसे ज्यादा हक रहम के रिश्तों यानी बहन भाइयों का है।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है, और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने के नाम, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो कोशिश की जाए कि सब एक साथ इकट्ठे बैठकर खाना खाएं। अहले खाना की कोशिश यही होनी चाहिए कि सब मिलकर खाना खाएं, बजाय इसके कि हर कोई अपना खाना अलग अलग लेकर अलग अलग अवकात में खाना खाए। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना,

0: एक आदमी का खाना दो आदमियों के लिए काफी है, दो आदमियों का खाना चार आदमियों के लिए काफी है और चार आदमियों का खाना आठ आदमियों के लिए काफी है। रिवायत है सही मुस्लिम की।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ हमारा वीकली प्रोग्राम, जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुई और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी जो पहली बार हुई, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशंस, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है FM 107। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को शेप किया है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं कतर के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल के सफर पर, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने सब कतरियों का सर फख्र से ऊपर किया है। एक कहानी जो ताकत, तवज्जो और तकदीर का इजहार करती है। ये कहानी है एक जवान की जो दुनिया के सामने आया और सिर्फ एक बारबेल ही नहीं उठाया बल्कि पूरी कौम के ख्वाब भी उठाए। उनका नाम है फारिस इब्राहिम अलबख, जिन्हें बहुत से लोग मैसो हसोना के नाम से भी जानते हैं। वो शख्स जिसने टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स में तारीख दर्ज की। दोस्तों, फारिस पैदा हुए जून 4, 1998 को एक ऐसे खानदान में जो वेटलिफ्टिंग से मोहब्बत करता था। उनके वालिद इब्राहिम हसोना 3 ओलंपियन रह चुके थे इजिप्ट के लिए, एक ऐसे शख्स जो ग्रेटनेस का ताकुब करना जानते थे। बचपन में फारिस अपने वालिद को ट्रेनिंग करते और दूसरे लिफ्टर्स को कोच करते देखते। बार बेल की आवाज, चौक डस्ट और एक कामयाब लिफ्ट के बाद तालियों की गूंज, ये सब उनकी दुनिया का हिस्सा बन गया था। उन्होंने एक मर्तबा कहा था, आई फेल इन लव विद द साउंड ऑफ वेट्स हिटिंग द फ्लोर, और ये आवाज उनकी जिंदगी का लहजा बन गई। फारिस का सफर एक नया मॉडल ले गया जब उनका खानदान कतर शिफ्ट हुआ। यहाँ उन्हें मिली अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, डेडिकेटेड कोचेस और एक कौम जो स्पोर्ट्स एक्सेलेंस में सरमायाकारी कर रही थी। कतर एस्पायर्स एकेडमी और कतर वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के जरिए उन्होंने अपनी सलाहियत को निखारा। वो सिर्फ वेट नहीं उठा रहे थे बल्कि वो एक्सपेक्टेशंस उठा रहे थे। अपने 3 तक वो हेडलाइंस में आने लगे, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स जीतने लगे, यूथ रिकॉर्ड तोड़ा। इन सब चीजों के साथ उन्होंने ये सिग्नल दिया कि कुछ खास आने वाला है। चलिए जल्दी से अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 31 जुलाई 2021 टोक्यो जापान, द ओलंपिक गेम्स। दुनिया के अजीम तरीन एथलीट्स खामोशी में इकट्ठा हुए थे। भाई, पैंडेमिक की वजह से कोई चेयरिंग वगैरह, क्राउड वगैरह नहीं था, सिर्फ कैमरास की हल्की सी आवाज और मुकाबला जीतने की धड़कने। فارس الباخ نے پلیٹ فارم پر قدم رکھا مینس 96 کیجی ویٹ لفٹنگ فائنل کے لیے پرسکون مطمئن اور ان کی نگاہیں بار بیل پر جمی ہوئی تھی اسنیچ میں انہوں نے اٹھایا 177 کلو گرام بے مثال ٹیکنیک کے ساتھ پھر آئی کلین اینڈ جرک ایونٹ کا سب سے مشکل حصہ انہوں نے اٹھایا 225 کلو گرام ایک اولمپک ریکارڈ اور جب ٹوٹل ہوا تو 402 کلو گرام فارغ البخ بن گئے قطر کے پہلے اولمپک گولڈ میڈلسٹ اس لمحے اولمپک لائٹس کے نیچے قطری فلیگ بلندی پر تھا ان کی آنکھوں میں آنسو کا سمندر تھا ساری زندگی کی محنت قربانی اور یقین آخر کار رنگ لے آئی تو دوستوں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ سن رہے ہیں پروگرام قطر فرسٹ

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ। तो दोस्तों, जब ये खबर कतर में फैली तो गलियों में जश्न का समा था। दोहा कॉर्निश से लेकर अल वाखरा तक हॉर्न्स बजने लगे, फ्लैग्स लहराने लगे और लोगों ने खुशी से चीयर किया। पब्लिक वॉइसेस चारों तरफ गूंज गईं और ये स्लोगन कुछ थे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि दिस इज अ न्यू चैप्टर ऑफ कतर, ही मेड अस ऑल प्राउड, अवर यूथ नाउ हैव अ हीरो। कतर ने पहले भी ओलंपिक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते थे मगर गोल्ड कभी नहीं जीता था। वारिस अलबख ने उस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। कतर का फख्र एक नई तारीख का आगाज हुआ जब फारिस अलबख ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। तो सिर्फ एक इंसान ही नहीं जीता बल्कि पूरे मुल्क की ये जीत थी। उस लम्हे ने हर कतरी को एक नई उम्मीद दी। एस्पायर एकेडमी के हॉलवेज में तालियां बजने लगी, स्पोर्ट्स क्लब में नए ख्वाब सजने लगे और हर स्कूल के ग्राउंड में एक नया जज्बा पैदा हुआ। मीडिया ने उन्हें हीरो करार दिया और सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड करने लगा। लोगों ने उनकी लिफ्ट्स को दोबारा देखा, उनके इंटरव्यूज को शेयर किया और उनकी मेहनत को सैल्यूट किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एथलीट्स और आम लोग सब ने एक ही बात कही, ये सिर्फ एक मेडल नहीं, ये कतर का मुस्तकबिल है। फारिस का सफर अब सिर्फ उनका ही नहीं रहा, अब हर वो नौजवान जो जिम में पहली बार बारबेल उठाता है उसके दिल में एक ही आवाज होती है, अगर मैं सो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, उनकी ताकत के बावजूद फारिस अलबख अपनी ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन के लिए भी मशहूर हैं। इंटरव्यूज में वो अक्सर शर्माता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखाई देते हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट देते हैं अपने कोचेस, अपने वालिद और कतर स्पोर्ट्स प्रोग्राम को। उन्होंने एक मरतबा कहा, आई वॉन्टेड टू मेक माई फादर प्राउड बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक कतर प्राउड, द कंट्री दैट गेव मी एवरीथिंग। उनकी कहानी सिर्फ वेट्स उठाने की ही नहीं, ये वैल्यूज उठाने की कहानी है, डेडिकेशन, रेस्पेक्ट और नेशनल प्राइड की। वो हर लिफ्ट के साथ एक पैगाम देते थे कि असली कुवत सिर्फ जिस्म में नहीं होती बल्कि दिल और नियत में भी होती है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है हर उस शख्स के लिए जो ख्वाब देखता है और उन्हें हकीकत में बदलना चाहता है, मेहनत, सब्र और वफादारी के जरिए। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। चलिए जी, अब एक रुख करते हैं कतर के गोल्डन एरा ऑफ स्पोर्ट की। फारिस का गोल्ड मेडल एक टर्निंग पॉइंट था कतरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। भाई ये उस वक्त आया जब कतर पहले ही एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हब के तौर पर उभर रहा था। वर्ल्ड इवेंट्स होस्ट करना, टॉप फैसिलिटीज बनाना और एस्पायर एकेडमी और टीम कतर जैसे प्रोग्राम के जरिए एथलीट्स को तरबियत देना, ये सब उस सफर के हिस्से थे। एशियन गेम्स से लेकर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 तक कतर ने साबित किया कि वो सिर्फ चैंपियंस को होस्ट नहीं करता, वो उन्हें क्रिएट भी करता है। फारिस अल बक की जीत उस जज्बे का निशान बन गई, एक पैगाम हर अरब नौजवान के लिए कि ड्रीम बिग, ट्रेन हार्ड, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। दोस्तों, कतर की स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेडल्स के लिए ही नहीं, ये कतर नेशनल विजन 2030 का हिस्सा है। इसका मकसद है हेल्थ का फरोग, यूथ एम्पावरमेंट और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। स्पोर्ट्स सेक्टर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। टूरिज्म और ग्लोबल इवेंट्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टेडियम्स और ट्रेनिंग अकेडमीज, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वगैरह। फारिस का गोल्ड मेडल एक प्रूफ था कि ये विजन काम करता है, कि जब पैशन और पॉलिसी मिलते हैं तो चैंपियंस पैदा होते हैं। तो दोस्तों, वहीं आज जब फारिस किसी भी जिम में दाखिल होते हैं तो जवान लिफ्टर्स रुक जाते हैं, उन्हें देखते हैं। वो सिर्फ एक एथलीट नहीं, एक रोल मॉडल बन चुके हैं। एक जवान जो दो कौमों को अपने दिल में लेकर चला, इजिप्ट अपने खून से और कतर अपने फख्र से, और अपनी ताकत के जरिए उन्हें एक कर दिया। भाई हर दफा जब वो गोल्डन रिप्ले चलती है कि वो जब बारबेल उठा रहे हैं, सीधे हो रहे हैं और रोर कर रहे हैं, कतर को याद आता है कि क्या कुछ मुमकिन है जब ख्वाब मिलते हैं अज़्म से। तो दोस्तों, सिर्फ 17 साल की उम्र में फारिस एक वर्ल्ड क्लास जूनियर लिफ्टर बन चुके थे, यूथ रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे और इंटरनेशनल मेडल्स जीत रहे थे। 2016 में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हेडलाइंस बनाई और 2019 तक वो दुनिया के सबसे ताकतवर लिफ्टर्स के साथ कॉम्पीट कर रहे थे। टोक्यो में मंच के लिए स्टेज तैयार हो रहा था, मगर उनका सफर आसान बिल्कुल भी नहीं था। इंजरीज, स्ट्रिक्ट डाइट्स और घंटों की मेहनत ने उनकी हदों को और उनके सब्र को आजमाया। फिर आया पैंडेमिक, जिम्स बंद, इवेंट्स कैंसिल और हर तरफ अनसर्टेनिटी, लेकिन फिर भी वो ट्रेन करते रहे और वो यकीन रखते रहे। दोहा के ट्रेनिंग हॉल से लेकर टोक्यो के ओलंपिक स्टेज तक फारिस अल बक का सफर एक मिसाल है, एक यकीन है, डिसिप्लिन और सपोर्ट मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कतर सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखता है, वो उन्हें हकीकत में भी बदलता है। वो सिर्फ एम्बिशन का मुल्क नहीं, वो अचीवमेंट का मुल्क है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहेंगे, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब हमें टेक्स्ट करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 666-22-107। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नया टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ प्रोग्राम कतर फर्स्ट से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। दिल से देसी।
2: दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें, छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
3: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें।
5: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: FM 107 पर हर गाना हिट,
6: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम गजाई फाइबर के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सेहत है उसके लिए नहायत ज़रूरी हिस्सा है। फाइबर पौधों से हासिल होने वाली गिज़ा में मौजूद एक ऐसा जुज़ है जिसे जिस्म मुकम्मल तौर पर हज़म नहीं कर पाता, लेकिन यही खसूसियत इसे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद बनाती है। फाइबर की दो किस्में होती हैं, सोलूबल फाइबर, ये पानी में हल हो जाता है और जेल जैसा मादा बनाता है, ये खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके जो ज़रिए हैं यानी हम किस तरह से उसे हासिल कर सकते हैं, अगर हम अपनी खुराक में ओट्स शामिल करें, एप्पल जो हैं वो हैं, माल्टे जो हैं वो हो सकते हैं, और इसी तरह बीन्स या फलियाँ जो हैं वो, ये तमाम सोलूबल फाइबर्स हैं। इन सोलूबल फाइबर जो है ये हमारे जो फिसिस हैं या पखाने में हजम पैदा करता है और ख़ुराक को आंतों में आसानी से आगे बढ़ने में मदद देता है, और ये हम जो साबित अनाज है, वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा नट्स हैं और चोकर जो है उससे हासिल कर सकते हैं। फाइबर के बेशुमार फवायद हैं जैसे कि कब्ज से बचाव करती है, इसी तरह जो हमारे आंतों की जो हरकत है उसे बाकायदा बनाती है और जो मुफीद बैक्टीरिया हैं उनकी भी ग्रोथ को ज़्यादा कर देते हैं, और जो वज़न जो है आजकल पूरे ग्लोबल इशू है उसको भी बैलेंस रखने में मदद देती हैं। दिल की सेहत में बेहतरी आती है और इसी तरह बहुत सी बीमारियों के जो ख़तरे हैं उनमें भी कमी आ जाती है। अब ये है कि फाइबर से जो भरपूर गिज़ाएँ हैं वो हमें इस्तेमाल करनी है, उनमें फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स में एप्पल हैं, नाशपाती है, माल्टे हैं, कैरेट्स हैं, ब्रोकली, दालें, लोबिया और इसी तरह से ओट्स।

0: हैं, ब्राउन राइस हैं, और इसी तरह से जो साबुत गंदम की रोटी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फाइबर से भरपूर गिज़ाएँ हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतरीन काम करना शुरू कर देता है। फाइबर का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए और उसके साथ पानी भी आप ज़्यादा मिकदार में लें ताकि गैस या पेट फूलने की शिकायत ना हो। सेहतमंद हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए रोजाना मुनासिब मिकदार में फाइबर का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवश खान और ये शो है आपका फेवरेट द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। आज जिन नबी की कहानी को लेकर हाजिर हुई हूं वो है हजरत यूनुस अलैहि सलाम। यकीनन इनका वाकया मैंने और आपने अपने बचपन से सुना है, लेकिन आज जरा कुछ और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो चलें शुरू करते हैं। हजरत यूनुस इब्ने मुत अलैहि सलाम अल्लाह ताला के महबूब पैगंबरों में से एक थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नैनवा की तरफ भेजा जो मौजूदा शुमाली इराक में वाक़े एक बड़ा शहर था और उस वक्त उसकी आबादी 100,000 से ज़ायद थी। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम उस शहर में पैदा हुए और अपने हमवतनों के दरमियान परवान चढ़े। बज़ाहिर वो एक आम इंसान लगते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपना रसूल मुंतखब किया ताकि वो अपनी कौम को हिदायत की रोशनी दिखाएं। नैनवा की अजीम व शानदार बस्ती अल्लाह ताला के पैगाम को फरामोश कर चुकी थी। लोग शिर्क और बुत परस्ती में मुबतला हो चुके थे और गुनाहों में डूबे हुए थे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहि सलाम को मुंतखब फरमाया ताकि वो लोगों को सच्चाई, तौहीद और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए फौरन अपनी दावत शुरू की। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत करने और बुत परस्ती तर्क करने की तलकीन दी, लेकिन नैनवा के लोग हज़रत यूनुस अलैहि सलाम की नसीहत को मानने से इनकार कर गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया की कई कौमें अपने नबियों और पैगंबरों को रद्द कर चुकी थीं। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम ने मायूस ना होते हुए अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना जारी रखा। उन्होंने इन लोगों को अल्लाह के अजाब की याद दहानी कराई जो अहद से गाफिल होके नाफरमानी किया करते थे। उन्होंने मिसालें दीं कि अल्लाह ताला ने किस तरह आद, समूद और नबी और नूह अलैहि सलाम की कौमों पर अजाब नाजिल फरमाया, लेकिन नैनवा के लोग नबी की बातों को संजीदगी से नहीं लेते थे। वो कहते थे हम और हमारे अबाउजदाद इन देवताओं की इबादत करते आए हैं और हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम अपनी कौम की हिदायत के लिए सख्त कोशिश करते रहे। वो चाहते थे कि लोग अल्लाह के करीब आएं, लेकिन उनकी सख्तियां और अनाथ देखकर वो दुखी हुए। उनके दिल में ये खौफ पैदा हुआ कि शायद अल्लाह का अज़ाब उनके लोगों पर नाजिल हो जाए और उससे बच ना पाए। इसीलिए हज़रत यूनुस अलैहि सलाम बग़ैर अल्लाह के हुक्म के अपने लोगों को छोड़कर शहर से रवाना हो गए। अल्लाह ताला को ये अमल ना पसंद आया क्योंकि वह अपने नबी को बग़ैर हुक्म के कौम से अलग नहीं देखना चाहते थे। कुरान में इस बात का जिक्र है और जिक्र करो उस शख्स का जिसे मछली ने निकल लिया जब वो गुस्से में निकला और सोचा हम उस पर कोई फैसला नहीं करेंगे। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम के जाने के बाद नैनवा के आसमान पुरसकून नहीं रहे। आसमान में शदीद तूफान उठा और सूख बादल शहर पर छा गए, गोया अल्लाह ताला की नाराज़गी और अजाब की अमादगी जाहिर कर रहे हों। मर्द, औरतें और बच्चे पहाड़ों पर जमा हो गए और खौफ हरास के आलम में आसमान के बदलते हुए मनाजिर को देखने लगे। ये मंजर नबी की तरफ से दी गई तंबीहात की याद दहानी करा रहा था। लोगों ने अपने दिल में हज़रत यूनुस अलैहि सलाम

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107
1: यकीनन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब नबियों में से एक हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में उनका तस्करा मुख्तलिफ सूरतों में फरमाया है, जिनमें सूरह यूनुस, सूरह अलसफात, सूरह अलअंबिया और सूरह कलम शामिल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या कोई शहर ऐसा था जो ईमान लाया और उसके ईमान ने उसे अजाब से बचा लिया सिवाय यूनुस के लोगों के, जब वो ईमान लाए हमने उन पर दुनिया की रसवाई के अजाब को हटा दिया और उन्हें कुछ अरसा जिंदगी की खुशियों से नवाजा। ये आयत इस बात की दलील है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लोगों के सिवा दुनिया की तारीख में किसी शहर के तमाम लोग एक साथ अपने नबी की बात मानकर ईमान नहीं लाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में जाने का वाकया कुछ इस तरह से भी तहरीर हुआ है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने लोगों को छोड़ के निकले तो एक कश्ती में सवार हो गए। ताहम जैसे ही कश्ती रवाना हुई समंदर में बहुत शदीद तूफान आया और कश्ती डूबने के करीब पहुंच गई। इस मौके पर कश्ती में मौजूद लोगों ने मशवरा किया कि किसी का नाम निकाल के समंदर में फेंका जाए ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो और बाकी लोग महफूज रहें। कुछ मशहूर मुफस्सिरीन के मुताबिक उन्होंने 3 मरतबा कुरा डाला और हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को फेंकने की पेशकश की लेकिन लोग राजी ना हुए। आखिरकार अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ कि वो समंदर में फेंके जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यूनुस भी पैगंबरों में से था, जब वो भारी कश्ती की तरफ भागा

तो उसने कुरा निकाला और वो खो देने वालों में शामिल हुआ। फिर एक मछली ने उसे निकल लिया जिसमें वो अमल अंजाम दे चुका था जो काबिल मुजम्मत था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली के पेट में महफूज रखा। मुफसरीन के मुताबिक अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म को ना खाए। वो मछली के पेट में कई दिन तक जिंदा रहे। जहां अंधेरा था, अंधेरा मछली के अंदर, अंधेरा समंदरों की गहराई में, अंधेरा और रात के सन्नाटे में अंधेरा, यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत और तौबा जारी रखी। उन्होंने दिल से कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, पाक हैं आप, बेशक मैं खुद जुल्म करने वालों में से हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें मछली के पेट से बाहर निकाला। मुफसरीन के मुताबिक अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इस तरह तस्बीह ना करते और उनकी तौबा कबूल ना होती तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक वीरान साहिल पर छोड़ दिया। वो जिस्मानी तौर पे बहुत कमज़ोर थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक पौधा उगाया जिसकी छाँव नर्म और वसी थी और जिसके फल खाए जा सकते थे। ये पौधा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए साया और ग़िज़ा का सबब बन गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ ना सिर्फ उनके लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए बाइस मग़फ़रत और मदद है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेंगे। ये दुआ हर मुश्किल वक्त में अल्लाह से मदद तलब करने का बेहतरीन जरिया है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली, वो दोबारा अपनी कौम की तरफ गए। अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए 100,000 से ज़्यादा लोगों को ईमान की तरफ हिदायत दी। ये कौम मुकम्मल तौर पे ईमान ले आई और दुनियावी खुशियों से नवाजी गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में मुतअद्दिद जगहों पर आया है ताकि नबियों के अजीम किरदार को याद रखा जा सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि वह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल है, जो उनकी अजमत और अल्लाह के बंदों के एहतराम की दलील है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सब्र, तौबा और अल्लाह पे भरोसा आजमाइश में कामयाबी और निजात का जरिया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट से निजात पाने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा ताकि वो उनके दिलों को ईमान की तरफ रागिब करें। ये नबी की अजीम हिकमत का हिस्सा था कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उन्हें निजात दी बल्कि उनके लोगों को भी हिदायत का मौका अता फरमाया। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया तो सब आजजी और खुशू के साथ आए। मर्द खवातीन, बुजुर्ग को जवान, सब ने अपने गुनाहों पे नादम होकर दुआ की। वो अल्लाह के हुजूर झुक गए और अपनी इस्लाह का अहद किया। अल्लाह ताला ने उन सब की दुआओं को कबूल किया और दुनियावी जिंदगी में उन पर से अजाब हटा दिया। ये वाकई इस बात की दलील है कि अल्लाह की रहमत हर सूरत में वसी और बेहद है और तौबा करने वाले को कभी भी मुस्तरद नहीं किया जाता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कश्ती पर सवार हुए तो तूफान की शिद्दत के सबब कश्ती में मौजूद लोग कुरा करने पर मजबूर हुए कि किसी को समंदर में फेंक दिया जाए ताकि कश्ती महफूज रह सके। 3 बार कुरा फेंका गया और हर बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को रज़ाकाराना तौर पर फेंकने की पेशकश की क्योंकि वह समझ गए थे कि यह अल्लाह की तकदीर है। ये वाकया हमें सबक देता है कि मुश्किलात में सब्र और अल्लाह की मर्जी को तस्लीम करना ईमान की निशानी है। मछली के पेट में कयाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक रूहानी और जिस्मानी इम्तिहान था। यहाँ उन्होंने अल्लाह की तस्बीह और दुआ के जरिए अपनी रूहानी ताकत को मजबूत किया। उन्होंने कहा,
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہیں آپ، بے شک میں خود ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. یہ دعا نہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی نجات کا سبب بنی، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم وسیلہ ہے کہ وہ اللہ کی مدد طلب کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص یہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور ایک ویران ساحل پہ چھوڑ دیا. جسمانی طور پہ کمزور تھے لیکن روحانی طور پہ مضبوط تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی تسبیح اور دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ گاجر کے پودے کا انتظام فرمایا، جس کی چھاؤں نرم اور وسیع تھی اور جس کے پھل کھائے جا سکتے تھے. اس سے حضرت یونس علیہ السلام کو جسمانی طاقت اور راحت نصیب ہوئی. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے لیے وسائل پیدا فرماتا ہے تاکہ وہ مشکلات میں استقامت اختیار کر سکے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا نہ صرف ان کی نجات کا سبب بنی، بلکہ ہر مسلمان کے لیے باعث ہدایت اور نجات ہے. یہ دعا ہر مشکل وقت میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے ذریعے اپنی قوم کو ایمان کی طرف راغب کیا. ان کی قوم میں 1,000 سے زائد افراد ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی خوشیوں سے نوازا اور انہیں یہ سبق دیا کہ توبہ اور ایمان کے ذریعے ہر برائی کا خاتمہ ممکن ہے. یہ واقعہ قرآن کی سائد کی تصدیق کرتا ہے، اور ہم نے یونس کے لوگوں کو دنیا کی رسوائی کے عذاب سے بچا دیا اور انہیں کچھ عرصہ زندگی کی خوشیوں سے نوازا. حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن میں متعدد جگہوں پر دیگر نبیوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی عظمت اور اللہ کے بندوں کی محبت کو یاد دلایا جا سکے. لسنرز، یہاں ہم لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें मुख्तलिफ तालीमात मिलती हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ज़िद और नाफरमानी के बावजूद सब्र किया। मछली के पेट में दुआ और अल्लाह की इबादत ने उन्हें निजात दिलाई। अल्लाह की रहमत हर सूरत में वसी है और तौबा करने वालों को कभी मुस्तरद नहीं ठहराता। कश्ती में कुरान दाजी के ज़रिए अल्लाह की मर्ज़ी को तस्लीम करना ईमान की अलामत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि किसी को दूसरे पैगंबरों से अफजल ना समझा जाए। हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानी या मुसीबत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कर सकता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ये दुआ ईमान, आजजी और अल्लाह की मदद तलब करने की अलामत है। ये दुआ ना सिर्फ रूहानी सुकून फरहाम करती है बल्कि अल्लाह की इनायत और मदद की जमानत भी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है, मुश्किलात में अल्लाह की तरफ रुजू करना ईमान को मजबूत करता है। नाफरमानी और इनाद के बाद तौबा और आजजी के ज़रिए हर मुश्किल का हल मुमकिन है। अल्लाह की रहमत हर इंसान तक पहुँच सकती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी ख़ता क्यों ना कर चुका हो। दुआ और अल्लाह की इबादत हर आजमाइश में निजात का जरिया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी सब्र, हिदायत, तौबा और अल्लाह की रहमत की बेहतरीन मिसाल है। उनके वाकयात से हमें यह सबक मिलता है कि ईमान, दुआ और अल्लाह की मर्जी के सामने आजी इख्तियार करना इंसान को हर आजमाइश में कामयाबी और निजात दिला सकता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ना सिर्फ माजी के इबरत आमोज वाकयात याद दिलाती है बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अमली रहनुमाई फरहम करती है। ये कहानी बेपनाह रहमत, तौबा की कबूलियत और नबियों की अजमत और दुआ की ताकत को वाज़े करती है। चलिस्टर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में हमने आज जिक्र किया, उनके वाकयात आपको सुनाए कि कुरान में किस तरह से उनका तस्करा है और यकीनन हम उनके वाकयात से वाकिफ हैं। हमने बचपन से ये कहानी पढ़ी है और यकीनन इसमें बहुत से सबक हैं हमारे सीखने के लिए। ख़ास तौर पे ये दुआ जिसको हम आयत करीमा भी कहते हैं, हमारे लिए यकीनन हर मुश्किल, हर परेशानी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही मौसर है, बहुत ही कारामत है और आजमूदा है। तो जब भी कभी आपके ऊपर कोई परेशानी आया करे, कोई मुश्किल फील करें, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, इस दुआ का वर्द करना शुरू कर दें। कुरान की जो मुख्तलिफ दुआएं हैं अम्बिया कराम की, उसमें से ये दुआ मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट भी है और मैंने देखा है कि जब भी किसी मसले के लिए इस दुआ को पढ़ा जाए तो यकीनन ये बहुत ही कारामत साबित होती है। आप जो मांगते हैं अल्लाह ताला से वो आपको अता करता है। तो जितनी भी दुआएं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताई हैं हमें, उनका मकसद यही है कि उन दुआओं का वर्द किया जाए, उन दुआओं को याद किया जाए और मुख्तलिफ जगहों पे जैसी जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक उन दुआओं को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार किया जाए। और यकीनन मैं और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, हम इस बात से वाकिफ हैं कि अल्लाह ताला को सबसे महबूब चीज़ दुआ है। और कहते हैं कि दुआ ही नमाज का भी एक तरह से जो एक उसका जो सेंटर पॉइंट है, या आप कह सकते हैं कि जो असल जो नमाज की ताकत है या जो नमाज को मुकम्मल करती है चीज़, वो दुआ है। अगर आप नमाज के बाद दुआ नहीं करते तो अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते और कहते हैं कि नमाज आपकी मुकम्मल नहीं समझी जाती। तो इसलिए दुआओं का जो भी तरीक़ाकार है आप उसको जारी रखें, मुख्तलिफ दुआएँ अम्बिया कराम की याद करें। और ये तो बहुत ही आसान दुआ है, तो इसको चलते फिरते जब भी आपको, जैसे मैंने पहले कहा, छोटी मुश्किल हो बड़ी मुश्किल हो, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल रखिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको हर तरह की मुश्किल, परेशानी से, नागानी, आफत से, محفوظ رکھے. یہ میری دعا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی ایک ایسی کہانی جو صبر, ایمان اور اللہ کی رحمت کی عظمت کو بے مثال انداز میں انشاءاللہ پیش کرے گی. جانیں گے ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشوں کو, ان کے صبر کے سفر کے بارے میں جنہوں نے ہر دکھ اور تکلیف کے باوجود اللہ پر یقین رکھا, اور آخر کار اپنی دعا اور صبر کے سلے میں اللہ کی بے پناہ رحمت پائی. تو بالکل انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, हम सबको अपने घर फ्रेश और खुशगवार महकते हुए पसंद है कि नहीं? मुझे तो है भाई। जब हम घर में एंटर करते हैं ना, तो अच्छी सी फ्रेग्रेंस महसूस होती है, तो कितना अच्छा सा अलग सा सुकून लगता है। हाय हाय हाय। इसीलिए बहुत से लोग मार्केट में मिलने वाले एयर फ्रेशनर्स, स्प्रेज और सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ताकि घर की स्मेल फ्रेश रहे। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस का एनवायरमेंट और हमारी हेल्थ पर क्या असर होता है? क्या घर को फ्रेश रखने के लिए हमेशा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं मानती भाई। तो भाई, मैंने सोचा क्यों ना आज का इको स्विच इसी बारे में बात करे, नेचुरल एयर फ्रेशनर्स।

0: घर की हवा को फ्रेश रखने के लिए कुदरती और बेहतरीन तरीके। देखिए प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं साथियों। मार्केट में अवेलेबल बहुत से एयर फ्रेशनर्स, स्प्रेज और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इन स्प्रेज को यूज करते हैं तो उनकी खुशबू हवा में फैल जाती है। कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से डिस्कम्फर्ट भी महसूस होता है, मेरी तरह, जैसे स्मेल से इरिटेशन या एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, खास तौर पर प्लास्टिक बॉटल्स और एरोसोल कैंस, वेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। एक और बात ये भी है कि हम अक्सर बुरी स्मेल को सिर्फ फ्रेग्रेंस से कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि असल सॉल्यूशन सफाई होता है, वेंटिलेशन होता है और फ्रेश हवा होती है। तो क्यों ना हम ऐसे तरीके अपनाएं जो घर को फ्रेश भी रखें और एनवायरमेंट का भी ख्याल रखा जाए। तो भाई आज का सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, यानी कि नेचुरल एयर फ्रेशनर्स के लिए कुछ सिंपल आइडियाज। साथियों पहली चीज तो ये, इंडोर प्लांट्स लगाएं। प्लांट्स सिर्फ घर की ब्यूटी नहीं बढ़ाते बल्कि घर में नेचुरल फ्रेशनेस भी क्रिएट करते हैं। ग्रीन प्लांट्स घर के एटमॉस्फेयर को ज्यादा प्लेजेंट बना सकते हैं। दूसरी चीज ये कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करें। कुछ नेचुरल चीजें घर में अच्छी फ्रेग्रेंस ला सकती हैं, जैसे कि लेमन के छिलके, सिनेमन स्टिक्स, फ्रेश फ्लावर्स, कॉफी बीन्स, ड्राइड हर्ब्स। इन्हें बोल या डेकोरेटिव जार्स में रखें और नेचुरल फ्रेग्रेंस का मजा लें। ये नेचुरल फ्रेग्रेंस क्रिएट करती हैं। फ्रेश एयर को अंदर आने दें, यानी कि कभी कभी घर की स्मेल को फ्रेश करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि विंडोज खोलें ना भाई। जो आपके घर में हवा बंद है उसको बाहर निकलने का रास्ता दें। अच्छी वेंटिलेशन घर को नेचुरली फ्रेश रखने में मदद करती है। अच्छा चौथी चीज ये कि बेकिंग सोडा का स्मार्ट यूज करें। बेकिंग सोडा कुछ जगहों पर अनवांटेड स्मेल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकता है। इसे फ्रिज या किचन के कुछ एरियाज में यूज किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम रेमेडीज नेचुरल स्प्रे में अप्लाई करें, यानी कि आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने घर या आप कह लें कि होममेड रूम स्प्रे बना सकते हैं। जैसे पानी के साथ लेमन या नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करें, एक लाइट फ्रेग्रेंस क्रिएट कर सकती है भाई ये चीज। अच्छा अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए तो भाई बहुत से लोग अपने घरों में नेचुरल फ्रेग्रेंस सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी कुछ फैमिलीज किचन में लेमन के छिलके वेस्ट करने के बजाय उन्हें नेचुरल फ्रेशनेस के लिए यूज करती हैं। मैं भी यही काम करती हूँ। कुछ लोग लिविंग रूम में फ्रेश फ्लावर्स या इंडोर प्लांट्स रखते हैं। कुछ लोग मार्केट के स्ट्रॉन्ग स्प्रेस की जगह होममेड सॉल्यूशंस प्रेफर करते हैं। ये छोटी छोटी चेंजेस जो होती है ना, वो घर को कभी कभी खूबसूरत भी बनाती है और अननेसेसरी केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कम किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि नेचुरल फ्रेग्रेंस अक्सर ज्यादा सिंपल और सूदिंग फील कराती है, स्पेशली माई फेवरेट, ओ माई गॉड, लेमन का छिलका। तो साथियों आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि आज आप अपने घर में एक नेचुरल फ्रेग्रेंस आइडिया ट्राई करें, चाहे वो एक प्लांट लगाना हो, चाहे वो एक फ्रेश फ्लावर रखना हो या कोई होममेड नेचुरल सॉल्यूशन बनाना हो। और हमें जरूर बताएं आपके घर में कौन सी खुशबू आपको सबसे ज्यादा पसंद है, फ्लावर्स, स्पाइसेस या फ्रेश एयर की नेचुरल स्मेल। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए फ्रेश घर के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स की जरूरत नहीं होती, कभी कभी नेचर का सिंपल टच ही काफी होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए बड़ा फर्क पैदा करें और सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107।

0: दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव सोच के बारे में। पॉजिटिव सोच जिंदगी को आसान और खूबसूरत बनाती है। जब इंसान हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। अक्सर हम नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं जो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का सबब बनता है, लेकिन अगर हम अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर लें तो हम ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रह सकते हैं। इस्लाम हमें उम्मीद और तवक्कुल का दर्ज देता है, यानी हर हाल में अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखना। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम को इग्नोर करें, बल्कि ये है कि प्रॉब्लम के हल पर फोकस करें। आज का मल ये है कि किसी भी हालात पे एक पॉजिटिव पहलू जरूर ढूंढें और अपनी थिंकिंग को बेहतर बनाएं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका एफएम 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट.
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One step to 2030.
3: आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की. क्लाउड टेक्नोलॉजी किस तरह कंपनीज को फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बना रही है. देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग ने बिजनेस ऑपरेशंस का तरीका ही बदल दिया है. पहले कंपनीज को अपने ऑफिसेज में एक्सपेंसिव सर्वर्स और हार्डवेयर मेंटेन करने पड़ते थे. आज क्लाउड की वजह से डेटा और एप्लीकेशंस इंटरनेट के जरिए कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है. अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी एक ऑनलाइन स्टोरेज है और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज अपना डेटा सिक्योर रख सकती हैं और जरूरत के मुताबिक रिसोर्सेज यूज कर सकती हैं. देखिए, कोविड के दौरान इसका सबसे बड़ा फायदा देखने को मिला. जब इम्प्लॉयज घर से काम कर रहे थे, क्लाउड टेक्नोलॉजी ने उन्हें ऑफिस सिस्टम्स तक रिमोट एक्सेस दिया. मिसाल के तौर पे, अगर एक रिटेल कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हो, तो क्लाउड सिस्टम हर ब्रांच का सेल्स डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम

इससे मैनेजमेंट को फास्टर और बेटर डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। क्लाउड का एक और बड़ा फायदा है, अगर बिजनेस ग्रो करे तो कंपनी एडिशनल रिसोर्सेज फॉरन ऐड कर देती है, वो भी बिना नए हार्डवेयर खरीदे। क्लाउड कॉस्ट को भी कम करता है और बिजनेस कंटिन्यूटी को भी इम्प्रूव करता है। क्लाउड टेक्नोलॉजी बिजनेस को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है, इसीलिए फ्यूचर की सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड फर्स्ट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रही हैं। आज के इस फास्ट मूविंग बिजनेस दुनिया में कंपनीज को स्पीड चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और क्लाउड इन तमाम चीजों को पॉसिबल बनाता है। पहले अगर किसी कंपनी को नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था या स्टोरेज बढ़ानी होती थी तो उसे नए सर्वर्स और हार्डवेयर्स पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन आज क्लाउड की वजह से कंपनीज अब सिर्फ उतने रिसोर्सेस के पैसे देती हैं जितनी उनकी जरूरत होती है और इस मॉडल को पे एज यू यूज कहा जाता है और ये मॉडल बहुत सारी कंपनीज अडॉप्ट कर चुकी हैं जो बिजनेसेस के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। वहीं क्लाउड का एक सबसे बड़ा फायदा है कोलैबोरेशन। आज एम्प्लॉइज दुनिया की किसी भी हिस्से से काम कर सकता है और रियल टाइम में एक ही डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट या सिस्टम पर मिलकर काम किया जा सकता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिसीशन मेकिंग फास्टर हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कतर में किसी रिटेल कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो मैनेजमेंट क्लाउड डैशबोर्ड के जरिए हर ब्रांच की सेल, हर ब्रांच की इन्वेंट्री और कस्टमर ट्रेंड्स को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। इससे बिजनेस को मार्केट चेंजेस का फौरन पता चल जाता है और टाइमली डिसीजंस लिए जा सकते हैं। क्लाउड इनोवेशन को भी सपोर्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आसानी से इंटीग्रेट की जा सकती हैं और इस वजह से छोटी और मीडियम साइज कंपनीज भी वही एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर सकती हैं जो पहले सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशंस अफोर्ड कर पाते थे। आने वाले सालों में क्लाउड फर्स्ट स्ट्रेटजी, जी हाँ, क्लाउड फर्स्ट, पहले हम कहते थे लेडीज फर्स्ट, अब कहेंगे क्लाउड फर्स्ट, ये स्ट्रेटजी हर सक्सेसफुल बिजनेस की प्रायोरिटी होगी। जो ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड को अडॉप्ट करेंगी वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव और कस्टमर फोकस्ड होंगी। अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो मैं यही कह सकती हूं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी सिर्फ आईटी सॉल्यूशन नहीं है बल्कि ये बिजनेस ग्रोथ, इनोवेशन और फ्यूचर सक्सेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी है। वेल, आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2020.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर।

0: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। भाई आज का जो टॉपिक है हमारे प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस में, वो हर एक शख्स या हर एक घराने को टच करता है और वो है डेट मैनेजमेंट। भाई चाहे वो स्टूडेंट लोन हो, कार पेमेंट्स हो, या वो छोटी सी क्रेडिट कार्ड बिल जो सोचने से ज्यादा बढ़ जाती है, डेट एक बोझ बन सकता है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ ये मैनेजेबल है। डेट मैनेज करने से पहले चलिए समझते हैं कि डेट असल में है क्या। सीधी बात यह है कि डेट वो पैसा है जो उधार लिया जाता है और बाद में वापस करना होता है, अक्सर इंटरेस्ट के साथ। भाई ये कोई विलन नहीं है, असल में हम में से बहुत से लोगों को अपने बड़े गोल्स अचीव करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में डेट की जरूरत होती है। एजुकेशन है, घर वगैरह है, या कोई बिजनेस वगैरह। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब बोरोइंग ओवर बोरोइंग में तब्दील हो जाए। तो हम लाइन कहाँ ड्रॉ करें, ये हमें समझने में मुश्किल होती है।
1: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे, बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर विच इज 666-22107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो दोस्तों कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहले जानिए सिक्योर्ड डेट क्या है। ऐसा कर्जा जो किसी कोलेटरल जैसे कि घर या गाड़ी से बैक्ड होता है, अगर आप अदायगी ना करें तो लेंडर वो एसेट ले सकता है। अनसिक्योर्ड डेट ऐसे कर्जे जो किसी कोलेटरल से बैक्ड नहीं होते, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या कर्ज या पर्सनल लोन्स। रिवॉल्विंग डेट ऐसे कर्जे जिसमें आप बार बार एक लिमिट तक पैसा उधार ले सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह। और आखिर में इंस्टॉलमेंट डेट ऐसे कर्जे जो फिक्स्ड मंथली पेमेंट में एक मुकर्रर ड्यूरेशन के लिए चुकाए जाते हैं, जैसे कि कार लोन, स्टूडेंट लोन वगैरह वगैरह। भाई ये एक्सेस अमाउंट जिसे शेयर प्रीमियम या एडिशनल पेड इन कैपिटल भी कहते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर प्रीमियम अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ये रिप्रेजेंट करता है वो कैपिटल जो इन्वेस्टर्स ने बेसिक शेयर वैल्यू से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद थोड़ी शॉकिंग लगे। अगर आप इस वक्त कर्ज में हैं तो मुमकिन है कि आप जिंदगी भर कर्ज में रहें। भाई ना तो इसलिए कि आपको आप इसके अंदर रहना चाहते हैं, ना इसलिए कि आप वाकई ही चाहते हैं कि मैं इसमें रहूं, बल्कि इसके लिए कि आपको ये नहीं पता कि इस चक्कर से निकलना कैसे है। इसका मतलब है लगातार डेट कलेक्टर्स के कॉल्स, लेट फीस का जमा होना और वो कांस्टेंट स्ट्रेस के आप पीछे हैं। लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं कि ये सब कुछ हमेशा चलता रहे। तो भाई इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक 8-step डेट पे ऑफ सिस्टम के जरिए गाइड कर रहा हूं जो वाकई काम करता है, ताकि आप जल्दी कर्ज से निकल सकें और दोबारा उसमें ना फंसें। ये सिस्टम सब कुछ बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रोग्राम के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएं। सबसे पहले बात करेंगे दैट वी हैव टू फेस द ब्रूटल ट्रुथ। भाई अपने कर्ज के बारे में ब्रूटल ट्रुथ का सामना करें। बहुत से लोग कहते हैं हाँ कुछ कर्जा है लेकिन सब ठीक है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। हर एक कर्ज के का रिकॉर्ड निकालने, क्रेडिट कार्ड्स, स्टूडेंट लोन्स, मेडिकल बिल्स, सब कुछ, चाहे वो एक रेंडम 500 रियाल का बिल हो जो आपने अपने दोस्त से 3 साल पहले उधार लिया हो, लिख लें। आपको क्या चाहिए? टोटल डेट अमाउंट इंटरेस्ट रेट या ये साइलेंट किलर होता है और मिनिमम पेमेंट्स। भाई मिसाल के तौर पर शकीब ने सब कुछ इकट्ठा किया, उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, दूसरा क्रेडिट कार्ड और भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ, और एक कार लोन जिसका रेट 9% है। मिनिमम पेमेंट्स भी काफी कुछ बताती हैं। ज्यादातर लोग इस स्टेप से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये पेनफुल होता है। कौन चाहता है कि अपने कर्ज का हिसाब निकाले, लेकिन कर्ज को इग्नोर करने से वो खत्म नहीं होता। भाई ये ऐसा है जैसे घर में गैस लीक हो और आप कहें मुझे हर वक्त स्मेल नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फटेगा नहीं, खुदा ना खास्ता। और एक बात, अपना क्रेडिट रिपोर्ट भी चेक करें, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक पुराना कर्ज भूल गए हो या कोई गलती हो, शायद आपको कोई ऐसा कर्ज मिल जाए जो याद भी ना हो। अगर आपने कभी अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखा और सोचा ये इतना ज्यादा कैसे हो गया, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी मदद करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप अपना कर्ज तेज स्मार्ट तरीके से और बिना अपनी पसंद की चीजें छोड़े चुका सकें। चलिए इंश्योर करते हैं कि आप सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, कर्ज के साथ नहीं। अब जब आपके पास अपने तमाम कर्ज, इंटरेस्ट रेट्स और मिनिमम बैलेंस की लिस्ट है, तो चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।

0: अगला स्टेप होता है खर्च करना, पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: सच बात ये है दोस्तों, अगर आप नंबर्स ओरिएंटेड हैं तो एवलेंच मेथड मैथमेटिकली बेस्ट चॉइस है। आप कम इंटरेस्ट पे करते हैं और ये एक बड़ी जीत है। लेकिन अगर आपको छोटी जीत चाहिए होती है ताकि आप मोटिवेटेड रहें, तो स्नोबॉल मेथड बेहतर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं, सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक मेथड चूज करें और उस पर कमिटेड रहें। एग्जाम्पल, शकीब भाई ने स्नोबॉल मेथड चूज किया ताकि वो मोटिवेटेड रहें। उन्होंने अपना सबसे छोटा कर्ज, अपना चेस क्रेडिट कार्ड पहले चुकाना शुरू किया। शकीब भाई हमारे प्रोग्राम साउंड डिजाइनर है, तो मैंने कहा उनका ही नाम ले लूं, उम्मीद है कि वो भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। बोनस स्ट्रेटेजी, 5 मिनट कॉल

चीज छोड़नी पड़ेगी। लोग समझते हैं कि इसका मतलब है ना डिनर बाहर, ना वेकेशन वगैरह वगैरह, लेकिन सच ये है अगर आपके पास 60,000 रियाल का क्रेडिट कार्ड डेट है तो आपको 15,000 रियाल की वेकेशन नहीं लेनी चाहिए भाई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप घर के अंधेरे

तो बहरहाल जरूर करें। हर महीने अगर आप 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लें तो आप अपना डेट सालों में नहीं महीनों में खत्म कर सकते। तो दोस्तों यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: हर महीने अगर आप 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लें तो आप अपना डेट सालों में नहीं महीनों में खत्म कर सकते हैं। आइडल फॉर एक्स्ट्रा कैश, फ्रीलांसिंग, अपनी स्किल्स जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, ट्यूशन वगैरह या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।

साइड गिग्स, राइड शेयर ड्राइविंग, फूड डिलीवरी, पेट सिटिंग, ऑप्शंस बहुत हैं भाई। सेल अनयूज्ड आइटम्स, क्लोजेट और स्टोरेज में जो चीजें पड़ी हैं बेचने, स्टोरेज का मंथली फी भी बच सकता है। टर्न हॉबीज इनटू कैश, कुकिंग, फोटोग्राफी, फिटनेस कोचिंग, सब पैसा कमा सकती है। नेगोशिएट सैलरी, अगर आप काम में वैल्यू दे रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप सैलरी बढ़ाने की स्किल्स भी सीखें। इम्पोर्टेंट क्या है, जो एक्स्ट्रा पैसा आए उसका ज्यादा हिस्सा डेट पे ऑफ में लगाएं। यही तरीका है डेट फ्री और बेहतर जिंदगी की तरफ जाने का। नंबर दो पे बात करते हैं, टर्न योर डेट पे ऑफ इनटू अ गेम, कर्ज चुकाने को गेम बनाएं। डेट चुकाना बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें तो ये एक्साइटिंग बन सकता है। भाई वीकली चेक इन रूटीन बनाएं। पहला, अपना डेट ट्रैकर स्प्रेडशीट खोलें, देखें कितना डेट कम हुआ, छोटी प्रोग्रेस भी सेलिब्रेट करें। तीसरा, स्नीकी चार्जेस ढूंढें, सब्सक्रिप्शंस, फीस, इंपल्स बाइज जो साइलेंटली पैसा ले रहे हैं। और चौथा, हर वीक अपनी प्रोग्रेस को गेम की तरह देखें, सेलिब्रेट करें भाई। मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है, हर संडे 5 मिनट का रिमाइंडर सेट करें, नो एक्सक्यूजेस। ये रूटीन आपको डेट

रखते हैं। पहला क्या है, क्विक फिक्सेस जैसे बैलेंस ट्रांसफर। भाई 0% APR ऑफर टेम्पटिंग लगती है, लेकिन अगर एक पेमेंट मिस हो गई तो रेट्रोएक्टिव इंटरेस्ट लगता है और आप वापस साइकिल में आ जाते हैं। दूसरा, ये मोस्टली गिमिक होती हैं, केयरफुली यूज करें वरना अवॉइड करें। वहीं अगर ओल्ड स्पेंडिंग हैबिट्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप क्रेडिट कार्ड से इंपल्स बाइज कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस खुद खत्म कर रहे हैं। डेब्ट पे ऑफ का मतलब है अपने मनी हैबिट्स को चेंज करना, भाई क्रेडिट कार्ड को फॉर अ टाइम बीइंग साइड पर रख दें। वहीं बात करें अगर डेट कंसोलिडेशन स्कैम्स की, तो कुछ कंपनीज प्रॉमिस करती हैं कि आपको डेट सेटल हो जाएगा।

पेमेंट्स स्टॉप कर दें। सॉल्यूशन, नॉन प्रॉफिट क्रेडिट काउंसलिंग एजेंसीज से कॉन्टेक्ट करें, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। वहीं अगर बात करें सिर्फ मिनिमम पेमेंट्स देने की, तो बैंक्स को ये

परसेंट है, तो आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट से 25 साल तक पे करते रहेंगे और ट्रिपल अमाउंट दे देंगे। हर महीने मिनिमम से ज्यादा पे कर दीजिए। कंक्लूजन, अगर आप इन ट्रैप से बच गए तो सिर्फ डेट से निकलना नहीं, परमानेंटली डेट फ्री रहना मुमकिन होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं नेवर गो बैक, हमेशा के लिए डेट फ्री रहना। मुबारक हो, आपने अपना डेट चुका दिया, लेकिन असली सक्सेस तब होती है जब आप दोबारा डेट में ना फंसे। बहुत लोग फाइनल पेमेंट के बाद पुरानी हैबिट्स में वापस आ जाते हैं। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स जरूरी हैं। ये तीन स्ट्रेटेजीज आपको हमेशा डेट फ्री रखेंगी। गौर से सुनिएगा। सबसे पहला, एनवेलप सिस्टम यूज करें। अगर क्रेडिट कार्ड्स आपकी वीकनेस हैं, तो कुछ टाइम के लिए कैश यूज करें। हर कैटेगरी, ग्रोसरीज,

लेकिन अगर आप बैलेंस कैरी कर रहे हैं तो यूज बंद करें। दूसरा, पॉइंट्स के चक्कर में ना पड़े। अगर आप 27% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो पॉइंट्स किस काम के हैं? हर महीने फुल पेमेंट करें, वरना क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। और आखिर में इमरजेंसी फंड बनाएं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, टायर बर्स्ट, मेडिकल बिल्स, एसी ब्रेकडाउन वगैरह वगैरह के लिए क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। हर महीने 500 या 1000 रुपए सेव करें। गोल हो 3 से 6 महीने के फिक्स्ड कॉस्ट का फंड, और इस फंड को हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में रखें।

उसका रवैया है जो सब कुछ बताता है। आज से शुरू करें, लिस्ट बनाएं, प्लान तैयार करें और अपने फाइनेंसेस के साथ सुलह करें। आज की अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स कल की फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बनती हैं। तो मैं इसी के साथ दोस्तों सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।

0: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। So, no FOMO ever again. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: एब्सोल्यूट सिनेमा,
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: फिगर रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा यू नो चर्चित है, उसका नाम बहुत ज्यादा है, बहुत जबरदस्त हाइप तो नहीं थी लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद हाइप बन गई है क्योंकि उसके डायरेक्टर का पता लोगों को धीरे धीरे अब लग रहा है। ओ जब लोग बात करते हैं ना मूवी के बारे में तो उस मूवी को और भी ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, और फिर एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में बात हो जो बहुत ज्यादा चर्चित हो, बहुत पुराने वक्त से बेहतरीन मूवी उन्होंने की हो, एकदम यूनिक मूवी को वो डायरेक्ट करते हो, तो ऐसे में इस तरह की मूवी देखना तो लाजमी बन जाता है। जी हाँ, इस हफ्ते जिस मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है द ओडिसी। वेल ये मूवी तो लाजवाब है, इसकी हाइप बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन हाइप भयंकर बनी मूवी देखने के बाद, लोगों ने फिर रेटिंग जब दी तो उसके बाद मूवी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है इवन इन हिंदी सेक्टर, यानी कि आमतौर पे उर्दू सुनने वाले बात करने वाले बहुत ज्यादा इंग्लिश मूवी देखते नहीं है लेकिन जब उनको थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है ना, जैसे मार्वल की एमसीयू की लोग देखने लग जाते हैं, तो अब ऐसा हो गया है कि बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग बन गए हैं धीरे धीरे जो इन मूवीज को यानी कि अंग्रेजी मूवीज को बहुत ज्यादा शौक से देख रहे हैं, और खास तौर पे क्रिस्टोफर नोलन जहां पर हूं। वेल इस मूवी के मूड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं द ओडिसी के मूवी के बारे में बात करना। Tell me what you remember.
1: A wife? A son.
2: And then what?
1: We won the war.
0: इस फिल्म का मूड और एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। डायरेक्टर ने इसे आम बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज की तरह बिल्कुल भी लाइट हार्टेड या सिर्फ मजे के लिए नहीं बनाया। फिल्म का मूड शुरू से ही बहुत ही भारी भरकम, हैवी, रॉ और इंटेंस कह सकते हैं, परफेक्ट वर्ड है, रॉ और इंटेंस बनाया गया है। जब आप मूवी देखना शुरू करते हैं तो आपको एक अजीब सा अकेलापन का एहसास होता है, और ये ही तो है डायरेक्टर का काम। विजुअल्स में इतना बड़ा और अनंत समंदर दिखाया जाता है कि मतलब खत्म ही नहीं हो रहा वो समंदर, जिसे देखकर ही मतलब दिल में ऐसा खौफ सा लगने लगता है, डर लगने लगता है कि इस पानी के नीचे और आगे क्या छुपा है।

0: need everyone at this party dead.
1: फिल्म में क्लॉस्ट्रोफोबिक ड्रेड, एक ऐसी घुटन जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, उसको भी बहुत ही लाजवाब तरह से ब्लेंड किया गया है। जब ऑडिसीज किसी अनजान आइलैंड पर फंसता है तो ऑडियंस को भी लगता है कि वो उस आइलैंड पर उसके साथ कैद हो चुकी है। इसमें जो दुख और तकलीफ मूवी में दिखाई गई है वो कोई दिमाग की उपज या फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि बहुत ही दर्दनाक सीन है। एक राजा जो कभी हजारों की सेना का कमांडर था, वो जब भूखा प्यासा एक पत्थर पर बैठकर अपने घर के लिए रोता है तो सीन पूरी तरह से डिप्रेसिंग और इमोशनल हो जाता है।
2: After years of war, no one could stand between my men. Not even me.
1: इसके साथ ही फिल्म में माइथोलॉजी का एक डार्क और कॉस्मिक एस्पेक्ट भी है। गॉड्स को यहां कोई मददगार नहीं दिखाया गया है और हर सीन में एक टेंशन जो है वो बनी रहती है। इस मूवी को जब आप देखना शुरू करेंगे, शुरुआत से ही पता नहीं चलता कि कब कौन से शख्स जो है वो गुस्से में आ जाएंगे, सब कुछ तबाह कर देगा। ये टेंशन, जो दुख है और सर्वाइवल की जो जिद है, वो मिलकर फिल्म के मूड को एकदम अलग और यादगार बनाती है। इस मूवी के हाइप के बारे में भी उतनी ही बात करनी चाहिए जितना हमने मूड के बारे में बात करा। जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तभी से सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक सा आ गया था। लेकिन आमतौर पे उन लोगों में जो असल में इंग्लिश मूवी फॉलो करते हैं, आमतौर पे जो उर्दू मूवीज या बॉलीवुड के शौकीन हैं, उनको इसके बारे में बहुत ज्यादा शौक नहीं था। लेकिन होता है ना, जैसे जैसे हाइप बढ़ती है तो फिर ये उर्दू वाले भी उधर रुख करने लगते हैं, और यही वजह है कि आज हम इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, हाइप का सबसे बड़ा रीजन है कि ऐसी भयंकर लार्जर देन लाइफ को इतने बड़े बजट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस ऐसी मूवी को कभी सोचा नहीं गया था। इंटरनेट पर हर दिन इस फिल्म को लेकर नए नए ट्रेंड्स चल रहे काफी महीनों पहले से शुरू हो गए थे। जब फिल्म का पहला टीजर और ट्रेलर आया तो उनके सिनेमैटिक शॉट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ने लोगों के होश को उड़ा दिया। एक हफ्ते में ही ट्रेलर पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज आ गए। फिल्मों के जो दीवाने हैं और हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स के बीच रेडिट और अलग अलग सोशल मीडिया पर घंटों लंबी डिबेट्स होती थी कि क्या डायरेक्टर होमर की ओरिजिनल बुक के साथ जस्टिस कर पाएंगे या फिर इसे एक सस्ती एक्शन फिल्म बना देंगे। कास्ट में बड़े बड़े इंडस्ट्री के लेजेंड्स का शामिल होना इस हाइप में या कहें इस आग में घी का काम करता है। लोग एडवांस्ड में बुकिंग के लिए थिएटर्स के बाहर और ऑनलाइन वेबसाइट्स पर टूट पड़े, जिसकी वजह से कई टिकट बुकिंग सर्वर्स तक जो है वो क्रैश हो गए थे। पता है, ये भी एक हिस्ट्री है। रिलीज के पहले दिन ऐसा माहौल था जैसे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल हो, लोग सुबह के अर्ली शोज देखने के लिए लंबी लंबी लाइंस में खड़े थे। और तो ये ऑब्वियसली कतर में तो आपको देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन इंडिया में कई जगहों पे जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर ये देखने को मिला। उसके अलावा बाकी जगहों पे भी ये देखने को मिला कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जब मूवीज यहाँ पर लगती हैं तो लाइन लंबी लगती है, और खास तौर पे इस तरह की मूवीज जिसकी हाइप जो है लाजवाब थी। हर कोई देखना चाहता था कि कैसे मॉडर्न सिनेमा इस हजारों साल पुरानी एपिक को स्क्रीन पर जिंदा करता है। इस फिल्म का हाइप सिर्फ एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो बन चुकी थी जिसे देखना हर कोई अपना फर्ज समझ रहा था। बॉक्स ऑफिस पर इसने पहले ही दिन सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़कर एक नया इतिहास रख दिया था। तो जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो लाजमी है कि इस मूवी के स्टार रेटिंग के बारे में भी बात कर ली जाए। दोस्तों, इस मूवी को अलग अलग रेटिंग है तरह से, मैं लेकिन 5 में से 4.5 देना दिल से चाहता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तो फिल्म के डायरेक्टर बड़े ख़तरनाक हैं। जब आपको पता चलेगा कि ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, ओ तब तो फिर आपको देखो देना ही पड़ेगा यार। क्योंकि 5 में से 4.5 का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये लार्जर देन लाइफ, आप जब इस मूवी को देखेंगे, यार इतने बड़े लेवल पे कैसे उतार लिया पर्दे पे, तो ये डायरेक्टर का कमाल है। मैं इस फिल्म को पूरे दिल से 4.5 स्टार्स देता हूँ, और ये रेटिंग इस फिल्म ने बिल्कुल अपनी मेहनत से कमाई है। ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जो सिर्फ VFX के दम पर चलती हो, बल्कि इसका हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, एक्टिंग हो या फिर बैकग्राउंड प्रोडक्शन हो, सब में परफेक्शन झलकता है। 4.5 स्टार्स देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मूवी आपको सिर्फ स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई नहीं देती, बल्कि ये आपको अपने अंदर खींच लेती है। ये आपको ऐसी राइड पर ले जाती है जहां आप हंसते हैं, फिर एकदम से रोते हैं और डर के मारे अपनी सीट पकड़ लेते हैं कि अब क्या होगा। ये पूरे सिनेमा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक बड़े थिएटर स्क्रीन पर ही देखकर एंजॉय किया जा सकता है। अब बात करते हैं 0.5 स्टार की जो मैंने काट लिया है। फिल्म का रन टाइम लगभग 3 घंटे का है दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा लंबा है। सेकेंड हाफ में जब ऑडिसेस 2-3 अलग आइलैंड पर लगातार जाता है तो पेसिंग ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी स्लो हो जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। 3 घंटे मूवी बन रही है तो आप काट के थोड़ा छोटा कर लें, एडिट का कमाल ही यही है। एक दो जगह पर एडिटिंग थोड़ी सी धीमी लगती है जो फिल्म के आम दर्शकों को थोड़ा थका सकती है, लेकिन इस एक छोटी सी कमी को अगर छोड़ दिया जाए तो मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। ये फिल्म आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएगी और हिस्टोरिकल फैंटेसी जॉनर के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। अगर आपको एक जेन्युइन और दिल को छू लेने वाली सिनेमा को देखना है तो इसे बिल्कुल मत मिस करना। अगर आपने मिस किया तो बहुत बड़ा कुछ आपके जिंदगी में रह जाएगा ऐसा समझिए, क्योंकि कुछ मूवीज होती हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ उस वक्त तक नहीं, आपके आफ्टर लाइफ में भी होता है। लेट्स से लगान, लेट्स से तारे जमीन पर, कुछ ऐसी मूवीज हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत लाजवाब होता है। 3 इडियट है ना, तो ऐसी मूवीज जरूर देखनी चाहिए और ओडिसी तो इन सबसे बढ़कर भी है। तो दोस्तों ये तो कुछ हमने खास बातें कर ली, अब हम जरा बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि इस मूवी को बनाते हुए फन फैक्ट क्या रहा, प्रोडक्शन में डायरेक्टर का विजन असल में क्या था, उसके बाद एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन जो इस मूवी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जब हम बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट रह नहीं जाती, क्योंकि

0: भी बहुत बस एक्टिंग करनी होती है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन ऐसी मूवीज में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी और साउंड जो बहुत ही लाजमी होता है किसी भी मूवी के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन में क्या फन फैक्ट रहा, रियल फंक्शनल वॉरशिप इस फिल्म के प्रोडक्शन के पीछे की कहानियां भी किसी मूवी से कम नहीं है और इनके बारे में तो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डायरेक्टर ने फैसला किया कि वो शिप के सीन्स के लिए ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं करेंगे और हॉलीवुड के जो बड़े एक्टर हैं या कहें बड़े डायरेक्टर भी, वो इस बात पे बहुत ज्यादा कन्विंस्ड रहते हैं ऑलरेडी बहुत पहले से, मूवी बनाने से पहले, कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, रियलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। और डायरेक्टर ने यह फैसला बहुत पहले कर लिया था, इसलिए इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस ने मिलकर सच में 3,000 साल पुराने डिजाइन का एक पूरा और असली फंक्शनल ग्रीक वॉरशिप बनाया। आप सोच सकते हैं कि क्या ये बॉलीवुड में हो सकता है कि 3,000 साल पुराने का डिजाइन बनाए और असली फंक्शनल? उम्मीद ही नहीं कर सकते आप, लेकिन हॉलीवुड में ये हो सकता है। और जब डायरेक्टर अच्छे हो, जब डायरेक्टर का विजन उस तरह का हो और उसे सच में यानी कि मेडिटेरेनियन सी के खुले पानी में उतारा गया और एक्टर्स ने सच में उसे चप्पू चला के आगे करके चलाया है, तो ये एक सीन जो आप देखेंगे इस मूवी में सच्चा है। उसके अलावा CGI का इस्तेमाल कम किया गया, प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा रहा गया। आज के टाइम में जहां हर मॉन्स्टर जो है कंप्यूटर से बनाया जाता है, इस फिल्म में साइक्लोप्स और बाकी क्रिएचर्स के लिए बड़े बड़े एनिमेट्रॉनिक्स जो है, मैकेनिकल रोबोट जिसे कहते हैं, रियल स्केल के मॉडल्स बनाए गए। जब एक्टर मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे तो उनके सामने असली चीज खड़ी थी जिससे उनका डर और रिएक्शन 100% रियल लग रहा था, और फिर एक्टर की तो बात ही अलग है। उसके अलावा रियल सुनामी और स्टॉर्म की फुटेज जो है उस पर भी बात करेंगे। शूट के दौरान एक बार समंदर में अचानक बहुत भयानक असली स्टॉर्म तूफान आ गया है ना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला तो मतलब आप छोड़ भी नहीं सकते। ये बात शूट हो रहा था समंदर में और अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, मौसम बिगड़ने लगा, भयानक जो है स्टॉर्म आने लग गया और फिर तूफान इतना तेज हो गया पूरी टीम बहुत ज्यादा डर गई थी और शूटिंग रोकनी पड़ी। पर डायरेक्टर ने अपने कैमरामैन को बोलकर उस असली डेंजरस तूफान के कुछ शॉट्स रिकॉर्ड किए और उन्हें बाद में मूवी के मेन सीन में यूज भी किया है, जो स्क्रीन पर सबसे रियल लगता है। तो कुछ ऐसे सीन हैं जो रियल हैं। अब क्योंकि मिक्स हैं तो हो सकता है आपको क्लियर ना समझ में आए, लेकिन सच में सीन जो है रियल भी है कुछ। उसके अलावा फिल्म का एक और फन फैक्ट है, एंशिएंट ग्रीक एक्सेंट और डायलेक्ट्स। फिल्म को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए सारे मेन एक्टर्स ने शूटिंग शुरू होने से पहले लगभग तकरीबन 2 महीने तक एक स्पेशल लिंग्विस्ट यानी कि भाषा के जो एक्सपर्ट होते हैं, लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट होते हैं, एंशिएंट ग्रीक के डायलेक्ट सीखे, पुराने जमाने के बोलने का तरीका क्या होता है वो सीखा, ताकि फिल्म को और रियलिस्टिक बनाया जाए। फिल्म में जो प्रेयर्स या बैटल क्राइज हैं उनमें उसी पुराने भाषा का या कहें लैंग्वेजेस का यूज किया गया है, ताकि फिल्म में एक पुराने और सच्चे टेक्सचर्स को दिया जा सके, साउंड कराया जा सके। और इसमें जो एक्टर है या कहें डायरेक्टर, जो दोनों एक्टर और डायरेक्टर कामयाब रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में, कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे, कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। But don't worry, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। तो अब बात कर लेते हैं जरा इस मूवी के फन फैक्ट के बाद, डायरेक्टर के विजन के बारे में, कि इस मूवी को बनाते हुए डायरेक्टर का असल में विजन क्या था। वेल दोस्तों, डायरेक्टर का विजन तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मूवी ऐसी नहीं बना दिया। डायरेक्टर का विजन इस फिल्म को लेकर बहुत ही अलग और बोल्ट।

0: हाँ, मेरे हिसाब से आमतौर पर जब भी ऐसी माइथोलॉजिकल फिल्में बनती हैं तो उन्हें बहुत शाइनी, कलरफुल, अनरियलिस्टिक, मतलब जो है भी नहीं वो भी दिखाया जाता है, जहां हीरो एक सुपर ह्यूमन होता है जिसे कभी चोट नहीं लगती है, उसके ऊपर कितनी भी गोली चला दो उसको नहीं लगती, लेकिन उसकी हर एक गोली दुश्मन को लग जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इस डायरेक्टर ने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। उनका मेन विजन था ह्यूमनाइजेशन ऑफ अ मिथ, यानी एक पुरानी कहानी को बिल्कुल इंसानी और जमीनी बनाना। उन्होंने ओडिसेस को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाया, बल्कि उसे एक ऐसा आम इंसान दिखाया जो गलतियां करता है, जिसमें घमंड है और जो बार बार टूटता है। डायरेक्टर का मकसद सिर्फ एक्शन सीन्स दिखाना नहीं था, बल्कि वो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को स्क्रीन पर लाना चाहते थे जो एक इंसान को 10 साल तक वॉर और अकेलेपन में रहने के बाद झेलनी पड़ती है। उनका विजन था कि ऑडियंस ओडिसेस के मसल्स को नहीं, बल्कि उसके दिल के दर्द और उसकी आंखों की थकान को महसूस करे। दोस्तों, फिल्म को बनाते हुए ये सारी चीजें, ग्राउंडेड अप्रोच, पूरी फिल्म को एक अलग ही डेप्थ देती है। डायरेक्टर ने बड़ी चालाकी से एक ऐसी कहानी जो 3000 साल पुरानी है, उसे आज के मॉडर्न इंसान के इमोशन से कनेक्ट कर दिया, जो उनके विजन की सबसे बड़ी जीत है। और किसी डायरेक्टर का ये कर पाना कि वो कनेक्ट कर दे जितने भी ऑडियंस वहां पर देख रहे हैं और शुरुआत से कनेक्ट कर दे, ये तो काबिले तारीफ है।
1: He came back here to find all these suitors in his house.
2: They're pining for a daddy. He didn't even know. Like some sniveling bastard.
3: Who's looking after your wife and son?
2: Do you see?
3: My dad is coming home.
2: Bringing vengeance. Bringing it all.
0: अब बात कर लेते हैं कि इस मूवी को शूट करते हुए किन लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, फिल्म को असली और रियलिस्टिक लुक देने के लिए प्रोडक्शन टीम ने ग्रीन स्क्रीन और स्टूडियोज का यूज बहुत ही ज्यादा कम किया, जो कि आज के टाइम में काफी बड़ी बात है। आप किसी भी फिल्म को बनते हुए देखेंगे तो हो ही नहीं सकता कि परसेंटेज वाइज अगर हम कहें, कुछ फिल्म को, वो डिपेंड भी करता है कि फिल्म कैसी है, कुछ फिल्म को 40%, कुछ फिल्म को 50% ग्रीन स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसी फिल्म की, तो ऐसे में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। डायरेक्टर के कहने पर पूरी टीम ने क्रोएशिया, ग्रीस और माल्टा की ऐसी सुनसान और डेंजरस लोकेशन पर शूटिंग की है जो पहले कभी कोई बड़ी फिल्म की शूट के लिए गया ही ना हो वहां पे, और फिल्म शूट हुई भी नहीं है आज तक जिस तरह से ऐसी फिल्म को, यानी कि ओडिसी को शूट किया गया। उन्होंने बड़े समंदर के ऐसे अलग और आइसोलेटेड आइलैंड को ढूंढा जहां चारों तरफ सिर्फ नीला पानी और ऊंचे क्लिफ्स थे, बड़े बड़े पत्थर थे। इन रियल लोकेशंस की वजह से फिल्म में जो अकेलेपन का या खालीपन का लुक आया है ना, वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा एहसास होता है। वो कंप्यूटर से कभी नहीं बनाया जा सकता था। क्रोएशिया के पुराने और वेदर्ड पत्थरों पर जब समंदर की भयानक लहरें टकराती हैं, तो स्क्रीन पर जो खतरा दिखता है वो 100% असली लगता है। इसके अलावा ग्रीस के कुछ रियल एंशिएंट रुइंस, यानी कि खंडहर जो है वो भी हैं, गुफाएं हैं, केव्स, यानी कि तो वहां पर भी शूटिंग जो है वो की गई है, ताकि उन पत्थरों की पुरानी मिट्टी और टेक्सचर्स स्क्रीन पर साफ दिखे। उसके अलावा फिल्म में एक जगह और भी है, माल्टा, जैसे कि आपको बताया, माल्टा के पानी के बड़े टैंक्स और रियल ओपन ओशन में कई दिनों तक शूटिंग चली, जहां कास्ट और क्रू को काफी घंटों तक पानी में रहना पड़ता था। सोचिए, आप जब पानी में रहते हैं तो क्या एहसास होता है, और फिर नमक के पानी में रहते हुए तो फिर और भी ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। लेकिन जो क्रू है ना, वो भी लाजवाब होता है इनका। इन सभी लोकेशंस के नेचुरल बैकग्राउंड ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को एक अलग ही चार्म दिया है। दोस्तों, जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी आर्टिफिशियल सेट को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप सच में 3000 साल पुरानी उस अनजान और खतरनाक दुनिया में खुद ट्रैवल कर रहे हैं, जहां हर आइलैंड एक नया रहस्य छुपाए है, एक कुछ यूनिकनेस आपको देखने को मिले। वेल, इस तरह की फिल्म आपको एहसास दिला पाए, ऐसे में एक्टर का काम करना है, एक्टर की ट्रांसफॉर्म

0: ट्रांसफॉर्मेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस फिल्म के लीड जो एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन सिनेमा की हिस्ट्री के सबसे मुश्किल और तारीफ के काबिल ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। रोल की डिमांड ऐसी थी कि एक्टर को सिर्फ अपनी बॉडी नहीं बदलनी है बल्कि अपने पूरे लुक को कैरेक्टर के 10 साल के सफर के मुताबिक ढालना है। धूप से जली हुई स्किन के पैचेस वो लगाए, समंदर के नमक से खराब हुए बाल और गहरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी बनाए। हर एक आइलैंड के बाद उनके शरीर पर नए स्कार्स दिखाए गए ताकि फिल्म में एहसास जो है उसको जगा के रखा जा सके। उनकी हर एक जंग की कहानी बताते हैं ये सारी चीजें। फिल्म के शुरुआत का एक यंग और एनर्जेटिक राजा फिल्म के एंड तक आते आते एक बिल्कुल बुढ़ा सफेद दाढ़ी वाला और मेंटली दिमागी तौर पर टूट चुका शख्स बन जाता है। एक्टर ने इस फिजिकल बदलाव को अपनी एक्टिंग में भी उतारा है। उनका चलने का तरीका, उनकी आवाज का भारीपन और उनका देखना सब कुछ धीरे धीरे धीरे धीरे बदलता है, जो उनके डेडिकेशन को भी दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म के आंख और कान के बारे में, यानी कि सिनेमाटोग्राफी और साउंड। फिल्म का टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी इसकी सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन इस मूवी की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। और हर बार जब भी मैं बात करता हूँ सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में तो मैं कहता हूँ ये दिल और दिमाग भी है। डीओपी यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने ज्यादातर सीन में नेचुरल लाइटिंग का यूज किया। सुबह की धूप और रात के अंधेरे को रियल रखने की वजह से फिल्म के सीन बहुत ऑथेंटिक लगते हैं। जब कैरेक्टर्स समंदर में होते हैं तो कैमरा के वाइड शॉट्स इतने बड़े और गहरे होते हैं कि इंसान उनके आगे एक छोटे से तिनके जैसा लगता है। वहीं जब आइलैंड पर डेंजर होता है तो कैमरा बिल्कुल चेहरे के पास आ जाता है, क्लोजअप शॉट, जिससे कैरेक्टर का डर और उनकी आंखों की दहशत आपको साफ दिखती है। तेज आवाज सांस लेने की वो दिखती है। रंगों का यूज भी कहानी के मुताबिक बदलता है। दोस्तों स्पॉइलर फ्री प्लॉट सुन लो, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि मूवी में क्या हो रहा है, फजील भाई ये वाली बात ही सुननी है मेरे को, ऐसा नहीं है। आपको ऊपर ऊपर का मलाई बता देता हूं मैं। ये मूवी एंशिएंट ग्रीस के सबसे बड़े और मशहूर कवि होमर की कहानी या कहें पोइट्री है द ओडिसी, उस पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है ट्रॉय की उस डेंजरस और लंबी लड़ाई के ठीक बाद जहां इथियाका का चालाक और बहादुर राजा ओडिसिस अपनी अकलमंद स्ट्रेटजी से लड़ाई तो जीत जाता है पर उसके अंदर का जो घमंड है या एरोगेंस है उस पर भारी पड़ जाता है। तो समंदर जो है वो उससे नाराज हो जाता है। ये गुस्सा ओडिसिस के 2-4 हफ्ते का सफर जो है वो उसको पूरा 10 साल लंबा कर देता है और दुख मुसीबत बिल्कुल एक कहते हैं ना वो चक्रव्यूह पूरा एकदम भूलभुलैया में जो है वो फंस जाता है, उसकी वजह से लाइफ उनकी चेंज हो जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के वर्डिक्ट के बारे में। वैसे वर्डिक्ट तो इतना कुछ सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये फिल्म सिनेमा के इतिहास की एक ऐसी असली और ऐतिहासिक हिस्टोरिक जीत है के बताया नहीं जा सकता। ये तो आप बस देखा जा सकता है, ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसे आप देखकर अगले दिन भूल जाते हैं, बल्कि ये आपके दिमाग पर एक बहुत गहरा और कभी ना मिटने वाला इम्पैक्ट छोड़ जाता है। तो इस मूवी को जरूर से जरूर देखिए। फाइनल डिसीजन यही है कि ये एक एब्सोल्यूट मस्ट वॉच मास्टरवर्क है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई मूवी के बारे में बात करते हुए, एक नए डायरेक्टर के बारे में बात करते हुए जिसमें फन फैक्ट होगा, सिनेमाटोग्राफी होगी, फिल्मिंग लोकेशन होगी और बहुत कुछ होगा। तब तक सुन रहे FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Number one hits music station.
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
2: FM 107.
4: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
3: फजील के साथ
2: संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
3: दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।
5: क्रिकेट हो
6: and he's hooked that away. That's 4 runs.
5: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
7: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
5: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
7: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की,
8: स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की। आप सुन रहे हैं FM 107,
3: FM 107,
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: FM 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: Welcome to the world of DM and CM, Bade Miyan, the Khiladi and CM, the Baghi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। यहाँ दोस्तों, कतर का नुमाया एमेचर गोल्फर्स में अली अब्दुल्ला अल शहरानी का नाम बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन गोल्फ स्किल्स की बदौलत मुल्क और बैनुल अक्वामी सतह पर कतर का नाम रोशन किया है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2021 में आई जब उन्होंने कतर ओपन एमेचर चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस कामयाबी के साथ वो 1986 के बाद पहले कतरी गोल्फर बने जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट अपने नाम किया। इसी साल अली अल शहरानी ने सऊदी ओपन में भी शानदार परफॉर्मेंस दी और रनर अप रहे। उनकी मुसलसल बेहतरी ने उन्हें गल्फ रीजन के उभरते हुए गोल्फर्स में शुमार कर दिया। बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से उन्हें कतर मास्टर्स में हिस्सा लेने का भी मौका हासिल किया, जहां उन्होंने दुनिया के टॉप प्रोफेशनल गोल्फर्स के साथ खेलकर कीमती तजुर्बा हासिल किया। बाद में उन्होंने कतर की नुमाइंदगी 2022 आइजनहावर ट्रॉफी, जो वर्ल्ड अमेचर टीम चैंपियनशिप है, उसमें भी शिरकत की। अली अब्दुल्ला शहरानी की कामयाबियां साबित करती है कि कतर में गोल्फ का मायार तेजी से बुलंद हो रहा है। उनकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और मुसलसल मेहनत नई जनरेशन के गोल्फर्स के लिए एक मिसाल है। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वो इसी तरह मेहनत जारी रखें तो मुस्तकबिल में प्रोफेशनल गोल्फ के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में भी कतर का परचम बुलंद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में। हर हफ्ते मैं आता हूँ और आपको नए स्कैम्स या फ्रॉड के बारे में अवेयर करता हूँ, और इस हफ्ते भी एक ऐसे ही स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल्दो ये स्कैम आपके साथ कतर में हो या ना हो, लेकिन आपके अपने मुल्क में या फिर जो खेती से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस तरह का स्कैम होना आसान होता है या उनके साथ स्कैम हो सकता है। तो इसलिए ये आपके लिए नहीं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर के लिए या फिर आपके अपने घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर को इस तरह के स्कैम के लिए अवेयर जरूर करना चाहिए। वेल, ये है फेक स्मार्ट एग्रीकल्चरल IoT डिवाइस स्कैम, जो आमतौर पे गाँव के एरियाज में ज्यादा होता है। रूरल एरियाज के फार्मर्स को टारगेट करने के लिए स्कैमर्स मॉडर्न स्मार्ट IoT एग्रीकल्चर डिवाइस जैसे कि सॉयल टेस्टर या ऑटोमेटेड वाटर कंट्रोलर्स सस्ते दाम पर बेचने आते हैं। वो दिखाने के लिए एक सस्ती या नकली मशीन दे देते हैं और कहते हैं कि इसका हाईटेक सॉफ्टवेयर एक्टिव करने के लिए अभी कार्ड स्वाइप करें या एडवांस पेमेंट जरूर करें। एडवांस लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं और डिवाइस बिल्कुल कचरा निकलती है, और आप उनको पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही कोई ऑफिस है, तो ऐसे लोगों को आप सामने से पकड़ भी नहीं सकते। इसकी एक और वजह ये भी है कि जब वो आपको डिवाइस देते हैं, वो डिवाइस कुछ वक्त बाद आपको कहते हैं कि एक्टिव होगी, जो कि कंपनी से एक्टिव होती है, और वो दुनिया भर की चीजें बताते हैं, लेकिन ये तब कहते हैं जब आप पेमेंट करेंगे तब, यानी कि पेमेंट करने के बाद ये डिवाइस एक्टिव होगी, और वो यानी कि वो शख्स जो आपको डिवाइस बेचने आए वो वहां से चले जाते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि ये तो डिवाइस खराब है। ये स्कैमर्स अक्सर फेक गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स का झांसा देते हैं ताकि किसान जल्दी भरोसा कर रहे। वो कहते हैं कि अगर अभी स्कीम का फायदा नहीं उठाया तो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बहुत से भोले किसान इसका शिकार हो जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। ये नकली डिवाइस ना तो कोई सही डेटा दिखाती है और ना ही खेती में किसी तरह से भी काम आती है। उल्टा इनमें लगाए गए कार्ड से बैंकिंग फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन

0: सभी स्मार्ट डिवाइस हमेशा रजिस्टर्ड डीलर या गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से ही खरीदें। किसी भी आने वाले अनजान सेल्समैन को फील्ड में कैश या कार्ड एडवांस पेमेंट बिल्कुल ना करें। किसी भी डील को फाइनलाइज करने से पहले हमेशा लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर से राब्ता करके स्कीम की सच्चाई का जरूर पता लगाएं। उसके अलावा आप बाकी के किसानों से, आसपास के लोगों से राब्ता रखें कि क्या इस तरह की कोई स्कीम चल रही है जिसमें आपको डिवाइस दिया जाता है और उसमें सॉइल टेस्ट करना या फिर तमाम जो चीजें हैं वो क्या शामिल होती हैं या नहीं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। तब तक होशियार रहें और सतर्क रहें इस तरह के फ्रॉड से और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर इत्तला करें। और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद

0: वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं जूनियर जनाब, एक ऐसा शो जिसमें हम शोकेस करते हैं यंग अचीवर्स को। और आज हमारे साथ इस शो में हैं एक बहुत ही ऑसम से अचीवर, जिनसे मैं तो बहुत इंप्रेस हुई हूं। इन्होंने ना सिर्फ अपने स्कूल का नाम रोशन किया है इस उम्र में, बल्कि पूरे कतर का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। साथियों, मिलते हैं सहल से। अच्छा, इनका नाम मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने पहली दफा सुना इनका नाम और मुझे अच्छा लगा भाई, मतलब भी मैंने इनसे पूछा तो बड़ा अच्छा सा नाम था। तो इनका नाम है सहल, ये 12th ग्रेड में एक स्टूडेंट हैं और जिन्होंने रिसेंटली कतर नेशनल हैंडबॉल टीम को भी रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट एशियन मेंस अंडर 17 हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने हिस्सा लिया, जो कि अमान जॉर्डन में हुआ था। साथियों, सहल ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त सी परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को सेमीफाइनल्स तक ले गए। अगर मैं इनके स्कोर के बारे में बात करूं तो भाई, मैं इनके स्कोर से बड़ी इंप्रेस थी। जॉर्डन में जो इन्होंने गेम खेला तो इन्होंने स्कोर किया 32/25 और कुवैत में 26/22 से। और भाई, इनके यही स्कोर्स इनकी डेडिकेशन और इनकी स्किल्स का सबूत है। और तो आज इन्होंने जब चाइना के खिलाफ गेम खेला तो 38/34 स्कोर हुआ था भाई, विच आई थिंक इज वेरी इंप्रेसिव। और इन्होंने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट भी गेम खेला है जिसमें इन्होंने स्कोर किया 27/23 और इन्होंने जीत हासिल की। तो भाई, इनकी यही कंसिस्टेंसी हमें ये साबित कर देती है कि भाई ही इज अ वेरी डेडिकेटेड प्लेयर। और सबसे एक्साइटिंग बात तो ये है कि सहल अब अंडर 17 हैंडबॉल वर्ल्ड कप 2025 के लिए मोरक्को जा रहे हैं। तो साथियों, ये यंग अचीवर हर छोटे एथलीट के लिए एक मिसाल है कि हार्ड वर्क और पैशन आपके ख्वाबों को पूरा कर ही देता है। तो भाई, तैयार हो जाइए क्योंकि हम इस एपिसोड में आपकी इस यंग अचीवर से मुलाकात कराने लगे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल्स भी होती हैं, हार्ड वर्क भी होता है, लेकिन जो इंसान कोशिश करता है वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है और खुद के ड्रीम्स को भी अचीव करता है। तो भाई, चलते हैं हम डायरेक्ट सहल के साथ। तो सहल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine.
0: अच्छा सहल, सहल से मैंने शो शुरू करने से पहले पूछा, सहल कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? तो सहल ने कहा, देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड उर्दू बट आई एम गुड, वेरी गुड एट इंग्लिश एंड अरबिक। सो अरबिक मुझे थोड़ी बहुत आती है, पूरी नहीं आती, तो हम इंग्लिश पे आ जाते हैं, ठीक है? तो अच्छा, ये बताएं, मैं अगर उर्दू में सवाल करूंगी तो समझ में आ जाएंगे?
1: मैम, प्रोबेबली
0: आ जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं। कुछ तो मैंने बता दिया कि कुछ मुझे आप खुद भी बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं। सहल, असल में अपने लिए सहल कौन है?
1: So I'm Sahal, I'm from Qatar and I play for under 17 handball Qatar team. I have represented Qatar in many tournaments before. I went and played in Serbia, Bosnia, played in Saudi, so many places. And I started my journey maybe before like 8 years. I started playing handball. I played the game. I loved the game. It's my passion.
0: Ah, okay. It's good. Good. अच्छा, ये बताएं कि अगर मैं कहूँ कि आप हैंडबॉल में कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं?
1: So I am playmaker.
0: ओके। अच्छा, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं भाई हमारा, अब जैसे क्रिकेट में भी होता है, मुख्तलिफ गेम्स में होता है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारी कोई एक एक बॉल या कोई एक चीज हमारा लकी चार्म होती है। आपके साथ ये है कि आप किसी चीज को अपना कोई लकी चार्म मानते
1: हैं? I'm an assister, the best.
0: अच्छा,
1: I'm the best assister, you can ask.
0: ओके। अगर हैंडबॉल का तो हम सबको पता चल रहा है माशाल्लाह से, यू आर वेरी गुड एट इट, डेफिनेटली दैट्स व्हाई यू आर इन द टीम। सो ये बताएं कि हैंडबॉल के अलावा कोई एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको आप कहेंगे हाँ मैं देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, समथिंग?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडबॉल बी द बेस्ट फॉर मी।
0: ओके,
1: एट द सेकंड आई कैन टेल फुटबॉल, इवन फुटबॉल इज अमेजिंग गेम, आई एम गुड एट इट। Okay. I started even before playing hardball, I started playing football.
0: अच्छा, मुझे याद पड़ता है मेसी का भी कुछ ऐसा ही था कि वो कहते थे कि मुझे फुटबॉलर नहीं बनना था, मुझे बाइसाइकिल से, समथिंग ही सेड दैट आई वांटेड टू बी दैट एंड बट पता नहीं क्यों फुटबॉलर बन गया। मुझे फुटबॉल अच्छी लगती है लेकिन आई एम गुड एट हैंडबॉल एज वेल। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब अपने मैचेस वगैरह शुरू करते हैं तो उससे पहले कोई रूटीन होती है, कुछ ऐसा होता है जिसको आप कहते हैं कि नहीं भाई ये मेरी एक ट्रिक है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरी रूटीन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तभी आई एम डेडिकेटेड टू व्हाट आई डू?
1: सो ऑफ कोर्स बिफोर एनी मैच यू शुड हैव अ प्रॉपर रूटीन. Most of the athletes before the match, by 2 hours they don't sleep. They should be awake and like full 100% attention for the match, and you should be like I won't say 100%, but like you should give your best to stay in proper attention and to focus your trainers, as we have before every match we have a video play.
0: Okay.
1: So we watch that video play, we see what we should do in the match, the tactics, depending on the coach. And yeah, that's more of the
0: अच्छा रूटीन में रहते हैं.
1: yeah,
0: क्योंकि कभी कभी ये होता है खासतौर पे बच्चों में होता है कि दे आर नॉट डेली रूटीन, वी आर गॉन यूज टू इट सो वी नो इट ऑल. आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर ये चीज आई है कि आई नो इट ऑल, मैं जो होगा देख लेंगे?
1: Now, every athlete has this feeling that we know everything right now how. But we have to follow our instructions like this.
0: Kabhi aisa hua hai ki bahut zyada over confident feel kiya?
1: Yeah, it happens. Yes, it happens. Yes.
0: Acha, I'm very glad that I'm talking to an athlete, a person who is honest. अच्छा ऐसा होता है. हाँ ऐसा होता है क्योंकि लोग क्या करते हैं, हाइड कर जाते हैं चीजों को. अच्छा ये बताएं कि ये जो हैंडबॉल का पैशन है, आई वुड से पैशन, यू हैव अ पैशन ऑफ हैंडबॉल, तो ये कब शुरू हुआ, कौन सी एज में, क्या क्या दिमाग में आया था ऐसे ही रैंडमली?
1: सो आई वाज 7 इयर्स ओल्ड मे बी, एंड बिफोर इट आई स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल एक्चुअली. सो आई हैड माय डिफरेंट फ्रेंड्स, दे वर प्लेइंग हैंडबॉल, सो वंस आई ट्राइड इट या when I tried handball I liked the game. So now I love it.
0: जैसे हम कहते हैं ना, गलती से चला गया था, दोस्तों के चक्कर में गलती से चला गया था. अच्छा देखा, दिस इज व्हाट वी से, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, हैव गुड फ्रेंड्स, यू नेवर नो कि आपको कौन कहाँ ले जाए. अच्छा कोई एक ऐसा आपका कोच या कोई एक ऐसा नाम जो आपके दिमाग में आता है जिसने आपको कभी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया?
1: Yeah, there is one of my coaches. His name is Coach Hazm. He's from Egypt. He's the one who helped me a lot. He improved me. And because of him, because of Allah, first of all, of course, and then Alhamdulillah, I reached this level.
0: Good. Yeah. चले, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो आपके ऊपर जितनी मेहनत करता है आपसे क्रेडिट देते हो. इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक.
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर.

0: उसके अंदर से आपका फेवरेट तरीन मैसेज बोल रही हूँ, आपका फेवरेट तरीन मैच कौन सा है?
1: My favorite match I played until now, till today, it was against Kuwait in the Asian Championship.
0: Yeah. Okay.
1: This match was the match which made us qualify to the semifinals.
0: Oh, yeah,
1: we
0: nice.
1: We won like 26-22.
0: Good, yes. good. अच्छा ये वही मैच था जो ऊपर तक ले गया भाई. अच्छा ये बताइएगा कि ये सवाल तो आपसे हर कोई कहीं ना कहीं हर किसी ने ही पूछा होगा. ये बताओ बेटा मैनेज कैसे करते हो अपने स्केड्यूल को, पढ़ाई भी कर रहे हो माशाल्लाह से, बिकॉज यू आई बिलीव यू आर इन 12th ग्रेड राइट, सो पढ़ाई भी माशाल्लाह साथ साथ चल रही है और गेम्स भी साथ साथ चल रही हैं, तो ऐसा कैसे है?
1: So whenever I travel I get maybe in a day maybe I'll get 1 hour, 1.5 hour in between free. So that time I utilize it with my studies. So that when I come back to Doha and I go back to my school I don't be like oh This is a lot for me, I'm lost everywhere. So I try like getting back and like slowly.
0: ये अपने आप को खुद motivate करते हैं भाई. अच्छा कुछ आगे चलकर future में आपका कोई plan है कि इसी चीज को continue करना है या कुछ और? जैसे कि लोग कहते हैं ना कि study हमने medicine कर लिया लेकिन बनेंगे हम RJ. तो ऐसा है कुछ या आपने आपने कहा आपको कोई particular एक vision है अपने लिए?
1: So in studies right now, maybe in future I would like to study IT field. In IT field, yeah. And inshallah, continue handball too. I want to play in better places like in Europe, example. Of course, Europe is very known in handball. So inshallah, in future, planning to play in Europe, yeah.
0: सही. अच्छा आपको देखकर और सुनकर ना मुझे हमारे बहुत अच्छे एक रेसर हैं कार्स के कतर के बहुत नोन नासर अल अतिया. आई रियली जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ और जानती हूँ ना जितना, तो आई रियली रियली एडमायर हिम हिज पैशन फॉर. अच्छा ये भी नहीं कि कुछ छोड़ दिया हो कुछ रह गया हो, माशाल्लाह ही इज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही इज डूइंग. अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे पास आपने देखा होगा कि आपके साथ साथ दूसरे भी और कोई जो आप खेलते हैं तो आप देखते हैं ना दूसरे आपसे छोटे होंगे वो दे लुक अप टू यू राइट. तो अगर उन बच्चों के बारे में बात करें जो दे आर लुकिंग अप टू यू तो उनको क्या एडवाइस देंगे अपने पास से?
1: The small athletes, you mean? So small athletes. Example, I have my brother also. He looks up to me like that, and he'll be like, one day I will reach to you, and I'll play against you. Yeah.
0: MashaAllah.
1: So to the young athletes, the biggest difficulty they face is first of all their studies, and then how to manage their timings. So I will advise them that this is life. You have to sacrifice sometimes. So you should try your best in focusing both on sports and studies.
0: अच्छा क्या आप इस चीज को मानते हैं? कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये उनको या मुझे नहीं पता मैकेनिज्म दिमाग का कुछ ऐसा होता है कि उनको लगता है थिंग्स शुड बी इजी, तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज नॉट द वे आई वांटेड इट टू बी, या कुछ कभी ऐसे ऐसी चीजें आती हैं दिमाग में?
1: नहीं नहीं ऑफ कोर्स इट कम्स समटाइम्स बट देन दिस इज लाइक एवरीथिंग इट्स अबाउट नेगेटिव फीलिंग्स.
0: हाउ डू यू काम योरसेल्फ फॉर इट एंड यू शो ग्रेटिट्यूड टू लाइफ? हाउ डू यू डू दैट?
1: इट कम्स थ्रू ट्रेनिंग. We train, we forget about all these negative impacts we get. We focus more on what our goal is, like that.
0: अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताएं कि आपके लिए सक्सेस क्या चीज है लाइफ में, अचीवमेंट और सक्सेस क्या चीज है, what is it?
1: So for every athlete, if you ask, they'll say success is every time like you when you, for example, now I'm playing in Asian Championship, but right, I want to win World Cup now, like that. So every athlete wants to win bigger and bigger. After World Cup, I want to win Olympic Games. This is the biggest maybe an athlete can get, an achievement. Yeah. So every athlete will get will want to win more and more.
0: अच्छा आपके लिए आप कह रहे हैं कि मेरे लिए अचीवमेंट और मेरे लिए सक्सेस ये है कि मेरा जो पैशन है मैं उसके अंदर और से और yes, और से और yes, और yes, से और करता चला जाऊं. ठीक है.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी

0: मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
1: अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है वो रिजल्ट्स आते हैं जो हमें नहीं ना मंजूर होते। सो लेट्स से इफ इट्स अ गेम एंड यू रियली वांटेड टू विन इट एंड यू वर क्लोज इनफ टू विन इट, बट जैसे कि वो आपने बताया ना, वो आपका कोरिया के साथ मैच था, बट यू डिड नॉट, इट वॉज अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट। सो उस वक्त कैसे कोप अप करते हैं?
2: So every athlete face this thing in their life, but this is part of the game. This is like they say, right? Failure is the way to success.
1: Mm-hmm.
2: Every failure
1: acceptance.
2: You get, yes, you should accept it. Today you're failing, today tomorrow, inshallah, you win.
1: अच्छा ये बताइएगा कि कि आप जो है जब जब आप tough practices करते हैं तो जाहिरी बात है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई सबके पास ये time आता है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, तो अपने आप को कैसे एनकरेज करते हैं? कुछ तो होगा, कुछ दिमाग में रखते होंगे, कुछ सोचते होंगे।
2: So when I've been with my team, for example, for the national team, we get that feeling that, oh, for me it's over now like this. But I think about others.
1: Hmm.
2: Others have goals. And for them to reach their goals, I should even help them. I should support them. Yes.
1: Teamwork.
2: Yes, teamwork. Achha. If one is not focusing on his goal or passion like that, the other other teams will get affected too, because we are a team game. We are not an individual game.
1: सही अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे जरा ये बताएं कि एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आपको क्या लगता है हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो आप उंगलियों पे गिनते हैं? चाहे आप दोस्त भी बनाते हैं ना, तो आप कहते हैं नहीं, अगर मैं दोस्त भी बनाऊंगा ना किसी को, तो ये 1, 2, 3 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के अंदर आप क्या देखते हैं?
2: There are so many qualities actually. But one of them I would say that should be the to be human to love हाँ, others, yeah,
1: तो
2: to love
1: लोगों
2: others
1: के like साथ sympathy, yes, empathy होनी जरूरी है।
2: yes.
1: और एक चीज एक दो को भी एक तो आपने बता दी, चले empathy, sympathy, आपको दूसरों

0: फ्यूचर आई शुड.
1: आपको वो वाले लोग पसंद हैं जो दूसरों को भी पुल अप करते हैं.
0: कुछ
1: लोग ऐसे होते हैं दूसरों को ड्रैग डाउन करते हैं. भाई उनको पता ही नहीं होता कि वो चले में. ये भी एक अच्छी क्वालिटी है जो हमें खास तौर पे दोस्त बनाने से पहले देखनी चाहिए कि भाई कौन कैसा है आपको. क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे आप दोस्त बनाते हैं आप वैसे भी कहीं ना कहीं खुद भी बन जाते हैं. वेरी गुड. अच्छा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन फ्यूचर आप अगर अपनी गेम पे रखते हुए देखते हैं तो आपको कौन सी टीम ऐसी लगती है कि विच इज अ टफ कंपटीशन
0: एज अ नेशनल टीम और
1: आप चले आप क्लब के बारे में बता दें
0: club,
1: और इंटरनेशनल okay. टीम या नेशनल टीम के बारे में
0: एज अ क्लब द बेस्ट टीम टू फेयर लाइक द बेस्ट टीम इन हैंडबॉल मे बी यू कैन से बार्सिलोना.
1: Barcelona.
0: Yeah, Barcelona. They're
1: okay.
0: the best. Yeah.
1: Okay.
0: So facing Barcelona is a big
1: tough,
0: tough game. Yeah.
1: Okay.
0: But in future, inshallah, we can.
1: Inshallah. Yeah, inshallah. Inshallah. Inshallah. Or.
0: And national team, of course, the toughest team is Denmark. Denmark.
1: Okay.
0: is the toughest team. But why not in future? We never know.
1: Inshallah. Inshallah. Practice makes makes us all perfect.
0: Perfect.
1: और वही वाली बात है कि आप अपने आप को अगर positive रखते हैं ना किसी चीज के लिए तो वो फिर आप इंशाल्लाह उसको अचीव कर ही जाते हैं. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा हैबिट ऐसा है जो इंसान को डिसिप्लिन्ड रखता है या आपको डिसिप्लिन्ड रखती है. कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको आप कहेंगे भाई ये चीज मेरे अंदर है तो मैं बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ. मैं एक सिंप में रहता हूँ.
0: मोस्टली अबाउट फॉलोइंग व्हाट यू लाइक लाइक दिस फॉर like when you have a free time example you should utilize it this will gain you discipline this will gain you so many like so many
1: aapke mutabik agar aapke paas free time hota hai to aap uske andar kya karte hain
0: so mostly training studying like that reading books yeah
1: chale theek hai
0: just utilizing okay. our time
1: acha agar main kahun ki aapka in future कोई एक बहुत बड़ा ख्वाब मेरे साथ शेयर करें जो विजन आपने अपने लिए देखा है कि वेयर वुड यू स्टैंड व्हाट वुड यू बी डूइंग तो वो क्या होगा.
0: ओह माय फ्यूचर प्लान्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक कतर्स नेम हायर एंड हायर
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह टू रेज आवर फ्लैग हायर एंड हायर इन बेटर फील्ड्स.
1: सही सही सही. अच्छा स्ट्रेंथ तो आपने बहुत सारी बताई. कोई एक ऐसी चीज होगी जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस जरूर होती है तो आपको क्या लगता है कोई एक ऐसी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने अंदर और ज्यादा बेहतर. देखिए मामला ये होता है कि जो इंसान अपनी वीकनेस को पहचान लेता है ना वो उसको ओवरकम यू मिनटों में करता है. तो आपको क्या लगता है आपके अंदर ऐसी कौन सी वीकनेस है जो आपको जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है एंड यू नो इट्स देयर एंड यू आर स्टिल वर्किंग ऑन इट.
0: इफ यू सी मोस्ट ऑफ द हैंडबॉल एथलीट्स दे आर लाइक इफ यू सी देयर बॉडी दे आर लाइक मोर बिगर इन साइज या So I, my weakness is in that. But still I have an advantage because when you play against big big people they can't like control they can't control small people
1: yes,
0: they just
1: yes.
0: control big people. So it's an advantage at the same time it's like in this
1: अच्छा ये अपनी अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चलते हैं. अरे आई लाइक इट. इंसान वही जो हर चीज में मसले का हल निकाल ले. भाई ये इन्होंने मसले का हल निकाल लिया. साथियों हमारा जो है वो तकरीबन टाइम ओवर होने को आ गया है बातचीत में. और जाने से पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि जाने से पहले आपको एक अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस जितने भी बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको देना चाहेंगे उनको बताना चाहेंगे कि लाइफ में किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए या क्या चीज़ ज़रूरी है या एक्स वाई ज़ेड आपके दिल में जो आता है जो आप अपने पास से मैसेज देना चाहते हैं सबको.
0: As I said to the young athletes, first you should follow your passion. Passion is everything. If you love what you're doing, exactly. So when you love what you're doing, then you can succeed more and more. Yes.
1: सही. अच्छा ये भी एक बड़ी बात होती है कि इंसान अपने टैलेंट को पहचान जाए या सामने वाला उसके टैलेंट को पहचान जाए. अक्सर औकात बच्चे मुझे ऐसा लगता है 60-70% बच्चे ऐसे ही जाया चले जाते हैं क्योंकि उनको टैलेंट को पहचाना ही नहीं जाता या वो खुद नहीं पहचान पा रहे होते या उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता. आपको किसने सपोर्ट किया था भाई इस चीज के लिए. और अगर मैं पूछूं ऐसे बच्चों वाला सवाल हो जाएगा लेकिन मैं पूछूं मजा आता है मुझे सवाल पूछने में कि अम्मी और अब्बू में से सबसे प्यारा कौन. अम्मी अम्मी अम्मी प्यारी. चले भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है माँ के कदमों में जन्नत. और अम्मी की खिदमत वगैरह करते हैं.
0: ऑफ कोर्स.
1: चले भाई अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है. माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए. साथियों अब जो है हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे. देखिए ये मैंने आज सहाल से बात की है, तो सहाल हमारे लिए एक फुल फाइनल डेफिनेशन है इस बात

0: की कि आपको ये हक भी है कि आप ख्वाब देखें, आपको ये हक भी है कि आप बड़े बड़े ख्वाब देखें, और आपको ये हक भी है कि आप उन्हें अचीव करें. बस मामला ये आता है कि आप उन्हें कैसे अचीव करना है. वो कैसे अचीव करना ये होता है कि कुछ हमारे बड़े हमारा साथ देते हैं, हमें प्रमोट करते हैं, हमारे लिए रास्ते ढूंढते हैं, और फिर हमारी बारी आती है कि जब वो रास्ते ढूंढ लेते हैं ना कि अच्छा बेटा फलाने ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अच्छा बेटा फलानी एक्टिविटी कर लो, वो आपको फॉर अ टाइम बीइंग एक जबरदस्ती पुश नजर आ रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर आपके अंदर जैसे कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है. तो वो आपका टैलेंट निकल कर सामने आता है जिसके बारे में आपको खुद को भी नहीं पता होता. तो भाई हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अम्मा अब्बा के ऊपर यकीन रखें कि वो आपको थोड़ा बहुत जो पुश देते हैं ना जिंदगी में, जो आप कहते हैं कि जबरदस्ती हमें धक्का देकर यहाँ भेज दिया, जबरदस्ती हमसे ये एक्टिविटी करवा ली, मेरा इंटरेस्ट नहीं है मुझसे ये करवा लिया, कुछ टाइम बाद जाकर आफ्टर अ मंथ और टू आपको प्रॉपरली आप उसके अंदर जब सेट होते हो ना तो आपको पता चलता है दैट यू आर गुड इन दिस थिंग एंड दे एक्चुअली सॉ दैट थिंग इन यू बिफोर यू इवन न्यू. तो अपने पेरेंट्स के ऊपर आप भरोसा रखें, खुश रहें, और जिस चीज़ का आपको पैशन है अपने ड्रीम्स को फॉलो करें. ये याद रखें लाइफ में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती. क्या कहते हैं साल? कोई भी चीज़ आसान नहीं होती. इवन मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी बात सुनी थी कि इवन फेलियर नीड्स एफर्ट्स. कि फेल भी आप ऐसे नहीं हो सकते, आपको फेल होने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है, लेजी होना पड़ता है, यूजलेस होना पड़ता है. तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार से रहें, और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें. याद रखें कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता. हमें दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और साइनिंग आउट फ्रॉम जूनियर जनाब. इंशाल्लाह क्या पता आप भी एक यंग अचीवर बने आगे जाकर, और क्या पता नेक्स्ट, अभी सहल बैठे हैं हमारे साथ, नेक्स्ट यंग अचीवर आप हो. तो भाई सुनते रहें FM 107. अल्लाह हाफिज.
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब.
2: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें. आज ही राबता करें हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर.
6: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहां कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ पजल्स एंड एक्साइटमेंट.
7: अनलॉक योर माइंड, ट्यून इनटू रेडियो का यूनिक गेम शो एस्केप रूम विद ए फॉर अमिता, संडे टू थर्सडे दोपहर 1:30 बजे से, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
8: दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 7 PM only on FM 107, दिल से देसी।
4: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया, इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर ने जमहूरिया भारत की सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर तहनियती पैगाम इरसाल किया है। रियासत कतर ने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों में इजाफे की शदीद मजम्मत की है, जिनमें शहरियों के खिलाफ मुनज्जम तशद्दुद भी शामिल है। कतर फाउंडेशन बराए सोशल वर्क ने जिनीवा में अक्वामे मुतहदा के सदर दफ्तर में माजूर अफराद के हकूक से मुतालिक कमेटी के 35वें इजलास में शिरकत की। और मुतहदा अरब इमारात ने आबने हुरमत से गुजरने वाले अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के एक बहरी जहाज को निशाना बनाने वाले ईरानी हमले की शदीद मजम्मत की है, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब समाप्त कीजिए मुफसल नशरिया।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका आपके अपने दिल से जुड़े प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां हर रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर के वो पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। भाई हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसकी अपनी वर्चुअल का हिस्सा होती है, और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती हैं, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी करीब लाती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले से दोस्तों हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। और आज के हमारे खास प्रोग्राम में जो शख्सियत हैं, जो मेहमान हैं, उनका नाम सिदरा हसन है। हमारी मेहमान मोहतरमा सिदरा हसन पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और UAE में पैदा हुई। उन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर मुकम्मल किया और 2016 में शादी के बाद कतर मुंतकिल हो गईं। तालीम के मैदान से उनका लगाव और वफादारी काबिले तारीफ है। आज उन्हें कतर में एक प्राइमरी टीचर के तौर पर जाना जाता है। सिदरा साहिबा एक पुरजोश एडुकेटर और लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, जो यकीन रखती हैं कि तालीम सिर्फ फर्द नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की तामीर करती है। उनकी प्रोफेशनल जर्नी, डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और स्टूडेंट्स की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने के जज्बे से भरपूर रही है। टीचिंग के अलावा भी वो नए चैलेंजेस कबूल करना, मुख्तलिफ तजुर्बों से सीखना और ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेना पसंद करती हैं जो वैल्यूज, वेल बीइंग और पर्सनल ग्रोथ को फरोग देती हैं। उनका मानना है कि काइंडनेस, प्रिजर्वेंस और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वो बुनियादी उसूल हैं जो उनकी जाती और प्रोफेशनल जिंदगी की रहनुमाई करती आई हैं। तो आइए दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। सिदरा जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए दोहा डायरीज में।
2: वालेकुम अस्सलाम और आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का।
1: अहलन वसहलन, मोस्ट वेलकम। तो आइए सवाल जवाब का सिलसिला जल्दी से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अगर आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान करना चाहें, एक टीचर और एक इंसान के तौर पर, तो वो क्या होंगी?
2: एज अ इंसान मैं अपने आप को कहूंगी एम्पैथेटिक और जेनरस, और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मैं अपने आप को कहूंगी कि आई एम अ वेरी प्रोफेशनल।
1: सिदरा जी, दोहा में एक टीचर की जिंदगी का एक आइडल या रिलैक्सिंग दिन जो है आपके लिए कैसा होता है?
2: लाइक 5 दिन काम करने के बाद फैमिली के साथ जो है फ्राइडे और सैटरडे स्पेंड करना, ये सबसे ज्यादा एक आइडियल टाइम होता है। और शाम में कहीं बीच पर चले जाना और अपना जो एक टी का कप है उसको एंजॉय करना सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग होता है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। टीचिंग ने आपकी पर्सनालिटी और सोच को किस तरह से शेप किया है?
2: टीचिंग ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया है। जब मैं कतर में आई थी तो मैंने जिस स्कूल में सबसे पहले जो है जॉब स्टार्ट की थी वो एक किंडरगार्टन स्कूल में थी, तो मेरा पेशेंस लेवल इतना अच्छा नहीं था। तो चूंकि मैंने छोटे बच्चों के साथ काम किया था 1 से 1.5 साल, तो उनसे मैंने बहुत सीखा और मेरा पेशेंस लेवल और मेरा जो एंगर का लेवल था वो काफी ज्यादा कंट्रोल हुआ। तो इस पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा कंपोज करने में हेल्प की। तो ये मैं एक अभी तक अपने आप को स्कूल के लिए क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने मैंने छोटे बच्चों के साथ काम करने की वजह से एक पेशेंस लेवल अपना अच्छा करना सीखा है.
1: वेरी गुड एंड वेरी नाइस. अल्लाह ताला इसमें और इजाफा करे और मजीद आपको तरक्की दे. आपकी दोहा जिंदगी जो है वो शादी के बाद शुरू हुई, और यहाँ आने का फैसला कैसा था या कैसा रहा?
2: यहाँ आने का फैसला ठीक था. मुझे एक आइडिया था कि मिडिल ईस्ट की लाइफ कैसी होती है. जैसे कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरी पैदाइश जो है वो UAE की है और मैं कुछ साल वहाँ पे रुकी भी, तो मुझे एक ये क्लियर पिक्चर थी कि मिडिल ईस्ट की लाइफ कैसी है. लेकिन चूंकि मैं बिल्कुल अपनी फैमिली के बगैर यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आती फर्स्ट टाइम, तो शुरू में थोड़े से हर इंसान को एक नई जगह पर जाने के लिए कुछ खौफ और सोच होती है, तो कुछ मुझे भी इससे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, फैमिली की सपोर्ट थी, हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी, तो मैं कहती हूँ कि एक क्रॉस कल्चर में आके आप जो काम करते हैं, सीखते हैं, लाइफ गुजारते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो आपको अपनी जगह से बाहर जरूर जाना चाहिए और आपको एक्सपोजर होता है. तो मैं कहती हूँ, ये कंसिडर करूँगी कि इस फैसले ने मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट किया और मेरा ये फैसला बहुत अच्छा रहा कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा.
1: ओके. तो जब आप दोहा आई तो करियर और जिंदगी के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी?
2: एक्सपेक्टेशंस अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही थी. बस थोड़ा सा डर था कि सब कुछ नया है, चीजें कैसे होंगी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में हस्बैंड की काफी सपोर्ट थी, बाहर जो मेरा स्कूल था, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी, उसमें मेरी कोलीग्स की काफी सपोर्ट थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ साथ सब चीजें सेटल डाउन होती रही और सब कुछ अच्छे से हो गया.
1: ओके. एयरपोर्ट पे जब आप लैंड हुई तो बाहर निकलते ही दोहा का पहला इम्प्रेशन क्या रहा आपके लिए?
2: जब मैं बाहर आई तो जो सबसे पहले इम्प्रेशन था वो यहाँ की क्लीननेस थी, और मैंने सोचा कि यहाँ पे हर चीज कितनी ऑर्गेनाइज्ड है और कितनी क्लीन है, रोड्स कितनी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, जिसने मुझे ये आइडिया दिया कि यहाँ ये लोग हर चीज को कितने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन करके रखते हैं. तो मुझे ये भी सीखने को मिला कि इनकी क्लीननेस जो है वो शो कर रही है इनकी वेल मेंटेनेंस, कि वो अपनी हर चीज से इन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चल रहे हैं, चाहे वो रोड के साइड पे कुछ भी हो, कुछ लाइक प्लांट्स से डिफरेंट वहां पे लगे हुए, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन दे रहे थे. और हर चीज बिल्कुल न्यू और पैक्ड लग रही थी कि जैसे बस अभी आपने किसी चीज को अनपैक किया हो. तो इनकी क्लीननेस ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया था.
1: क्या बात है भाई, एक खालिस टीचर के तौर पे जो जवाब मिलना था वो मुझे मिल गया. शुरू के दिनों में एक नया मुल्क और कहना चाहिए नए एजुकेशनल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना कैसा रहा?
2: जैसे कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, वहाँ पे मेरा ऐसे टीचिंग करियर का इतना नहीं था. एजुकेशन के फौरन बाद जो है मेरी शादी होकर फिर मैं यहाँ पर आई. लेकिन फिर अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ पाकिस्तान के कल्चर के साथ या अपनी पढ़ाई के साथ, तो मैंने ये चीज़ सीखी कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके जाया जाता है. जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है इसमें मैं हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बहुत कंसिडर करती हूँ, वो थैंकफुल हूँ उनकी कि वो हर चीज से चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि हर इंसान अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से पूरा करे, वो कोई भी ओवर बर्डनाइज नहीं हो. और जो चेक एंड बैलेंस का एक फैक्टर है वो हर चीज को सही तरीके से लेके चलने में काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है. तो ये चीज मैंने यहाँ से सीखी, आपको हर चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलना चाहिए, तब भी आप जो है उस इंस्टीट्यूट को सक्सेसफुली लेकर चल सकते हैं.
1: ऑलराइट, दोहा में टीचिंग करियर कंटिन्यू करने का तजुर्बा कैसा रहा?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, इसलिए माशाल्लाह से मुझे 10 साल हो चुके हैं और मैं इसे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूंगी. तो मैंने बहुत सीखा इस प्रोफेशन से. पहले मुझे लगता था कि टीचिंग मुश्किल चीज है, लेकिन जब आप उस चीज में जाते हैं आपको चैलेंजेस भी नो डाउट बहुत ज्यादा आते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन आपको दरअसल वो चीज ट्रेन करती है कि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं. तो शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती थी, डर लगता था कि ये चीजें टाइम पे नहीं होंगी तो कुछ कैसे क्या होगा सब कुछ. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक दो साल के बाद जो है वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है आपकी कि आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आप नेचुरली कब कंपोज हो रहे हैं, कब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कि आप कुछ सालों के बाद अपने उस प्रोफेशन को जो है वो एंजॉय करने लगते हैं. तो इसीलिए अभी तक माशाल्लाह से मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूंगी.
1: इंशाल्लाह ताला ऑल द बेस्ट. और क्या टीचिंग सिस्टम में या स्टूडेंट्स के कल्चर में कोई ऐसा फर्क था जिसने आपको सरप्राइज किया?
2: हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो यहाँ पे कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है. हर कोई एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए तैयार रहता है आपके फील्ड में. लाइक अगर आप न्यू हैं तो आपको ये फील नहीं किया जाता कि अपने फोन से पहले आपको अपने लोग अपने ग्रुप में ऐड करते हैं और लाइक जो भी आपका काम है. अगर आप, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा लोगों के साथ काम करने का कि मुझे हमेशा अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती तो लोग फोन से पहले हेल्प करने में साथ रहते हैं. यहाँ तक बच्चों की बात है तो यहाँ के बच्चों में मैंने एक ये चीज सीखी है कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज के, यहाँ के बच्चे इनिशिएटिव जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा लेते हैं और ये चीज इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इनहेंस करती है. एक एजुकेशन तो आपकी चलती ही है बेसिक जो कि आपको कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा होना चाहिए ताकि अगर वो सब्जेक्ट वाइज अगर चीज में कमजोर है तो अपने दूसरी टैलेंट और क्रिएटिविटी को पॉलिश कर सकें. तो यहाँ के बच्चों की ये बहुत अच्छी चीज है कि वो जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं.
1: एक नए मुल्क में आना, नए सिरे से सारी चीजें शुरू करना और फिर शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियां भी, क्या कभी आपने सोचा कि ये फैसला सही था या सही होगा या नहीं कुछ इस तरह से?
2: शुरू में थोड़ा सा यानी कि आपको महसूस होता है आप अपनी फैमिली को छोड़ के ऑब्वियसली दूर आते हैं तो शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कलीग्स की तरफ से मुझे बहुत हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट रही, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट रही, मेरे हस्बैंड ने मुझे हर चीज में गाइड किया जैसे एक छोटे बच्चे को गाइड किया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आज देखती हूँ अपने 10 ईयर्स की जर्नी को तो मैं कहती हूँ कि मेरे यहाँ आने का फैसला अच्छा रहा, मैंने बहुत सीखा इससे और इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे
1: इंशाल्लाह. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और हर किसी की जिंदगी में कुछ सख्त दिन आते हैं, कुछ इमोशन से जुड़े हुए दिन निकलते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है. तो क्या कभी आपको दोहा में तन्हाई या होम सिकनेस महसूस हुई, खासतौर पर शुरू के दिनों में जैसे आपने बताया?
2: शुरू के दिनों में तो बहुत ज्यादा हुई थी क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स और फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच थी और तो बहुत मुश्किल थी लाइक उनको छोड़कर आना और उनके बगैर रहना. और कभी शुरू में जब आप बीमार हो जाते तो आपको अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आती है. तो शुरू में फर्स्ट मंथ मेरा बहुत डिफिकल्ट था इवन कि मेरी फैमिली के लिए भी, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कभी अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं होता है कभी अपने रिलेटिव के घर रहने चले जाते ऐसे नहीं गई थी. तो आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर. तो शुरू में मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती थी और कभी आप अकेले में होते हैं तो आप वो भी पढ़ते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि आज हम एक एडवांस दौर में रह रहे हैं तो उसकी वजह से मोबाइल की अवेलेबिलिटी और वीडियो कॉल की अवेलेबिलिटी ऑल टाइम बहती है. तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की, जब उनकी याद आती थी तो घर पे कॉल मिला लेते थे और एक दूसरे को देख लिया, बात कर लिया, तो ये चीज़ काफी हद तक आपकी होम सिकनेस को कम कर देती है.
1: तो चलिए ये तो आपने तरीका ढूंढ लिया, बट जैसा कि आपने बताया कि जब घर की और अपने शहर की अपने लोगों की याद आती थी तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करती थी? तरीका तो आपने निकाल लिया था.
2: मैं ये सोचती थी कि कुछ चले कोई बात नहीं, एक दो महीने तक मैं जब भी वेकेशन होंगी तो मैं इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी. तो अब वो बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में चल रहा होता था कि मैंने जाना है, फिर अपने आप को शॉपिंग करने के लिए बिजी कर लिया कि जब मैं जाऊंगी तो मैंने सबके लिए गिफ्ट लेने हैं. तो इस तरह की चीजें करके मैं अपने आप को मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं जब वेकेशन आएंगी तो मैंने जाना है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन साथ साथ करती रहती थी.
1: बड़ी अच्छी बात. वैसे तो आपने जिक्र किया अपनी फैमिली का और हस्बैंड का खासतौर पे, तो फिर भी ये जानना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी की कोई ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आपकी सोच या करियर को बदला है या बड़ा किरदार अदा किया है अपार्ट फ्रॉम फैमिली?
2: हाँ जी, मेरी एक तो मेरे स्टूडेंट से मैंने बहुत सीखा. उसका जो है मैंने मेरे स्कूल में मेरी हेड है उनसे बहुत सीखा है. वही ग्रेटफुलनेस और हमेशा जेनरस रहना चाहिए आपको कि आप चाहे बेशक किसी एक सीनियर पोजीशन पे हो लेकिन आपको कैसे हम्बल रहना है और कैसे जेनरस रहना है लोगों के साथ कि उनके लेवल पे आके आपको फील करना है उस चीज़ को. तो यानी कि ये चीज़ मैंने प्रोफेशनली उनसे बहुत ज़्यादा सीखी है कि इन फ्यूचर अगर मैं भी उस पोस्ट पर पहुँचती हूँ तो मुझे अपनी उस पोस्ट को कैसे अच्छी तरीके से लेकर चलना है कि सब लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करें और आप इतनी हाई पोस्ट पर होने के बावजूद दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें. तो ये एक चीज मैंने उनसे सीखी है कि वो हमेशा हम्बल रहती हैं और सबको साथ लेकर चलती हैं.
0: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने, अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: दोहा में टीचिंग की सबसे पसंदीदा बात करें अगर तो आपके लिए क्या है?
2: एक तो यहाँ पे हर चीज टीचिंग में बहुत ज्यादा, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है और प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, और ये दो चीजें आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने के लिए। तो ये एक इनका डिसिप्लिन काम करने का जो है वो बहुत अच्छा है।
1: क्या बात है। अगर आप अपनी जिंदगी पर एक डायरी लिखें बीइंग अ टीचर, तो उसका टाइटल क्या होगा?
2: अदीप्सी।
1: अच्छा है, क्या बात है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं भाई, और कुछ हंसी मजाक तो सभी की जिंदगी में रहता है, भले ही बच्चे हों और बच्चे जहां हों उसके साथ जब उस सफर में आप होते हैं तो कुछ ना कुछ नया जिंदगी में आता ही रहता है। तो क्या दोहा में टीचिंग के दौरान कोई फनी या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जो आज भी आपको याद रहा हो?
2: फनी इंसिडेंट तो हर रोज ही तकरीबन होते हैं, चाहे वो वर्बली हो या फिर बच्चों के एग्जाम पेपर्स जब आप देखते हैं तो कभी कभी आप उनसे कुछ आंसर मांगते हैं तो वो इतना कॉमन सेंस का क्वेश्चन दे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बच्चे को उसकी कॉमन सेंस पे नंबर दें या जो हमने कॉन्सेप्ट उससे मांगा था उस पे नंबर दें। तो उस टाइम लिटरली आपकी हंसी निकल जाती है। कुछ बच्चों की प्रोनंसिएशन जो है वो बड़ी फनी सी होती है, जो मुझे आज भी याद है। मेरा एक स्टूडेंट था जो टोमेटो को मोटैटो कहता था, तो मुझे वो आज भी याद आता है। अभी भी वो बच्चा मेरे स्कूल में है तो मैं जब भी उसको देखती हूँ तो मुझे आज भी यही, उसका नाम तो याद है लेकिन मुझे यही याद रह गया कि ये वो है जो टोमेटो को मोटैटो कहता था।
1: वाह वाह वाह। तो इसी से मुतालिक क्या कभी क्लासरूम में किसी स्टूडेंट ने ऐसा जवाब भी दिया हो जो यादगार रहा हो?
2: एक दफा एक साइंस का लेसन था तो उसमें डे और नाइट पे कॉन्सेप्ट था, तो के सूरज जो है वो सुबह में होता है और रात में नहीं होता। तो एक बच्चे ने बहुत फनी आंसर दिया क्योंकि टीचर सन हैज नाइट एंड ड्यूटी शिफ्ट, इस वजह से सुबह में होता है और वो रात में नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हट के हम लोग उसे ये भी कह सकते हैं इसकी कॉमन सेंस है कि वो बाद से मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं इससे ये कह रहा हूँ कि मॉर्निंग में वो हमें यहाँ पे सूरज रोशनी दे रहा हूँ, रात में कहीं और चला जाता है किसी दूसरे मुल्क में जो है उस सुबह करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उसने कहा था इसकी बेटी नाइट एंड डे शिफ्ट है इसलिए वो सुबह में आता है रात में नहीं आता।
1: वाह वाह वाह, आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। काश ये सारी बातें अगर मुझे पता होती अपने स्कूल टाइम में तो मैं और भी अच्छा कर पाता। सुधर जी, क्या किसी स्ट्रेंजर या कलीग ने शुरू के दिनों में आपकी ऐसी मदद की हो जो आप आज तक याद रखती हैं?
2: जी, शुरू में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था टीचिंग का यहाँ पे जॉब पर, तो कुछ चीजें समझने में मुश्किल थी और कि आपने एक प्रोफेशनली कैसे काम करना है। तो कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा पेशेंस लेवल कम, बहुत कम था शुरू में, मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी। तो फिर मेरी एक कुलीग थी, वो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि प्रोफेशनल वे में आप काम कैसे लेके करते हैं, किसी भी चीज़ को पर्सनल वे में नहीं लेते और हर चीज़ को आप बस देखें और उसको समझने की कोशिश करें। कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर पर्सनल अटैक के तौर पर मत लिया करें और जल्दी ओवर रिएक्ट मत कर लिया। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी। टाइम तो लगा मुझे, कुछ महीने लगे, लेकिन बाय द एंड जब मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में गई तो मुझे काफी ज्यादा हेल्प आउट हुई, वो चीजें काफी हद तक कम हो चुकी थी। तो मैं उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल कहूंगी।
1: क्या बात है भाई। आपने दोहा में अपना सोशल सर्किल और दोस्त जो है वो कैसे बनाए और क्या आप सोशली एक्टिव रहती हैं?
2: मेरा सोशल सर्किल बहुत लिमिटेड सा है और जो मेरे जो कि मैं एक ही प्रोफेशन से कंटिन्यूसली चलती आ रही हूँ, तो मेरी फ्रेंडशिप ज्यादातर उसी वजह से हुई। मेरे जो टीचर्स थे वही मेरे दोस्त बन गए और वही मेरे अभी तक दोस्त चल रहे हैं, कुछ काफी लॉन्ग लास्टिंग, शुरू से कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं क्योंकि मैं इतनी ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ, तो जो मैंने लिमिटेड से दोस्त बनाए मेरे अभी तक वही दोस्त मेरे साथ चल रहे हैं 8-9 साल से।
1: क्या बात है भाई, अल्लाह ताला दोस्ती बरकरार रखे, यही दुआ है हमारी। वो कौन सा मोमेंट था जिसने आपको दिल से खुश या इमोशनल कर दिया? कभी कुछ ऐसा भारी लम्हा गुजरा जिंदगी में, अगर आप शेयर करना चाहती हैं?
2: मेरे एक बैच था स्टूडेंट्स का, तो वो 3-4 साल से मेरे साथ थे। जिस दिन वो गए, जब उनका ग्रेजुएशन ले था, तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हुई, और जब उनके बाद मुझे एक नई क्लास मिली तो मुझे लिटरली उस क्लास को उनके साथ सेटल डाउन होने में, उनको एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगा, क्योंकि मैं अपने उन पुराने बच्चों के साथ इतनी इमोशनली अटैच थी कि मैं उस चीज से बाहर नहीं आ पा रही थी। तो वो आज भी मुझे फील होता है कि उनका जाना जो है उस टाइम पे मुझे बहुत इमोशनली, आज भी मैं उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाती हूँ जब मैं उस चीज के बारे में सोचती हूँ। तो
1: क्या बात है भाई। बस आखिरी चंद एक दो सवाल और फिर इजाजत, आप क्या कहेंगी, दोहा ने आपकी जिंदगी और टीचिंग जर्नी को किस तरह से बदला है? आपने बहुत कुछ बताया, मगर फिर भी इसमें अगर आप आइस ऑन केक कहते हैं।
2: सबसे पहली बात तो मेरी टीचिंग प्रोफेशन ने और दोहा ने एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात डिसिप्लिन जो है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा लेकर आया, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, लाइक हर चीज को एक डिसिप्लिन वे में लेकर चलना, ये मैंने चीज देखी है अपनी लाइफ के अंदर। अब अगर मैं अपनी कंट्री जाती हूँ तो मैं फील करती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी काफी चेंज हो गई है, जो चीजें मैं वहाँ पे पहले करती थी अब मैं वो करने नहीं करती। तो डिसिप्लिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज है मेरी लाइफ के अंदर। दूसरा जिसमें मैंने बताया आपको, ग्रेटफुल होना, क्या इंसान को हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और एक तीसरा जो है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, हर रोज जो है वो चीजें बदलती हैं, हर रोज नई नई चीजें आती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, जैसे कि टीचिंग डिपार्टमेंट में हर रोज आपको अगर कोई भी चीज नहीं आती है, कोई भी इनोवेशन होती है, तो आपको सिखाते हैं लाइक वर्कशॉप के फॉर्म में। तो ये चीज मैंने देखी कि जब आप ऐसे एनवायरमेंट में काम करते हैं तो आपके अंदर सीखने की लगन ज्यादा पैदा होती है, हर इंसान के अंदर एक चाह होती है कि वो आगे से आगे बढ़े, तो वो एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं और डिफरेंट डिप्लोमास करते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे देखी कि अप टू डेट रहना मैंने सीखा कि मुझे हमेशा हर फील्ड की लाइफ की फील्ड में अप टू डेट रहना चाहिए।
1: वाह वाह। आखिर में जो टीचर्स या यंग लेडीज करियर और फैमिली के साथ दोहा आ रही हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
2: मैं उन्हें यही कहूंगी कि वो ये सोच कर है कि ऑब्वियसली जिस कल्चर से वो लोग आ रहे होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आप हर जगह जाएंगे, वो हर जगह के अपने रूल्स और अपनी ट्रेडिशंस होती हैं, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सबसे पहले, और आपको अडेप्टेबल होना चाहिए, और ताकि आप इजीली चीज़ों को या उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सके। और दूसरी ये चीज़ के आप ये देखें कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए अपनी लाइफ में, और इतनी जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए, आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। आपको लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, वर्क एनवायरनमेंट आपको ऑब्वियसली डिफरेंट लगेगा, ऑफकोर्स कल्चरल काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आप अगर अपनी उस चीज़ से नहीं निकलेंगे कि मैं इस तरीके से काम करता था या किसी और तरीके से, तो मैं अगर आपके अंदर चेंजिंग के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप फिर नहीं कामयाब हो सकते। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आपके अंदर हमेशा दो चीज़ें होनी चाहिए, कि आपको अडेप्टेबल होना चाहिए कि किस भी तरह का एनवायरनमेंट होगा हमें उसमें अडेप्ट अपने आप को करना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।
1: वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सिद्धरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कहानी और अपने जो जिंदगी के जज्बात हैं और वाकये हैं और मुख्तलिफ लर्निंग जो हैं हमारे साथ शेयर करी, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।
2: बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सब भी बस इतना याद रखिए, और आपसे यही कहना है कि जिंदगी के हर सफर में, हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर ही नहीं लिखता, कहानी आप भी लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
0: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार। नव
4: Anytime, anywhere.
5: Yes, anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: बाबा की याद आए, सब बहन भाई मिलकर बैठ जाएं, तो एहसास होगा कि किसी के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी की बातों में बाप का लहजा सुनाई देगा। याद रखिए, जिस बाप को माँ बाप ने अपने खून जिगर से सींचा, वो कब उजड़ सकता है? तबाह तो हम उसको कर देते हैं नफरतों, हसद, खुदगर्जी और मतलब परस्ती के हाथों। अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से प्यार कीजिए, यकीन जानिए दुनिया जन्नत बन जाएगी।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है, तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
5: It's Kaz on the beat.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
2: टॉप 10 काउंटडाउन।
3: हाँ जी, तो हमने जो है चूल्हा तैयार कर लिया है, अभी इस पे सिकने वाला है बहुत कुछ। बहुत सारे गाने इस पे ग्रिल किए जाएंगे और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बेचारे थोड़े पुराने हो चुके हैं, बासी हो चुके हैं हमारी लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, सो ये जो गाने मैं आज आपको देने वाला हूं उसके लिए तैयार हो जाइए। दिस इज टॉप 10 दिस वीक ओनली ऑन FM 107। मैं हूं दुहा वाला कबीर आपके साथ। बिफोर आई बिगिन, आपको पता है हमारा रूल क्या है, ये जो गाने हम इस लिस्ट में शामिल करते हैं, देखो मुश्किल हो जाता है अगर 10-20 गाने एक साथ लॉन्च हो जाएं, जो अभी आतिफ असलम ने किया, तो लिस्ट में सारे गाने तो नहीं हो सकते। तो कुछ ही गाने बेस्ड ऑन देयर नंबर, बेस्ड ऑन द रिप्लेबिलिटी, बेस्ड ऑन स्ट्रीम्स एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, तभी गाने शामिल होते हैं। सो आपको 666-22107 में मैसेज कर देना या फिर आप सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा गाना आपको लगता है कि लिस्ट में होना चाहिए और कौन सा लिस्ट में नहीं होना चाहिए या फिर कौन से पायदान पे होना चाहिए। ये सब कुछ आप डिसाइड करेंगे। यू आर द जज, यू आर द ज्यूरी ऑफ दिस शो। मेरा क्या है जी, मेरा नाम तो कबीर है, ठीक है, मुझे क्या करना है, कबीर क्या करेगा, कबीर आपको बताएगा कि कौन कौन से गाने टॉप 10 की लिस्ट में हैं। इस बार लिस्ट में थोड़ा बहुत चेंज आया है और ये चेंज बड़ा सरप्राइजिंग है और कुछ सरप्राइजिंग नहीं भी है, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट दिस वीक। तो शुरुआत करेंगे 10, 9 और 8 से एज वी नो, और उसके बाद विल गो अप द लैडर सीधा गाना नंबर 1 तक। ठीक है, तो गाना नंबर 10 की शुरुआत, एक नई एंट्री आई है और ये गाना मुझे पूरे यकीन है कि लिस्ट में ऊपर जाने वाला है। मैं अक्सर कहता हूं कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनकी मौसीकी, जिनकी अदायगी बदलती नहीं है, सालों साल नहीं बदलती, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, नथिंग रॉन्ग, क्योंकि कुछ म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं कि वो अपने स्टाइल को ना बदले तो उनके लिए बेहतर है ना, वो चलते रहते हैं, उनकी दुकान चलती रहती है, उनके गाने बिकते रहते हैं एंड वो अपनी जगह अपने करियर में एकदम सेटल हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोमिनेंट नाम है आतिफ असलम का। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आतिफ असलम। आतिफ असलम की आवाज अपने आप में यूनिक है, वो कुछ भी गा दें बिना माइक के, बिना म्यूजिक के, वो तब भी अच्छा लगेगा, बिना म्यूजिक और साथ में माइक के गा दें तब भी अच्छा लगेगा। यू ट्रीट हिज वॉइस इन विच एवर वे यू वॉन्ट, रिवर्ब लगाइए, कुछ भी लगाइए, गुफा का इफेक्ट लगा दीजिए, तब भी आतिफ असलम आपको अच्छे सुनाई देंगे, बिकॉज आतिफ असलम की जो अदायगी है, जिस तरीके से वो सुर लगाते हैं, जिस तरीके से वो गाना गाते हैं, वो अपने आप में इतना यूनिक है कि nobody else does it the way he does। बाकी कोई करता भी तो लोग कहते हैं आतिफ असलम जैसा साउंड कर रहा है। तो इतने ह्यूज कॉम्प्लीमेंट और इतने सेटल्ड करियर के बाद आतिफ असलम ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, बिकॉज ही डिड अ ग्रेट ग्रेट जॉब विद इट। आतिफ असलम साहब ने जो है अभी रिसेंटली वो कर दिखाया जो मेरी सिंगर से उम्मीद थी, और वो थी एक एल्बम लॉन्च करना। आपको याद है मैं कंप्लेन कर रहा

था कि यार ये पॉप सिंगर्स क्यों नहीं निकाल रहे एल्बम, सारे के सारे रैपर्स तो निकाल रहे हैं, तो आतिफ असलम को ऐसा क्या हो चुका है या और सिंगर्स हैं वो क्यों नहीं निकाल रहे? तो रिसेंटली हुआ ये कि आतिफ असलम ने लॉन्च करी है अपनी एक एल्बम जिसका नाम है सुबह आए ना। एंड पता नहीं शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई, आई एम रियली हैप्पी दैट इट डिड इट। आतिफ असलम की सुबह आए ना जो एल्बम है उसके कई सारे गाने हैं, मैंने अपनी तरफ से गाना चुना है नंबर 10 पे और ये आगे जाएगा क्योंकि इसमें आतिफ असलम ने अपने आप को चेंज किया। ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक सिंगर एक मुकाम पे पहुंचने के बाद ये डिसाइड करता है कि नहीं मैंने मुझे कुछ नया भी ट्राई करना है। एंड गाना नंबर 10 है लेट्स हैव सम फन, ये गाने का नाम है, आतिफ असलम की आवाज है सुबह आए ना। अभी किसी गाने का वीडियो नहीं आउट हुआ है, सारे गानों के कवर्स बने हुए हैं, आतिफ असलम उसमें चेयर पे बैठे हुए हैं, ब्लू रंग है, बड़ा ही खूबसूरत एल्बम आर्ट है और एल्बम आर्ट में उर्दू में लिखे हुए गानों के नाम, वन ऑफ अ काइंड थिंग है। मैंने इससे पहले पता नहीं किसी को शायद देखा भी नहीं है सब करते हुए जो आतिफ असलम कर रहे हैं। तो ये जो गाना नंबर 10 पे मैं डाल रहा हूँ आतिफ असलम का गाना, इसका नाम है लेट्स हैव सम फन एंड गाना सच में बहुत फन है। मुझे बीच में ऐसा लगा आतिफ असलम रैप कर रहे हैं क्या भाई मैंने ये स्टाइल नहीं सोचा था आतिफ असलम से, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं वो कोई बुरा स्टाइल, आई डोंट लाइक इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, लव्ड इट। आतिफ असलम ने जो गाने के बीच बीच में नुआंसेस दिखाए हैं वो भी ऐसे किया है जैसे रैप कर रहे हैं, भाई कोई नहीं कर सकता। मुझे एक पल को टेंशन हो गया, मैंने कहा अरे आतिफ भाई रैप की मार्केट में उतर के आ गए। गाना बेहद खूबसूरत है, गाने को जिस तरीके से आतिफ असलम ने गाया है वैसे गाना भी मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहां पे कौन सा ब्रेक लिया है इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड इसी वजह से आई थिंक इनकी एल्बम चलेगी और एल्बम में जो बाकी सारे गाने ऑफकोर्स वो बहुत प्यार भरे गाने हैं, कुछ गाने बहुत ज्यादा दुख भरे भी हैं, मगर आतिफ असलम हैज डन इट अगेन एंड इस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इतने सालों बाद उन्होंने अपने स्टाइल को थोड़ा सा बदला है एंड आई एम गिविंग हिम 10 ऑन 10। ये गाना भी चढ़ेगा, फिलहाल नंबर 10 पे एंट्री लिए लेट्स हैव सम फन आतिफ असलम की आवाज में। और गाना नंबर 9 ये भी लिस्ट में शामिल है क्योंकि इस पे रीले बन रही हैं, रील में अगर कुछ भी ऑरा फार्मिंग हो रही है, लोग कुछ बहुत ही बड़ा सा कुछ कर रहे हैं, ऑरा दिखा रहे हैं, एटीट्यूड है, तो ये गाना बैकग्राउंड में चलता हुआ नजर आ ही जाएगा। और ये गाना भले ही बहुतों के समझ में आया जो हिप हॉप लिसनर्स नहीं है, बट दे आर स्टिल फाइंडिंग इट रियली रियली नाइस। तो गाना नंबर 9 पे है बूम शाकलाका। तो ये गाना है कृष्णा के आर डॉलर साइन और साथ में ढाणा न्योली वाला, हरियाणवी ट्रैक है लेकिन आपको भर भर के रीलों पे दिखेगा, ये भर भर के कहीं पर भी कुछ एटीट्यूड वाली चीज दिखाई जा रही है, कहीं पे ऑरा फार्मिंग हो रही है। अभी रिसेंटली मैंने ये बैकग्राउंड में चलते हुए देखा जब सलमान खान ने एक बड़े से शो अलायंस में एंट्री ली तो बैकग्राउंड में यही गाना चल रहा था। सो इसका जो पैपी म्यूजिक है, इसका जो हुक है, डिस्पाइट बीइंग अ हिप हॉप ट्रैक ये हर जगह चल रहा है, हर जगह। एंड पीपल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ढांडा न्योड़ी वाला और कृष्णा का कोलैब अपने आप में यूनिक है, दोनों साथ में आएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था, बट थैंकफुली दे डिड। एंड गाने में एक लाइन है, ढांडा भाई बोलते हैं कि जब हम दोनों एक गाने पे एक ट्रैक पे तो लगे मोटा पीसा, तो मोटा पीसा तो लगा भाई इस पे, बढ़िया करके लगाया और गाना शूट भी बहुत बढ़िया हुआ और गाना लिस्ट में कहीं नहीं जाने वाला। सो बूम शाकलाका ऑन नंबर 9 ऑन द लिस्ट जस्ट बिकॉज और क्या, गाने ने भाई आग ला रखी है, गाना नंबर 9 है ये। हाँ अब जरा गाना नंबर 8 की बात कर लेते हैं। गाना नंबर 8 जो है ये एक सरप्राइज एंट्री है, वाइल्ड कार्ड है ये सीधा नंबर 8 पे। व्हाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि मैं फैन हूं उस सिंगर का जिसने इसको निभाया है, आदित्य रिखारी। आदित्य साहब जो हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे अपने करियर को ऊपर ले जाते चले जा रहे हैं, आई कैन ओनली विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड उनके साथ भी वही चीज है जो आतिफ असलम के करियर के इनिशियल में थी। आतिफ असलम को बस फायदा ये था उस टाइम पे क्या, आतिफ असलम एक बैंड से आए थे और ऑलरेडी बहुत फेमस थे और अब तो मतलब मेगा स्टार बन चुके हैं पॉप इंडस्ट्री के, लेकिन वैसे आदित्य खारी के साथ है। आदित्य के पुराने गाने या नए गाने, कोई भी गाना उठाइए आप, उसमें कोई कमी नहीं लगी। कुछ सिंगर्स होते हैं ना कि आप बोलेंगे यार मैं इसका फैन अभी तक बना तो नहीं हूं, मगर जब मैं इसके गाने सुन रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं इसका फैन क्यों नहीं हूं, इतना बढ़िया तो गा रहा है ये। एंड इवेंचुअली यू बिकम अ फैन। सो आई एम अ फैन ऑफ आदित्य रिखारी। रोचक कोहली के साथ मिलकर, रोशनी वालिया के साथ मिलकर ये गाना उन्होंने तैयार किया है। गाने का नाम है बूहे बारियां।

एंड गाना ऑफिशियल वीडियो के साथ लॉन्च हुआ है, तो सिर्फ ऑडियो नहीं है, वीडियो भी अवेलेबल है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट जिस तरीके से उन्होंने गाने को गाया और वो है बारियां जो उन्होंने यूज किया. अरे रे रे रे रे रे रे भाई, द क्लासिकल वेस्टर्न वाइब, द होल ट्रैक इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड क्रेजी. और मैं वेट कर रहा था कि आदित्य के पिछले गाने जो मिलियंस में गए हैं उसके बाद वो क्या करने वाले हैं यूनिक, बिकॉज बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंट करना जब आपके पुराने गाने को इतना प्यार मिले कि ऑडियंस सिर्फ वही सुनना चाहती है और दूसरा कुछ भी नहीं सुनना चाहती. आदित्य हैज टर्न द टेबल अराउंड एंड ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ सो वेल कि ये गाना सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ आ चुका है गाना नंबर 8 बन के. तो ये थे कुछ गाने, कुछ क्या, 3 गाने, 10, 9 और 8 के एक रिविजन कर लेते हैं. गाना नंबर 10 लेट्स हैव सम फन, आतिफ असलम. नंबर 9 पे बूम शाकालाका, ढाणा न्यूलीवाला और क्या डॉलर साइन कृष्णा. और नंबर 8 पे है बोहे बारियां, रोचक कोहली और आदित्य रिखारी की आवाज. एंड इट्स जस्ट अमेजिंग मैन. आज के लिए बहुत कर रही होने वाली, बहुत कर रही, जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड. FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे. दिस इज टॉप 10 दिस वीक. और अब वक्त आ गया है गाना नंबर 7, 6 और 5 का. तो गाना नंबर 7 जो है डांडा न्योली वाला अगेन, ये गाना अपनी जगह नहीं छोड़ेगा. अभी मैंने पिछली बार उसकी तारीफ करी थी, अभी भी करूंगा लेकिन अलग तरीके से करूंगा. एक ना, जब क्योंकि मैं रैप लिखता हूं तो मैं इतना जानता हूं कि बिना बीट के रैप करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो ट्यून्ड इन होता है कि भाई बीट आएगी, बीट के हिसाब से, मीटर के हिसाब से आप गाना गाएंगे. मगर ईडीएम म्यूजिक के साथ, जब आप इलेक्ट्रो म्यूजिक के साथ खेल रहे हैं और उसमें आप कुछ पॉप म्यूजिक बना के उसमें रैप भी कर दें, ये फ्यूजन बहुत कम लोग कर पाते हैं. आई हैव सीन दिस विद प्रोफेसी, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं वो. और इस गाने में जो गाना नंबर 7 है, इसमें मैंने ढांडा भाई को करते हुए देखा है. गाने का नाम है दिल दे बैठी. तो गाना हालांकि ईडीएम म्यूजिक बना हुआ है, आपको लगेगा पार्टी नंबर है, पर गाने में बहुत गहरी गहरी शायरी, बहुत गहरी गहरी पोइट्री, बहुत ही गहरा रैप है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार, क्या बना दिया ढांडा भाई. और ऊपर से इस गाने का वीडियो भी आउट है, तो आई रियली अप्रिशिएट कि लोग इतनी मेहनत करते हैं कि हर गाना, पूरी उनकी ईपी लॉन्च हुई है, हर गाने का वीडियो उन्होंने अपलोड किया है. आई एम नॉट सरप्राइज यार, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है. नंबर 7 पे है दिल दे बैठी ढांडा न्योली वाले का गाना. एंड ये आप डेडिकेट कर देना फौरन, तुरंत से पहले, ठीक है. अब आ जाते हैं गाना नंबर 6 पे, जैक नाइट इज रिटर्निंग. जैक नाइट के साथ भी वही एक मुझे रिक्वेस्ट है, इशू कहने वाला था मैं, इशू नहीं है, रिक्वेस्ट है कि वो भी एल्बम निकालें. बिकॉज जैक नाइट के अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो बैंगर्स पे बैंगर्स पे बैंगर्स दे सकते हैं. एंड उनका गाना मुझे लगता नहीं कि कोई भी गाना ऐसा होगा जिसमें जैक नाइट कम मेहनत करेंगे और वो नहीं चलेगा, अंडररेटेड रहेगा. ऑल्दो आई स्टिल फील जैक नाइट बहुत अंडररेटेड है, उन्हें और भी ज़्यादा शोहरत और भी ज़्यादा काम मिलना चाहिए. एंड ही हैज़ डन अ लॉट फॉर द इंडस्ट्री. आपको याद है वो मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, नहीं सोनू की टीटू की स्वीटी, शायद इन दोनों में से किसी एक में इनका गाना है. एंड बहुत बढ़िया गाया है. तो ये गाना तो नंबर 6 पर है, इसका नाम है क्या तेरी, ये गाने का नाम है. क्या तेरी आंखों ने ढूंढा मुझे. गाना जो है बहुत से शूट हुआ है. गाने को शूट करने का तरीका मैं सोच रहा था कि सीजीआई है कि क्या है, बट आई स्टिल बिलीव कि उन्होंने कुछ जगह पर रियल लोकेशन शूट करी है. भाई अगर रियल लोकेशन है पूरी तरह से तो मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा शूट किया है, बहुत अच्छा शूट किया है. और इवन इफ इट्स विजुअली सो इफेक्टिव, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा. सो गाना नंबर 6 इसीलिए है क्या तेरी, जैक नाइट की आवाज में. अब गाना नंबर 5 पे जाते हैं. गाना नंबर 5 में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने वाला वो शख्स जिसकी तारीफों को मैंने पुल बांध दिए, ये भी हैं आतिफ असलम ही. यहां पर भी आ गए वो. तो आतिफ असलम ने सीधा 9 और 5 पे एंट्री मारी है, सॉरी 10 और 5 पे एंट्री मारी है. एंड एट नंबर 5 इज सच्चे वादे.
2: सच्चे वादे क्यों तोड़े थे, मोड़े थे तुम जल्दी.
1: जितने भी टूटे दिल के लोग हैं, आशिक हैं, अगर वो एक ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सा सैड गाना, एंड यू कैन नॉट वेट फॉर आवारापन टू ड्रॉप, तो ये गाना अभी भी सुन लीजिए. गाने का नाम है सच्चे वादे, आतिफ असलम की आवाज में. इट्स अ मेलोडिक ट्रैक, इट्स अ वेरी सटल ट्रैक, प्यार मोहब्बत की शिकवों की बातें करता है. और बहुत प्यारी शायरी है, आतिफ असलम ने निभाया भी बेशक, बहुत जबरदस्त है. एंड ये गाना है एट नंबर 5 On the list. अब देखिए एक रिविजन कर लेते हैं गाना नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5 का. अभी तक नंबर 10 पे लेट्स हैव सम फन आतिफ असलम, नंबर 9 पे बूम शाकलाका, नंबर 8 पे बोहे बारियां, नंबर 7 पे दिल दे बैठी ढांडा भाई का गाना, और नंबर 6 पे क्या तेरी जैक नाइट, एंड नंबर 5 पे है सच्चे वादे आतिफ असलम की आवाज में, विच इज द वाइल्ड कार्ड एंट्री एट नंबर 5 ऑन द लिस्ट. और आपको कहीं जाना नहीं है, बढ़िया जगह पर हैं आप, स्टे ट्यून्ड.
0: FM 107 टॉप 10 नंबर 7.

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamu alaikum. Main Duha wala Kabir FM 107 pe, and we are back at it. Top 10 this week. एक रिमाइंडर करा दूं भाई, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar है, FM107 Qatar. प्लीज प्लीज प्लीज हमसे जुड़िए. मैं इतना प्लीज इसे लगा रहा हूं क्योंकि आप लोग वीडियो से देख लेते हैं, कई मरतबा लाइक नहीं कर पाते हैं, भूल जाता है और पेज ऐसे रह जाता है. सो प्लीज हमसे जुड़िए, लाइक का बटन दबाइए. वाई एम आई टॉकिंग लाइक एन इंस्टाग्रामर? नहीं नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे दिल से कुछ भी तो सोशल मीडिया पर जरूर आइएगा. अच्छा, तो गाना नंबर 4, 3 और 2 की बारी आ गई है भाई. गाना नंबर 4 अपनी जगह पर टिका हुआ है. न्यूमरस रील्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हु वांट टू लर्न द कोरियोग्राफी ऑफ द ट्रैक. दिव्या गोयल जिन्होंने इस डांस की कोरियोग्राफी करी है वो ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुकी हैं. मैं बात कर रहा हूँ चरणप्रीत और बादशाह के गाने का, बन जा तू मेरी. काश आवाज होती भाई साहब, मैं ये पूरा कवर गा देता. बहुत बहुत बहुत बढ़िया वाइब है इस गाने की. गाने की फील बहुत बढ़िया है. आसी ने डांस बहुत अच्छा किया है, कोरियोग्राफी ऑन पॉइंट है, लिरिक्स ऑन पॉइंट है, एंड सबसे बड़ी बात इसका कैची हुक, ये जब चलता है तो नहीं रुका जाता भाई. तो बन जा तू मेरी एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट. मूविंग ऑन. गाना नंबर 3, फिर से डांडा भाई आ गए. डांडा भाई ने कब्जा कर लिया भाई, कब्जा कर लिया है पूरी तरह से. गाना नंबर 3 है जगाने. डांडा डांडुली वाले की आवाज में, और इस गाने में एक लाइन है जो बड़ी खास है कि दुश्मन चाहे लड़की की हो, मारे घर महफूज मिलेगी. ओए भाई यार, क्या लाइन है, क्या लाइन है. और बहुत सारी ऐसी शायरी है जो हरियाणवी में है, लेकिन अगर आप एक दो बार सुनेंगे तो यू विल बी एबल टू कैच इट. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक, तो जरूर जरूर देखिएगा. जगाने, गाने का नाम है ZIGNE, और ये जो डांडा भाई ने परफॉर्म किया है बहुत जगह पर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, एंड ये गाना प्योर शॉट हिट है. बढ़ते हैं आगे. गाना नंबर 2, जिससे मुझे है शिकायत और जिससे है मुझे प्यार, दोनों चीजें एक ही के साथ हैं. और ये इसलिए क्योंकि ये जो है ना गाना, ये है आवारापन 2 से. तो मेरी एक शिकायत रही है मेकर से कि भाई आप मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग चाहिए. मैं मानता हूं इमरान हाशमी के नाम में सब कुछ भेज देना चाहते हैं वो लोग, बट स्टिल दे रियली नीड टू डू सम चेकिंग. और ये समझें इस बात को कि ऑडियंस को इंतजार है. सो गाना नंबर जो 2 है वो है वे जुनून आवारापन 2 से. एंड बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है शर्मा जी ने, तो बहुत बढ़िया गाना है. अब बारी आ चुकी है गाना नंबर 1 की. आई होप यू आर रेडी फॉर दिस. गाना नंबर 1 जो है उसकी तारीफ में मैं क्या कहूँ. मैं आतिफ असलम का फैन हूँ, मैं अरिजीत सिंह का फैन हूँ, एंड ऐसे बहुत सारे पॉप सिंगर्स हैं जो अपनी आवाज़ को लगातार मॉड्यूलेट करते हैं, लगातार चेंज करते हैं, अपनी आवाज़ को तोड़ते हैं, बनाते हैं और फिर जाके सुर लगते हैं, एंड आपको बैठने मजबूर कर देते हैं कि नहीं यार पहले ये सुन लूँ फिर मैं यहाँ से निकलूँगा. तो गाना नंबर 1 जो है जो सीधा टेक ऑफ कर चुका है और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, वो बड़ा ही खास है, एंड दैट इज ये

तो अवारा पन टू के मेकर्स मेरी आवाज उन तक पहुंचा दो प्लीज, उनको बोलो एक दो टीजर तो डाल दें कम से कम, पिक्चर ना डालें तो पिक्चर से पहले ट्रेलर तो आए, टीजर डाल के भूल गए विशेष फिल्म्स वाले। बट एनीवे ये थी आज की हमारी टोटल लिस्ट, अब बारी आपकी है सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए FM 107 Qatar, आप उनसे जुड़िए, प्लीज गेट इन टच विद अस। आपको कोई गाना आपको पसंद है जो आप लिस्ट में चाहते हैं तो भी बताइए, कोई गाना ऐसा है जो आप गाने से लिस्ट से निकाल देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पूरी लिस्ट को एनालाइज करके कौन सा गाना कौन से नंबर पे होना चाहिए। सो इट विल बी अ फेयर थिंग टू डू एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व किया जाए, बहुत बहुत बहुत जरूरी है। और 14 तारीख को रिलीज हो रही है आवारापन 2 और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, तो देखते हैं क्या होगा। बट फिलहाल ये था गाना नंबर 1 ऑन द लिस्ट, ये आवारापन 2 से। एंड ऑन दैट नोट सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज हमसे जुड़ जाइए। एंड बाकी बातें तो होती रहेंगी, ऐसे भी करते रहा करें, मेरे शो में आइए, सुबह आइए शाम में आइए, एंड बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार आपको। ओके एंड ऑन दैट नोट दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलाम। FM 107

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। FM 107

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, हम सबको अपने घर फ्रेश और खुशगवार महकते हुए पसंद है कि नहीं? मुझे तो है भाई। जब हम घर में एंटर करते हैं ना, तो अच्छी सी फ्रेग्रेंस महसूस होती है, तो कितना अच्छा सा अलग सा सुकून लगता है। हाय हाय हाय। इसीलिए बहुत से लोग मार्केट में मिलने वाले एयर फ्रेशनर्स, स्प्रेज और सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ताकि घर की स्मेल फ्रेश रहे। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस का एनवायरमेंट और हमारी हेल्थ पर क्या असर होता है? क्या घर को फ्रेश रखने के लिए हमेशा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं मानती भाई। तो भाई, मैंने सोचा क्यों ना आज का इको स्विच इसी बारे में बात करे, नेचुरल एयर फ्रेशनर्स, यानी घर की हवा को फ्रेश रखने के लिए कुदरती और बेहतरीन तरीके। देखिए, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं साथियों। मार्केट में अवेलेबल बहुत से एयर फ्रेशनर्स, स्प्रेज और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इन स्प्रेज को यूज करते हैं तो उनकी खुशबू हवा में फैल जाती है। कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से डिस्कम्फर्ट भी महसूस होता है, मेरी तरह, जैसे स्मेल से इरिटेशन या एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, खास तौर पर प्लास्टिक बॉटल्स और एरोसोल कैंस, वेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। एक और बात ये भी है कि हम अक्सर बुरी स्मेल को सिर्फ फ्रेग्रेंस से कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि असल सॉल्यूशन सफाई होता है, वेंटिलेशन होता है और फ्रेश हवा होती है। तो क्यों ना हम ऐसे तरीके अपनाएं जो घर को फ्रेश भी रखें और एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जाए। तो भाई, आज का सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है? यानी कि नेचुरल एयर फ्रेशनर्स के लिए कुछ सिंपल आइडियाज। साथियों, पहली चीज तो ये, इंडोर प्लांट्स लगाएं। प्लांट्स सिर्फ घर की ब्यूटी नहीं बढ़ाते, बल्कि घर में नेचुरल फ्रेशनेस भी क्रिएट करते हैं। ग्रीन प्लांट्स घर के एटमॉस्फेयर को ज्यादा प्लेजेंट बना सकते हैं। दूसरी चीज ये कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करें।

0: नेचुरल चीजें घर में अच्छी फ्रेग्रेंस ला सकती हैं, जैसे कि लेमन के छिलके, सिनेमन स्टिक्स, फ्रेश फ्लावर्स, कॉफी बीन्स, ड्राइड हर्ब्स। इन्हें बोल या डेकोरेटिव जार्स में रखें और नेचुरल फ्रेग्रेंस का मजा लें। ये नेचुरल फ्रेग्रेंस क्रिएट करती हैं। फ्रेश एयर को अंदर आने दें, यानी कि कभी कभी घर की स्मेल को फ्रेश करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि विंडोज खोले ना भाई, जो आपके घर में हवा बंद है उसको बाहर निकलने का रास्ता दें। अच्छी वेंटिलेशन घर को नेचुरली फ्रेश रखने में मदद करती है। अच्छा, चौथी चीज ये कि बेकिंग सोडा का स्मार्ट यूज करें। बेकिंग सोडा कुछ जगहों पर अनवांटेड स्मेल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकता है। इसे फ्रिज या किचन के कुछ एरियाज में यूज किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम रेमेडीज नेचुरल स्प्रे में अप्लाई करें, यानी कि आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने घर या आप कह लें कि होममेड रूम स्प्रे बना सकते हैं। जैसे पानी के साथ लेमन या नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करें, एक लाइट फ्रेग्रेंस क्रिएट कर सकती है भाई ये चीज। अच्छा, अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए तो भाई बहुत से लोग अपने घरों में नेचुरल फ्रेग्रेंस सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर रहे हैं अभी। कुछ फैमिलीज किचन में लेमन के छिलके वेस्ट करने के बजाय उन्हें नेचुरल फ्रेशनेस के लिए यूज करती हैं। मैं भी यही काम करती हूँ। कुछ लोग लिविंग रूम में फ्रेश फ्लावर्स या इंडोर प्लांट्स रखते हैं। कुछ लोग मार्केट के स्ट्रॉन्ग स्प्रेस की जगह होममेड सॉल्यूशंस प्रेफर करते हैं। ये छोटी छोटी चेंजेस जो होती है ना, वो घर को कभी कभी खूबसूरत भी बनाती है और अननेसेसरी केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कम किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि नेचुरल फ्रेग्रेंस अक्सर ज्यादा सिंपल और सूदिंग फील कराती है, स्पेशली माई फेवरेट, ओ माई गॉड, लेमन का छिलका। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि आज आप अपने घर में एक नेचुरल फ्रेग्रेंस आइडिया ट्राई करें, चाहे वो एक प्लांट लगाना हो, चाहे वो एक फ्रेश फ्लावर रखना हो, या कोई होममेड नेचुरल सॉल्यूशन बनाना हो। और हमें जरूर बताएं आपके घर में कौन सी खुशबू आपको सबसे ज्यादा पसंद है, फ्लावर्स, स्पाइसेस या फ्रेश एयर की नेचुरल स्मेल। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, फ्रेश घर के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स की जरूरत नहीं होती, कभी कभी नेचर का सिंपल टच ही काफी होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देश से।
1: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। यहाँ दोस्तों, कतर का नुमाया एमेचर गोल्फर्स में अली अब्दुल्ला अल शहरानी का नाम बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन गोल्फ स्किल्स की बदौलत मुल्क और बैन अवी सतह पर कतर का नाम रोशन किया है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2021 में आई जब उन्होंने कतर ओपन एमेचर चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस कामयाबी के साथ वो 1986 के बाद पहले कतरी गोल्फर बने जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट अपने नाम किया। इसी साल अली अल शहरानी ने सऊदी ओपन में भी शानदार परफॉर्मेंस दी और रनर अप रहे। उनकी मुसलसल बेहतरी ने उन्हें गल्फ रीजन के उभरते हुए गोल्फर्स में शुमार कर दिया। बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से उन्हें कतर मास्टर्स में हिस्सा लेने का भी मौका हासिल किया, जहां उन्होंने दुनिया के टॉप प्रोफेशनल गोल्फर्स के साथ खेलकर कीमती तजुर्बा हासिल किया। बाद में उन्होंने कतर की नुमाइंदगी 2022 आइजनहावर ट्रॉफी, जो वर्ल्ड एमेचर टीम चैंपियनशिप है, उसमें भी शिरकत की। अली अब्दुल्ला शहरानी की कामयाबियां साबित करती है कि कतर में गोल्फ का मयार तेजी से बुलंद हो रहा है। उनकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और मुसलसल मेहनत नई जनरेशन के गोल्फर्स के लिए एक मिसाल है। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वो इसी तरह मेहनत जारी रखें तो मुस्तकबिल में प्रोफेशनल गोल्फ के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में भी कतर का परचम बुलंद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One step to 2030.
1: आज के सेगमेंट पे दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की. क्लाउड टेक्नोलॉजी किस तरह कंपनीज को फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बना रही है. देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग ने बिजनेस ऑपरेशंस का तरीका ही बदल दिया है. पहले कंपनीज को अपने ऑफिसेज में एक्सपेंसिव सर्वर्स और हार्डवेयर मेंटेन करने पड़ते थे. आज क्लाउड की वजह से डेटा और एप्लीकेशंस इंटरनेट के जरिए कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है. अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी एक ऑनलाइन स्टोरेज है और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज अपना डेटा सिक्योर रख सकती हैं और जरूरत के मुताबिक रिसोर्सेज यूज कर सकती हैं. देखिए, कोविड के दौरान इसका सबसे बड़ा फायदा देखने को मिला. जब इम्प्लॉयज घर से काम कर रहे थे, क्लाउड टेक्नोलॉजी ने उन्हें ऑफिस सिस्टम्स तक रिमोट एक्सेस दिया. मिसाल के तौर पे, अगर एक रिटेल कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हो, तो क्लाउड सिस्टम हर ब्रांच का सेल्स डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम शो करके दिखा सकता है. इससे मैनेजमेंट को फास्टर और बेटर डिसीजंस लेने में मदद मिलती है. क्लाउड का एक और बड़ा फायदा है, अगर बिजनेस ग्रो करें तो कंपनी एडिशनल रिसोर्सेज फॉरन ऐड कर देती है, वो भी बिना नए हार्डवेयर खरीदे. क्लाउड कॉस्ट को भी कम करता है और बिजनेस कंटिन्यूटी को भी इम्प्रूव करता है. क्लाउड टेक्नोलॉजी बिजनेस को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है. इसीलिए फ्यूचर की सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड फर्स्ट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रही हैं. आज के इस फास्ट मूविंग बिजनेस दुनिया में कंपनीज को स्पीड चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और क्लाउड इन तमाम चीज़ों को पॉसिबल बनाता है. पहले अगर किसी कंपनी को नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था या स्टोरेज बढ़ानी होती थी, तो उसे नए सर्वर्स और हार्डवेयर्स पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था. लेकिन आज क्लाउड की वजह से कंपनीज अब सिर्फ उतने रिसोर्सेस के पैसे देती हैं जितनी उनकी जरूरत होती है.

0: और इस मॉडल को पे एज यू यूज कहा जाता है और ये मॉडल बहुत सारी कंपनीज अडॉप्ट कर चुकी हैं जो बिजनेसेस के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव है. वहीं क्लाउड का एक सबसे बड़ा फायदा है कोलैबोरेशन. आज एम्प्लॉइज दुनिया की किसी भी हिस्से से काम कर सकता है और रियल टाइम में एक ही डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट या सिस्टम पर मिलकर काम किया जा सकता है. इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिसीशन मेकिंग फास्टर हो जाती है. मिसाल के तौर पे अगर कतर में किसी रिटेल कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो मैनेजमेंट क्लाउड डैशबोर्ड के जरिए हर ब्रांच की सेल, हर ब्रांच की इन्वेंट्री और कस्टमर ट्रेंड्स को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं. इससे बिजनेस को मार्केट चेंजेस का फौरन पता चल जाता है और टाइमली डिसीजंस लिए जा सकते हैं. क्लाउड इनोवेशन को भी सपोर्ट करता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आसानी से इंटीग्रेट की जा सकती हैं और इस वजह से छोटी और मीडियम साइज कंपनीज भी वही एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर सकती हैं जो पहले सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशंस अफोर्ड कर पाते थे. आने वाले सालों में क्लाउड फर्स्ट स्ट्रेटजी, जी हाँ, क्लाउड फर्स्ट, पहले हम कहते थे लेडीज फर्स्ट, अब कहेंगे क्लाउड फर्स्ट, ये स्ट्रेटजी हर सक्सेसफुल बिजनेस की प्रायोरिटी होगी. जो ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड को अडॉप्ट करेंगी वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव और कस्टमर फोकस्ड होंगी. अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो मैं यही कह सकती हूं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी सिर्फ आईटी सॉल्यूशन नहीं है बल्कि ये बिजनेस ग्रोथ, इनोवेशन और फ्यूचर सक्सेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी है. वेल, आज के लिए दोस्तों इतना ही. मुझे याजिया और शकीब अहमद, हम दोनों की इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी. One step to 2020.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि सबको अपने रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेफ एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपना कर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस सब कुछ मिलेगा यहाँ कुछ मिलेगा यहाँ ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है MOI वीकली अपडेट आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर डोंट मिस इट
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का नए जमाने के नए स्कैम्स के बारे में। हर हफ्ते मैं आता हूँ और आपको नए स्कैम्स या फ्रॉड के बारे में अवेयर करता हूँ, और इस हफ्ते भी एक ऐसे ही स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल्दो ये स्कैम आपके साथ कतर में हो या ना हो, लेकिन आपके अपने मुल्क में या फिर जो खेती से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस तरह का स्कैम होना आसान होता है या के साथ स्कैम हो सकता है। तो इसलिए ये आपके लिए नहीं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर के लिए या फिर आपके अपने घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर को इस तरह के स्कैम के लिए अवेयर जरूर करना चाहिए। वेल, ये है फेक स्मार्ट एग्रीकल्चरल IoT डिवाइस स्कैम, जो आमतौर पे गांव के एरियाज में ज्यादा होता है। रूरल एरियाज के फार्मर्स को टारगेट करने के लिए स्कैमर्स मॉडर्न स्मार्ट IoT एग्रीकल्चर डिवाइस जैसे कि सॉयल टेस्टर या ऑटोमेटेड वाटर कंट्रोलर्स सस्ते दाम पर बेचने आते हैं। वो दिखाने के लिए एक सस्ती या नकली मशीन दे देते हैं और कहते हैं कि इसका हाईटेक सॉफ्टवेयर एक्टिव करने के लिए अभी कार्ड स्वाइप करें या एडवांस पेमेंट जरूर करें। एडवांस लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं और डिवाइस बिल्कुल कचरा निकलती है, और आप उनको पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही कोई ऑफिस है, तो ऐसे लोगों को आप सामने से पकड़ भी नहीं सकते। इसकी एक और वजह ये भी है कि जब वो आपको डिवाइस देते हैं, वो डिवाइस कुछ वक्त बाद आपको कहते हैं कि एक्टिव होगी, जो कि कंपनी से एक्टिव होती है, और वो दुनिया भर की चीजें बताते हैं, लेकिन ये तब कहते हैं जब आप पेमेंट करेंगे तब, यानी कि पेमेंट करने के बाद ये डिवाइस एक्टिव होगी, और वो यानी कि वो शख्स जो आपको डिवाइस बेचने आए वो वहां से चले जाते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि ये तो डिवाइस खराब है। ये स्कैमर्स अक्सर फेक गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स का झांसा देते हैं ताकि किसान जल्दी भरोसा कर रहे। वो कहते हैं कि अगर अभी स्कीम का फायदा नहीं उठाया तो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बहुत से भोले किसान इसका शिकार हो जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। ये नकली डिवाइस ना तो कोई सही डेटा दिखाती है और ना ही खेती में किसी तरह से भी काम आती है। उल्टा इनमें लगाए गए कार्ड से बैंकिंग फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। खेती बाड़ी के लिए ऐसी कोई भी स्मार्ट डिवाइस हमेशा रजिस्टर्ड डीलर या गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से ही खरीदें। किसी भी आने वाले अनजान सेल्समैन को फील्ड में कैश या कार्ड एडवांस पेमेंट बिल्कुल ना करें। किसी भी डील को फाइनलाइज करने से पहले हमेशा लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर से राब्ता करके स्कीम की सच्चाई का जरूर पता लगाएं। उसके अलावा आप बाकी के किसानों से, आसपास के लोगों से राब्ता रखें कि क्या इस तरह की कोई स्कीम चल रही है जिसमें आपको डिवाइस दिया जाता है और उसमें सॉइल टेस्ट करना या फिर तमाम जो चीजें हैं वो क्या शामिल होती हैं या नहीं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। तब तक होशियार रहें और सतर्क रहें इस तरह के फ्रॉड से, और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर इत्तला करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, गुज़िश्ता एपिसोड में हमने बात की कि जख्म, खून बहने और जलने की सूरत में इब्तदाई तिबी इमदाद किस तरह दी जा सकती है। आज हम चंद ऐसी जो हंगामी हालात हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे जो कि बेहद ज़रूरी हैं। जैसे अगर कोई शख्स बेहोश हो जाए, यानी बेहोशी की सूरत में सबसे पहले उसकी सांस और आप जो पल्स है वो चेक कीजिए, और अगर उसकी सांस आ रही है तो उसे एहतियात से करवट के पट लटा दीजिए। उसने जो लिबास पहना है, जो कपड़े हैं, उन्हें लूज कर दीजिए और फौरी तिब्बी इमदाद तलब कीजिए। अगर सांस में मुश्किल हो तो फौरी तौर पर एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कीजिए, और अगर आप तरबियत याफ्ता हो तो CPR शुरू कर दीजिए। कभी कभी चोकिंग हो सकती है और जैसे कि खुराक या कोई चीज़ सांस की नाली में खुदा न खास्ता फंस जाए तो उसमें ऐसे महसूस होता है कि सांस लेने में दुश्वारी है और खांसी जो है वो नहीं आ रही, बोलने में मुश्किल हो रही है और गले की तरफ हाथ का ले जाना। अगर कोई शख्स खांस सकता है तो उसे खांसने की तरगीब दीजिए, और अगर सांस मुकम्मल तौर पर बंद हो रही है तो फौरी तिब्बी इमदाद हासिल कीजिए। तरबियत याफ्ता अफराद मुनासिब फर्स्ट एड टेक्निक इस्तेमाल करें, और खुदा न खास्ता अगर फ्रैक्चर होने का शुबा हो तो मुतासरा हिस्से को हरकत ना कीजिए, आरजी सहारा फ्राहम कीजिए, और सूजन को कम करने के लिए कपड़े में लिपटी हुई ठंडी पट्टी जो है वो इस्तेमाल कीजिए, और जल्द अज जल्द तिबी मुआयना ज़रूर कराइए। फर्स्ट एड के लिए हर घर में, ऑफिस में और गाड़ी में एक बुनियादी फर्स्ट एड किट मौजूद होनी चाहिए, जिसमें जरासीम से पाक जो बैंडेजेस हैं, गौस हैं, बैंडेजेस उसके साथ होती हैं, और इसी तरह जरासीम कुछ जो सॉल्यूशंस हैं वो हों, ग्लव्स हों और सीज़र हो और थर्मामीटर, ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। फर्स्ट एड का मकसद इलाज करना नहीं है बल्कि पेशा वराना तिबी इमदाद आने तक मरीज की हिफाजत और मदद करना है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में सबसे अहम बात पुरसकून रहना है, सूरत हाल का जायजा लेना और बर वक्त मदद हासिल करना है। लिसनर्स, महफूज रहिए, सेहतमंद रहिए और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बुनियादी उसूल सीख कर अपने और दूसरों के लिए मददगार बनिए।
3: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल, आदतें और अलग इराज़ हैं। इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा? Generation Talk, दोहा वाले कबीर के साथ सिर्फ FM 107 पर।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज मैं जिस मेहमान से मिल रहा हूँ पहली मरतबा मुलाकात हो रही है मेरी, और मैंने सुना है इनके बारे में कि पहले भी आ चुकी हैं इनमें से एक। और माँ बेटी की जो जोड़ी होती है बड़ी खास होती है, बाप बेटी की जोड़ी बड़ी खास होती है और माँ बेटी की जोड़ी बड़ी खास होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें बहुत सारी बातें और गॉसिप मिल जाती है, तो हम क्यों ना करें गॉसिप, शुक्रिया तो हमें भी करनी थोड़ी सी। तो अस्सलाम वालेकुम दोनों को, मैम आपसे शुरू करते हैं, आपका नाम बता दीजिए।
4: वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम फाइका है और कतर में मैं पैदा हुई हूँ, तो बच्चे भी मेरे इधर ही पैदा हुए हैं और यहीं पर पूरी एजुकेशन भी यहीं पर ली है।
3: बहुत बढ़िया, और आपका नाम बताइए।
5: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरा नाम माहम नदीम है और मैं भी यहीं पे बॉर्न हुई हूँ, स्टडीज भी यहीं पे की है। भी मैं स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी की बैचलर्स कर रही हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है मेरा।
3: साइकोलॉजी कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा पसंद है? लाइक देयर आर वेरियस
5: स्पोर्ट्स साइकोलॉजी।
3: स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मतलब मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है क्रिमिनल साइकोलॉजी, मुझे लगा क्रिमिनल साइकोलॉजी वाला मिलेगा मुझे। अच्छा ठीक है, बट ये बताएं कि पाकिस्तान में से जाना कभी होता है, कितने मतलब साल में या दो साल में?
4: ज्यादा नहीं, ओकेजनली
3: जाते
4: हैं।
3: आपका हुक्म चलता है उस पे?
5: कभी कभी
3: छोटे मोटे काम करा लेती है आप?
5: जी
3: बढ़िया है, चलो उसके उसके लिए मैं समझ सकता हूँ, इतना होना भी चाहिए
5: जी,
3: इतना तो बनता है। तो ये जिद्दी है नेचुरली या फिर आपके साहब ज्यादा जिद्दी है? कौन?
4: नहीं, जिद्दी मैं दोनों में देखती हूँ, तो दोनों में जिद तो नहीं है।
3: नहीं है,
4: हस्बैंड मेरे जिद्दी
3: है। अरे वेरी नाइस, तो तीन बच्चे हुए?
4: तीन बच्चे हो गए टोटल।
3: वेरी नाइस, ये अलग कॉम्बिनेशन है। तो घर में सबसे ज्यादा जो है तुम्हें क्या लगता है कि कौन इजीली कन्विंस हो जाता है, मम्मी या पापा? किससे ज्यादा इजीली?
5: मम्मी ऑफ कोर्स
3: इजीली कन्विंस हो जाती
5: है। यस,
3: पापा नहीं होते?
5: अबू होते हैं, बट आई थिंक अम्मी को मनाना सबसे आसान है,
3: तो इनके जरिए बात वहां तक जाती है।
5: यस ऑफ कोर्स।
3: क्या बात है, तो आप मतलब गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन में आप गुड कॉप बनी हुई हैं?
4: हाँ, दोनों तरफ से, अगर हस्बैंड की तरफ से भी कुछ होता है, अगर उनको भी कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ या कुछ ऐसे, तो वो भी मुझे बीच में ले आते हैं। मैं दोनों की तरफ में जो है ना वो बीच का एक ब्रिज से बनी हुई हूँ, मुझसे गुजर के उधर जाता है, उधर से गुजर के इधर आता है।
3: जैसे माँ बाप जो होते हैं आपस में डिसाइड कर लेते हैं, मैं डांटूंगा और तुम जरा संभाल लेना।
4: हाँ बिल्कुल,
3: वैसे ही वाला सिस्टम चलता है।
4: बिल्कुल वैसे।
3: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो जनरेशन है आपकी, ऑफकोर्स ये थोड़ी सी अलग है, पहले पीपल वर नॉट एक्सप्रेसिव, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे फुटप्रिंट है तुम्हारा, आर यू देयर ऑन सोशल मीडिया?
5: आई एम।
3: यू आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया?
5: Not much. I don't like to be an influencer or a star. I like to keep things private.
3: You're there.
5: Yeah, I'm there.
3: Okay. And how comfortable are you कि मम्मी उसमें ऐड हो जाए? मम्मी है वैसे सोशल?
5: Yes, मेरे साथ ऐड है। Yes.
3: Comment शॉमेंट करती है नहीं करती है?
5: I don't post much, but stories वगैरह लगाती हूँ, तो उसपे reply, like I tag her also.
4: Even हमारी तो story भी एक दूसरे को tag हो रही होती है। We are besties actually.
3: क्या बात है? क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि बच्चे थोड़े comfortable नहीं होते, लगता कह रहे थे नहीं, हो सकता है कि वो कुछ इमोशंस अपने पोस्ट करते हैं, उसके बाद हुआ अच्छा ये कब हुआ, तो उस वजह से भी कई मर्तबा डर लगता है। तो
5: नो, आई थिंक लाइक मॉम का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इट्स बेटर इफ आई हैव एवरीथिंग लाइक उनके सामने सब कुछ, ऐसे ट्रस्ट भी इसी तरह बिल्ड होता है।
3: और आप सोशल मीडिया पे
4: एक्टिव,
3: पीयर प्रेशर में थी या यू वर देयर ऑलरेडी?
4: मैं भी थी शुरू से ही, बच्चे छोटे थे तब से ही थी, उनकी वीडियो अपलोड भी कर देती थी मैं शुरू से ही थी। फेस पे हमारे टाइम से तो फेसबुक स्टार्ट हुआ, फिर इंस्टाग्राम, फिर आहिस्ता स्नैपचैट,
3: फोन से इंट्रोडक्शन बच्चों का हो जाना

0: आपको थोड़ा बहुत पता हो जाना चाहिए, बाद में आपके हाथ में जो आपका पर्सनल फोन है वो फिर बाद में
1: एकदम से अंदर हाथ में आएगा तो लगे ये क्या चीज है।
0: जो बिल्कुल आजकल जो बिल्कुल आजकल जो बच्चे बने हुए हैं ना, मैं बोलना नहीं चाह रही, लेकिन ये जो लैपटॉप किड और ये सारे टैब किड जो बच्चे वो मैं कहती हूँ
1: वो डेंजर है क्योंकि अर्ली एज में ज्यादा तो फिर वो खाना भी नहीं खाते हैं।
0: एग्जैक्टली मेरे टाइम पे ये नहीं था, मैं खुद ही इनका पूरा थी।
2: आई फील लाइक के अगर आप बचपन से उनको आदत देते हैं तो उनके लिए वो डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, वो एडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब क्योंकि हम अपने फोकस है हमारा स्टडीज पे, तो हम उसको बैलेंस लेके चलते हैं, हमें पता है कब यूज करना है कब नहीं करना, प्रायोरिटीज हमें पता है, तो इसलिए अब आई फील लाइक इस एज पे बेहतर है।
1: तो आपके मतलब दोस्त वगैरह होंगे तो जो फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें कुछ ज्यादा एक्टिव है लाइक ये सारे के सारे उसी रेंज
2: है, काफी एक्टिव है,
1: मोर एक्टिव?
2: यस।
1: तो शुरुआत में कभी पीयर प्रेशर महसूस हुआ कि यू नो पीपल आर एक्टिव एंड आई शुड बी आल्सो एक्टिव?
2: नॉट रियली लोगों को होता है फॉलोअर्स का, फॉलोइंग का, ये यू नो आई लाइक टू स्टे प्राइवेट
1: व्हिच इज ग्रेट आई थिंक, क्योंकि और होता क्या ना कई मरतब ज्यादा एक्सप्लोर हो जाती है कोई चीज तो उसके बाद फिर लोग ट्रोलिंग भी झेल नहीं पाते,
2: बिल्कुल,
1: बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ इट, आपको हर कोई पसंद नहीं करेगा, ये तो फैक्टर है। आई थिंक ये भी एक नॉट रियली अफेयर मगर उससे डील करने वाली एक चीज होती है। अच्छा इस जनरेशन को बिकॉज आपकी जनरेशन ऑब्वियसली हैज बीन कंप्लीटली डिफरेंट, हमने नहीं देखा इंटरनेट तो आया था उस टाइम पे राइट, सो क्या क्या महसूस करती है, इज इट हाउ डू यू टैकल दिस जनरेशन? आपको लगा होगा ना कि यार अब तो माँ बाप जब आप बने होंगे जब उस पेरेंटहुड में आए होंगे तो एक नया एरा शुरू हुआ था, इनसे डील करने के लिए क्या क्या कुछ किसी ने एडवाइस दी या आपने कुछ डेवलप किया?
0: क्योंकि मेरी एज कम थी, मैंने कम एज में शादी हुई तो मैं तो कहूंगी मैं इन्हीं के साथ बड़ी हुई, तो इसलिए मैं भी स्टार्टिंग में भी जो जो चीजें थी सोशल मीडिया आप कह रहे हैं बाकी चीजें मैंने भी साथ साथ ही सीखी, इनके साथ साथ ही मैं ग्रो करती गई, मुझे तो इतना फील नहीं हुआ,
1: पार्टनरशिप
0: मेरा यही है। हाँ इसलिए हम लोग बेस्ट चीज है ना क्योंकि एज डिफरेंस इतना नहीं है, तो बेटे के साथ भी ऐसे ही है तो इसलिए इजिली मेरे से कम्युनिकेशन कर लेते
2: हैं, ट्रेंड्स सारे जो भी फैशन से रिलेटेड सब कुछ मम्मी मुझे मोटिवेट करती है कि ऐसे करो वैसे करो।
1: बेहतरीन, क्या बात है भाई। तो कुछ ऐसा कुछ रह जाता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे मम्मी को बताना चाहिए कोई टर्मिनोलॉजी या एनी मीम और समथिंग? डू यू शेयर मीम्स?
2: टर्मिनोलॉजी यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साथ साथ, तो इट्स माय मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए अम्मी को, इस तरह मैं अम्मी को बोलूंगी उनको नॉलेज आएगी, इस तरह फिर वो बढ़ेंगी भी, फिर वो उस तरीके से समझेंगी भी, तो मेरे लिए फिर कन्विंस करना भी इजी हो जाएगा।
1: अच्छा ये तरीका है तो पर इनके जो ये करियर चॉइस है और आगे जाके इंशाल्लाह जो बनेंगी ये कहीं ना कहीं माँ बाप क्या करते हैं ना कि हल्का हल्का इन्फ्लुएंस करते रहते आपने भी ऐसा कुछ किया छोड़ जाएगा देखा जाएगा जो
0: नहीं स्टार्टिंग में मेरा था ये प्रॉपर MBBS करे उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसका इंटरेस्ट देखा साइकोलॉजी में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मैंने इसको कुछ नहीं बोला इसकी डिसीजन है हर डिसीजन मुझे शुरू में था शायद मैं फोर्स भी करना चाहती थी लेकिन फिर जब मैंने देखा नहीं उसका इंटरेस्ट नहीं हो रहा जबरदस्ती करना भी अच्छी बात नहीं है तो फिर हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए मेरे और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं लेट इट था
1: क्योंकि आई थिंक वो जबरदस्ती के डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद कुछ फायदा होता
0: है और आजकल तो जब से कोरोना हुआ उसके बाद से कैसा है बने AI वाले डॉक्टर इंजीनियर
1: वो जो मोहल्ले डॉक्टर होते हैं ना वो हर चीज की दो ही दवाई देते हैं दो गोलियां होती है बस वही वाला सीन है। पर कमिंग बैक टू दिस अभी तुमने करियर चॉइस चूज कर लिया आगे जाके इफ लेट्स से यू गिवन एन ऑप्शन के बाहर जाके यू नो pursue your career आगे बाहर निकल जाओ
2: इंशाल्लाह दैट्स द प्लान
1: दैट इज द ओनली प्लान। अच्छा तो इस बारे में बात हो चुकी है मतलब क्लियर कट
0: मतलब क्लियर कट
1: अच्छा
2: दोनों मैं और मेरे भाई साथ में
1: अच्छा उनका भी भाई साहब को सेट हो चुका है
0: इंशाल्लाह
1: बहुत बढ़िया ये मामला सही है। अच्छा तो कोई ऐसी चीज कभी बहस हुई है मम्मी से जिसमें सॉरी बोलने की सिचुएशन आई हो बट यू लाइक
2: होती है छोटी मोटी बहस तो होती रहती है आई थिंक अगर ये ना हो तो फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को फीलिंग्स के साथ इमोशंस के साथ एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जिसपे हम दोनों एग्री कर सकें।
0: और ये सॉरी का तो ये नहीं है कि ये बोलेंगे मैं भी बोल लेती हूँ इजीली
1: आई थिंक आजकल बोलना भी पड़ता
0: है मैं तो बोल लेती हूँ शुरू से मैं इस बारे में कोई मुझे कुछ झिझक नहीं है शर्म नहीं है मैं आराम से कोई मिस्टेक हो गई है नहीं भी हुई कभी कभार कोई गिरने लगे हैं कुछ
1: सॉरी आजकल क्या है ना कि ये ब्रो कोड वाली जनरेशन है obviously it's important कि आप भी थोड़ा शांत रहेंगे इनको pursue करेंगे क्योंकि अगर आपने
0: आजकल ज्यादा मुश्किल है मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए आजकल पेरेंट्स को पेरेंट्स हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए भी और बच्चों को पेरेंट्स दोनों साइड में मुश्किल है बच्चे अपनी तरफ से परेशान है जो पेरेंट्स है वो अपनी तरफ से परेशान
1: है मिलते होंगे अपने दोस्तों से उनके भी बच्चे होंगे तो
0: मैं नहीं बोलती किसी के मैटर में मैं बस देख लेती हूँ मैं सोचती हूँ इनके साथ काफी टफ सिचुएशन
2: आई थिंक हर किसी की पेरेंटिंग अलग है
1: वही मैं कह रहा
2: हूं तो हर दूसरे

0: तरीके से वो पेरेंटिंग करते हैं. सो आई थिंक वो अपने तरीके से सही है, हम अपने तरीके से. लाइक अम्मी जिस तरह हमें रेज उन्होंने किया है वो.
1: नहीं, मेरा ये सवाल है कि लाइक कुछ सीखने को मिल जाता है ना समटाइम्स, यू सी के अच्छा ये चीज तो मैं नहीं करूं. Sometimes ऐसा होता है. तो have you learned things from outside the world as well? अपने बाहर आके कुछ चीजें सीखी होती है ना, आपको लगता है कि चलो मैं सीख लेती हूँ, या तो अपने घर में सीखने को मिलती है या बाहर से.
2: जो फाइटिंग वगैरह करते हैं बच्चे, बाहर निकल कर भी बदतमीजी करते हैं, ये चीजें मुझे देखकर शुरू से बहुत ज्यादा.
1: पहले आंखों का डर था ना,
2: अब वो नहीं है. ये हमारे पेरेंट्स का था.
1: हाँ, अभी तो नहीं,
2: अभी नहीं है,
1: अभी किसको डरा नहीं सकते. और कुछ कोई शौक है साइकोलॉजी के अलावा, कोई और कैसा प्रोफेशन लगता है जो बड़ा पसंद है? यू माइट हैव डिस्कस्ड विद हर.
0: फिलहाल तो मुझे स्पोर्ट्स में ही है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट.
2: अच्छा, स्पोर्ट्स का शौक भी इनको मेरे से आया. मैं बहुत अच्छी स्पोर्ट में थी स्कूल लाइफ.
0: शी वाज एन एथलीट, लाइक टॉप एथलीट स्कूल में.
2: तो वो शौक मैं देखती हूँ ना आपके अपने बच्चों में आ रहा होता है.
0: मेरा भाई भी स्पोर्ट्स में, मैं भी स्पोर्ट्स में,
2: मेरी तरफ से इनको आ रहा है दोनों को.
1: अरे वाह यार. तो मम्मी की और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें लगता है कि यू हैव लाइक इन योर जीन्स जेनेटिकली आई, या फिर आपने यू नो इंबाइब करी है अपनी पर्सनालिटी में कुछ और भी चीज?
0: आई थिंक जब हम बाहर जाते हैं सो अम्मी को पसंद है कि वो बैग में ना उनके पास हर चीज है, सारी एसेंशियल्स हो, ताकि अपने अगर खुद को भी जरूरत पड़ेगी तो वो यूज हो जाएगी, किसी और को भी जरूरत होगी तो हम निकाल के देंगे. तो वो चीज मेरे अंदर आ गई है. यूनी में भी मैं होती हूँ, किसी को कुछ चाहिए होता है तो सबसे पहले मेरे बैग से निकलता है. और लोग कहते हैं पूरा घर उठा के लेकर आई.
2: और प्राउडली आके मुझे घर में था, आज एको एक पेन किलर की जरूरत थी, मेरे पास तो थी
0: बैंडेज की जरूरत थी, मेरे पास सारी चीजें मिलेंगी आपको.
1: क्या बात है, मतलब मुझे लग रहा है बिल्कुल पुख्ता तौर पे एंबिशन जो तुम्हारा है उसको फॉलो कर रहे हो तुम्हें ये चीज को. आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता है ये ऐसा ही होना भी चाहिए. बट जैसे होता है ना कि सेट अपार्ट आपने अपनी जिंदगी में कुछ और चीजें देखी होंगी, लाइक मूवीज से लेकर सीरियल से लेकर बहुत सारी चीजें. आप अभी कुछ और देख रहे होंगे, अभी कतर में रहते रहते बहुत सारा चीज बदल गई. उस टाइम पे देयर वाज लाइक नथिंग, एक टाइम पीरियड में सेट था कि अब ये आएगा.
2: जी, जी, जी.
1: तो आपने इंट्रोड्यूस कराया नहीं उन चीजों से जो आपने देखी है?
2: मूवीज वगैरह कुछ मैंने स्पेशली उनको कहा आप ये देखें.
1: अच्छा,
2: तो वो बॉलीवुड की इतनी शौकीन है. मैं बॉलीवुड, ये हॉलीवुड.
1: अच्छा हाँ, वो तो देखिए क्या कर सकते हैं.
2: या वो कभी कभी अपने हॉलीवुड की मूवी मुझे दिखा देती है, मैं अपने बॉलीवुड को दिखा देती हूँ. तो
1: क्या क्या दिखाया आपने इनको, मतलब कुछ याद आ रहा
2: है? मैं हूँ ना को दिखाया है बहुत. अच्छा. फेवरेट शाहरुख खान की, उसके बाद तारे जमीन पर बच्चों की जो फिल्म होती थी वो तो आज तक मेरे बच्चों को उनके सीन पसंद है.
0: जो इनविजिबल होते हैं,
2: मिस्टर इंडिया,
0: मिस्टर इंडिया,
2: वो बल्कि मेरे बचपन की थी.
1: हाँ,
2: वो मैंने कितनी दफा इनको सीन दिखाया, उसके बच्चे हंसते हैं.
0: फेवरेट है.
1: अरे भाई, मम्मी को कुछ दिखाया तुमने अपनी तरफ से?
0: हॉरर मूवीज ट्राई करती
1: हूँ. वेरी नाइस है, मैं भी हॉरर फैन हूँ. क्या क्या दिखाया मम्मी को?
0: कॉन्जरिंग.
1: अच्छा, अरे वाह, हॉरर बर्दाश्त कर लिया.
2: और एक तो द नन तो सिनेमा में दिखाई है.
1: अरे रे रे रे.
2: और जाने से पहले कह दिया मम्मी आपने उधर फुल सीन क्रिएट करने हैं, मुझे डर तो लग रहा है लेकिन मैं चाह रही हूँ आप चलें. मैंने कहा देख लेते हैं जो होगा देखी जाएगी.
1: एक चिल्लाने वाला ले जाना बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल,
1: चाहिए होता है ऐसा जो साथ में चिल्ला चुल्ले सके.
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन FM 107.
1: करियर की तरफ चलते हैं. आपका जो आपने चूज किया है बहुत ही अलग फील्ड है, बिकॉज लोगों को या तो पता ही नहीं होता इस बारे में कि ऐसा भी कुछ है. बाद में पता लगता है व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज कि अच्छा ये भी एक ब्रांच है. हाउ डिड यू डिस्कवर अबाउट इट कि स्पोर्ट्स का एक और पहलू भी है, साइकोलॉजिकल ब्रांच भी है, ये कैसे?
0: फर्स्ट ऐसे अम्मी ने कहा कि MBBS का, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट फिजियोथेरेपी में था, स्कूल में था. ये दो ऑप्शंस थे मेरे पास. फिजियोथेरेपी का मुझे था इंटरेस्ट, और वो मैं स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड मैं खेलती थी तो मुझे शौक था. आई प्ले बास्केटबॉल आल्सो. तो वहां से मैंने सोचा कि फिजियोथेरेपी इज अ गुड ऑप्शन. बट देन बाद में मुझे इतने ऑप्शंस नजर नहीं आए फिजियोथेरेपी के लिए. फिर मैंने कहा ओके लेट्स जस्ट गो टू साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में उस टाइम ट्रेंड भी चल रहा था, तो आई वाज लुकिंग एट एवरीवेयर सब साइकोलॉजी साइकोलॉजी चल रहा था. सो आई वाज लाइक ओके इसमें इंटरेस्ट आ रहा है मुझे. फिर मैंने कहा स्पोर्ट्स को और साइकोलॉजी को ब्लेंड करके मुझे अपना इंटरेस्ट दिख रहा है इसमें.
1: तो मतलब जैसे मैं तुमसे जानना चाहूं तो क्या स्पेसिफिकली कोई कोर्स है इसका, कोई डिग्री कोर्स है? हाउ डू यू गो अबाउट इट? क्या है इसका सीन?
0: स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वो इंशाल्लाह मैं मास्टर्स में करूंगी.
1: मास्टर्स का उसका एक हिस्सा है. ओके नाइस, बिकॉज नॉट लॉट ऑफ पीपल वुड नो अबाउट इट. तो अच्छी बात है कि बता दो. तो आफ्टर यू डू दिस देन द मास्टर विल कम
0: इंशाल्लाह. और लाइक एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इस तरह करके. यहाँ पे तो स्पोर्ट्स इतना होता है तो आई थिंक यहाँ पे स्कोप भी है.
1: ओके ओके. अच्छा, जैसे बैक इन आर कंट्रीज, पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, लोगों का एक प्लान होता है. उनसे पूछो कि भाई कहाँ देखते हो, तो बोलते मैं तो पहाड़ पे चला जाऊंगा और वहीं पे रहूंगा, बढ़िया एकदम हवा आएगी शांति से. कभी कुछ ऐसा ख्याल आया विद और विदाउट योर किड्स के यू नो व्हाट मेरा ये प्लान है एंड ऑफ दिस एवरीथिंग. सब चीजें साइड में रख के जहाँ जिम्मेदारी ज्यादा ना हो, निपट जाए सब कुछ, उसके बाद मेरा ही प्लान है. कभी आया ऐसा ख्याल?
2: नहीं, मेरा तो इस तरह का नहीं आया. मैं तो अपने आप को हमेशा बच्चों के साथ ही देखती हूँ.
1: हाँ, ओके.
2: हाँ, ये कि बच्चे अगर अपने एजुकेशन में बिजी हो जाएंगे बाकी जाके, जैसे ये बताया, तब निकलेंगे वर्ल्ड टूर
1: पे. ये हुई बात.
2: तब हस्बैंड वाइफ अपना एक जर्नी
1: बनता है
2: ना, फिर तो
1: बनता है. ऐसा मम्मी ने कभी प्लान बनाया, बताया कभी ये कुछ?
2: नहीं, आज बता रही
1: हूँ बस. नाउ यू नो,
0: ट्रैवलिंग का मुझे भी शौक है, सो मैं भी आई एम आल्सो गोना टैग अलोंग.
1: नहीं नहीं, वो छोड़ दो यार, अगले छोड़ दो. इतने सालों के हम कहते हैं हिंदी में प्रतिज्ञा की है, उनमें जाना बनता है.
2: बिल्कुल.
1: अच्छा, तो आपका क्या एम्बिशन है? योर प्राइमरी गोल इज टू बिकम समथिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट.
0: मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा,
1: ट्रैवलिंग का
0: बहुत ज्यादा.
1: क्या क्या कंट्री, कौन सी कंट्री पसंद है?
0: मुझे यूरोप घूमना बहुत पसंद.
1: व्हिच पार्ट ऑफ यूरोप?
0: ग्रीस,
1: ओके,
0: इटली, फ्रांस का तो इतना शौक नहीं है मुझे. जर्मनी जाना पसंद है, मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे.
1: Very nice.
0: And बोस्निया पसंद है मुझे.
1: Bosnia is beautiful. I've been there. Really? Yes, yes, yes. बोस्निया का जो कंट्री साइड है वहाँ पे जरूर जाना, बिकॉज इन कंट्रीज की खास बात ये, जैसे बोस्निया ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, यहाँ पर अगर आप शहरों में घूमेंगे तो मजा नहीं आएगा. यू हैव टू सी द अदर साइड ऑफ इट, जो जो विलेजेस हैं वहाँ के.
0: मुझे वो वाली जगह नहीं पसंद जो सोशल मीडिया में दिखाते हैं, लाइक द स्पेशल टूरिस्टिक प्लेसेस.
1: ज्यादा हाइप हो जाता
0: है. एग्जैक्टली, मुझे पसंद है जो डिस्कवर नहीं हुई भी.
1: राइट राइट. मैं तुम्हारी लिस्ट में नाम जुड़ देता हूँ इंटरव्यू के बीच में. हीथोर्न का नाम सुना है तुमने? इट्स इन नीदरलैंड्स. हीथोर्न, वैसे इट इज स्पेल्ड इट विद द जी, बट इट इज pronounced as Heathorn.
0: Netherlands is beautiful.
1: बहुत जबरदस्त जगह है. एंड आई थिंक अभी पैकेजेस बहुत सारे चल रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा तुम बता दो, आगे जाके कभी सोचो तुम्हारे टाइम में पैकेज और अच्छे आ जाएंगे. अच्छा, तुम्हारी जनरेशन को तुम्हारा क्या मैसेज है? तुम देखती हो यूनिवर्सिटी में भी एक ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि यार ये मतलब ये मेरी जनरेशन है.
0: Yes.
1: तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम और आवर मैसेज?
0: आई थिंक जस्ट बीइंग काइंड टू एवरीवन. जस्ट
1: थोड़ी काइंडनेस कम लगती है तुम्हें? डू यू फील दैट कि थोड़ा ज्यादा ही रो हो रहा है मामला?
0: यस यस.
1: हां, सप्रेस नहीं हो रहे इमोशंस?
0: यस, आई फील लाइक के जस्ट इवन इफ यू स्माइल वो काइंडनेस एक दिख जाती है, सो पीपल शुड स्माइल मोर.
1: हाँ राइट. अभी तो सरकैज़म इतना ज़्यादा ओपन हो चुका है ना, पहले ये था कि सरकैज़म कोई
0: समझ नहीं आता.
1: चला गया.
0: हाँ. समझ नहीं आता. दिस इज इंसल्ट या सरकैज़म, इट्स अ कंडेसेंडिंग कॉमेडी.
2: अच्छे अच्छे हम लोग जोक्स क्रैक कर लेते थे.
1: हाँ, राइट.
2: अब तो पर्सनल हो रहा है सारा. जोक्स करें ये पर्सनल हो गया है ज्यादा.
1: हाँ,
2: इसको किसी और वे में ले जाते हैं, जैसे अपने सरकैज़म का जोक्स को भी कहाँ ले जाते हैं. आप देखिए हमारे टाइम पे कितने कितने जोक कर लेते थे. आपकी बॉडी शेमिंग होने लग गई अब तो. पहले तो क्या क्या बॉडी में होते थे,
1: वर्ड नहीं था बॉडी शेमिंग.
2: तो
1: अभी तो पहले तो किसी को प्यार से अगर मोटा कह भी दिया तो It doesn't really matter. मतलब अभी आप कहके देखिए.
2: कहके देखिए. आपने कैसे कहा?
0: Color shaming, body shaming, fat shaming. ये
1: अब बहुत हो रहा है. तो cancel culture पे तुम्हारा क्या opinion है? तुम्हें लगता है ये जो जो trend है, it will survive? ये cancel culture तो चल रहा है. Like it's everywhere right now. Whatever you do, you will be judged, even if it is.
0: Yes.
1: Right.
0: It's a lot, I think.
1: ज़्यादा ही है ना?
0: कहीं ना कहीं वो दिमाग में होता है. And it's not just them. I think हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं. Even if we try to avoid it, थोड़ा थोड़ा. So I think if we try to work on ourselves, तो ये हो सकता है खत्म. But I feel like the pressure to be perfect, ये बहुत ज़्यादा है.
1: हाँ, ये तुमने सही कहा. ये बहुत बड़ा प्रेशर है कि सब चीजें या तो मुझे जाननी है या आनी चाहिए या मैं कर लूँ.
0: To look perfect also.
1: हाँ, वो एक एडिट प्रेशर है. I think वो ज़्यादा क्योंकि अब सारी चीजें दिखने लगी हैं, पता होने लगी हैं, तो इसलिए वो शायद एक एडिट प्रेशर.
0: And if you don't look perfect, तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है. आप आसपास अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, फिर आप इन्फ्लुएंस होते हैं. आपको होता है इसकी तरह दिखे, उसकी तरह दिखे. कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है. एवरीवन्स जस्ट डूइंग सर्जिकल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी, सब वो कर रहे
1: हैं. आपको भीड़ में शामिल होने के लिए करना पड़ा. आजकल लोग इस तरीके से दे रहे हैं, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो आपको करना पड़ेगा.
0: एग्जैक्टली.
1: वैसा कुछ सीन हो गया. अच्छा, डू यू लुक अप टू समबडी इन योर फील्ड? लाइक डू यू हैव अ फेस कि यू नो आई वांट टू बी लाइक दिस पर्सन और
0: नॉट रियली. आई लुक अप टू माय मॉम ओनली. अम्मी की तरह बनना है बस.
1: वेरी नाइस.
0: बिकॉज़ आई फील लाइक अम्मी की सोच माशाल्लाह से इट्स वेरी लाइक पॉजिटिव. सो I aspire to be like her. उन्हीं की तरह मैं वो लेगेसी भी कंटिन्यू करूं.
1: माशाल्लाह. तो आप दोनों में से वैसे पूरे घर की अगर बात करूं मैं, तो सारे लोग सोशल हैं? कोई एंटी सोशल भी है घर में प्राणी जिसको बाहर जाना पसंद नहीं है? नहीं है, मुझे छोड़ दो.
2: कभी कभी मेरे हस्बैंड हो जाते हैं इस तरह. उनको खींच के ले भी जाते हैं, चले भी जाते हैं.
1: ये बड़ा मुश्किल होता है ना. जब हम कल ही कल परसों में एक से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब वो बैचलर रहे थ्रू आउट हिज लाइफ, तो वहां पे कोई ना पूछ नहीं रहा. ऐसा नहीं कि उनके कोई बड़े बड़े दांत और वो खा जाएंगे, बट ऐसा होता ना कि बैचलर को कोई पूछता नहीं. फिर जब शादी होती तो सारी फैमिली फ्रेंड रुक जाते हैं, अरे आप तो आए नहीं, वीकेंड पर गायब थे, है ना. तो ये चीज फील होती है ना, तो मुझे लगता है इस वजह से सारे आदमी एक शेल में चले जाते हैं. अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अब तुम लोग जाके संभालो.
2: एग्जैक्टली ऐसे ही.
1: बट लाइक आप लोग जाते हैं फैमिली फ्रेंड्स यहां पे बनाए आपको?
0: फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, बट मुझे फैमिली के साथ जाना पसंद है ज्यादा, बिकॉज़ आई फील लाइक आई एम मोर कंफर्टेबल विद देम. एक वो कंफर्ट जोन बना हुआ है, जजमेंटल नहीं है कोई भी, ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक वो अच्छा है.
1: आई थिंक गॉसिपिंग ज्यादा बढ़ जाती तो उससे थोड़ी सी एक बाउंड्री क्रॉस होने का डर रहता है कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या.
0: बट आई हैव माय डेज. मुझे कभी-कभी पसंद है घर में रहना. सम टाइम्स आई एम लाइक नहीं, बाहर जाना है, बाहर जाना है.
1: जाना बहुत जरूरी है.
0: यस, बट डिपेंड्स ऑन द वेदर आल्सो. अभी आजकल समर्स में तो बिल्कुल भी
1: अभी तो नहीं करता, अभी तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इंपॉसिबल वाली चीज है.
2: लेकिन कतर में भी इंडोर एक्टिविटीज भी बहुत होती हैं. हमारे टाइम पर ये नहीं था.
1: अब तो
2: मैं सोचती हूँ कभी कभी फिर से छोटे होना बेहतर है. ये वाली राइड्स नहीं ली थी, इस पे भी घुस जाना बेहतर है इनके साथ मिलकर.
0: Yes, I'm so adventurous.
1: अभी तो बहुत कुछ है, एक्सप्लोर किया आपने जो एक एक एक नया एरा आया है कतर का पूरा, ये जहाँ पे बहुत कुछ है. विंटर वंडरलैंड
2: मरियाल पे गए अभी पिछले दिनों,
1: बेहतरीन. ये बड़ा
2: एंजॉय करके आए हैं विंटर वंडरलैंड.
0: सारे रिस्की वाले जो भी राइड्स है कुछ भी हो सब में मैं जाऊंगी.
1: कोई एक फियर है, कोई फोबिया है किसी किस्म का, किसी चीज का?
0: हाइट का फोबिया है, ड्राउनिंग का फोबिया भी है.
1: अच्छा, थैलेसोफोबिया किस्म की भी चीज है तुम्हारे अंदर पर?
0: थैलेसोफोबिया यस,
1: थोड़ा बहुत.
0: यू कुड से ट्राइपोफोबिया बहुत है.
1: अच्छा, ओके.
0: वो मुझे बहुत ज्यादा है. मुझे फियर ऑफ हाइट्स है, बिकॉज़ लाइक मैं नीचे नहीं देख सकती अगर मैं बहुत ऊंची हूं. लेकिन अगर कोई राइड्स हो या कुछ हो वो मैं कर
1: लूंगी. वो एक कन्विक्शन होती है ना माइंड को कि बंदी हुई यहां से.
0: स्काई डाइविंग भी आई कैन डू इट इजीली, कभी किया नहीं बट आई वांट टू डू इट.
1: वो तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा उसमें, मैं बता रहा हूं. चीखे आएंगे ऊपर से नीचे, लेकिन सारा डर निकल जाएगा. आपको कोई फोबिया है?
2: हाइट का ही है.
1: हाइट का ही है. यही पास ऑन किया है क्या आपने? यही मुझे लग रहा है, यही पास ऑन किया है ना. और अपने सारे के सारे जो अभी नए माँ बाप भी लोग बने, पेरेंटहुड का एक अलग एरा है अभी, है ना. जिन अल्फा और पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी. आपकी क्या हिदायत है, क्या बोलेंगे आप आज के जो नए पेरेंट्स अभी बन रहे हैं? व्हाट इज योर पेरेंटल एडवाइस?
2: पहले तो यही है कि मोबाइल से जरूर दूर रखें, इतनी जल्दी स्क्रीन टाइम बच्चों के हाथों में ना हो. मेन एक तो मेरा यही है. बाकी ये कितना प्रेशर ना दें बच्चों को, जब बच्चे आपके हो रहे हैं वही परफेक्ट बनने के लिए. जैसा आपने भी बताया कि आपको परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में, उसका बच्चा ये है तो मेरा बच्चा भी ऐसा हो, इस तरह की बिल्कुल चीज़ें ना लेकर आए. पेरेंटिंग में यही चीज़ें ज़्यादा. और खाने पीने पर बहुत जंक फूड हो गया, एक से बढ़कर एक जंक फूड है, उस पे कंट्रोल दिलाएं. हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें जो है ना ये मैनेज करें, तो फिर मुझे लगता है बच्चों की अपब्रिंगिंग इतनी मुश्किल नहीं है. हम सोचते हैं ज्यादा.
0: लाइक एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, कुछ पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटते. जो मर्जी कर रहे हैं उनको करने दो.
1: हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया.
0: आई थिंक इट्स टू मच. लाइक उनको इतना लेट गो किया हुआ है, वो कुछ भी किसी का भी बिगाड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं कहना. वो उनको सॉफ्ट पेरेंटिंग से हम कर लेंगे, बट थोड़ा बहुत डांटना चाहिए, कुछ तो बोलना.
1: उनके सामने मोबाइल फोन यूज करते रहना भी आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट शुड अवॉइड. क्योंकि सर्टेन एज से अगर माँ बाप भी फोन यूज कर रहे तो
2: ये भी है. अगर आप खुद यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चा तो करेगा.
1: हाँ, तो लगा ये ऐसा क्या है इसमें, वो ही ना वो आता है अंदर. तो अच्छा, एंड ऑफ द डे आप लोग अभी बाहर जाएंगे इंशाल्लाह, ये बाहर चली जाएंगी. तो ये सारा डिसाइड आपने कर लिया था कि यू नो यू विल मूव ऑन, बाहर जाके तुम काम करोगी. सो कोई मुश्किल
2: नहीं.
1: वेरी नाइस, दैट शुड बी देयर. और छोटे वाले साहब के क्या सपने हैं, वो कुछ उन्होंने बताया?
0: इज इनटू बिजनेस.
1: अरे क्या बात, बिल्कुल ही अलग
2: सोच के. और माशाल्लाह स्कॉलरशिप है, दोनों बच्चे मेरे स्कॉलरशिप में हैं.
1: अरे माशाल्लाह.
2: तो ये कि उनका अपनी सोच है, अपनी वो है, उनके साथ साथ ये भी फिर एक साथ हो जाएंगे. मैंने कहा चले ठीक है, एक के साथ दो.
1: दोनों के बीच में कभी लड़ाई हुई है ऐसी? जो
2: नहीं
0: आनी चाहिए.
2: और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पेरेंट्स के सामने ज्यादा लड़ते हैं, अकेले में ज्यादा खुश रहते हैं.
1: एग्जैक्टली.
2: और ये देखना है कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, मम्मी कर रही है, पापा कर रहे हैं. चीज में ज्यादा हो जाता है. ये भी मैंने नोटिस किया, इसलिए आप छोड़ दें, बेहतर है आप खुद ही करें, सॉल्व करें, आप साइड पे होकर बस देखें या फिर वहां से वॉक अवे, बस यही सिचुएशन.
1: तो आप का लास्टली आपका क्या मैसेज है आज की जनरेशन को, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने माशाल्लाह काफी अच्छी तरह से रेज किया है. सो व्हाट इज योर एडवाइस टू दिस जनरेशन बिफोर वी रैप दिस अप?
2: बस यही है कि आप अच्छी सोच रखिए, अच्छी अच्छे लोगों में उठिए बैठिए. आप क्या कहते हैं, दीन से अपने मतलब रिलीजन से दूर मत होइए. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको गलत सही पता है ना, तो आप बहुत सी चीज़ों से, आजकल की जनरेशन को मैं ये बोलूँगी, गलत सही पता है तो आप बहुत सी चीज़ों से रुक जाते हैं. आपको आपका रिलीजन, आपकी वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, वो सब चीज़ें अगर आप साथ लेके चलेंगे तो ये जेन जी, ये मिलेनियल, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे ही दिए गए नाम है. तो ये आप इनको पीछे छोड़ देंगे, बस यही मेरा मैसेज है.
1: बेसिकली जो एक एक ग्रास रूट लेवल पे अगर आपको पता है ना कि क्या सही है क्या गलत, जैसे हम पहले कहते थे ना कि इनके साथ बच्चा हो बुरी संगत है
2: जी,
1: बट वो अभी ऐसा ना कि आप जानेंगे नहीं कि बुरा क्या, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि
2: एग्जैक्टली एग्जैक्टली
1: वो एक
2: आपको पता भी होना चाहिए. ये नहीं कि आप नॉलेज ना रखें, नॉलेज आप हर चीज की रखें, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये गलत है और ये सही है, और मेरे लिए क्या गलत है, आपको रास्ता ये बताना चाहिए मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है. उसके लिए अगर आपको किसी भी टाइम पेरेंट्स की हेल्प भी चाहिए तो आप डरे नहीं, परेशान नहीं हो, वो आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी. ये ट्रस्ट रखें, कन्वर्सेशन बहुत जरूरी, और आप ट्रस्ट रखें कि वो आपको गलत नहीं लेंगे. मुझे लगता है कि ये जो बीच का जो बैरियर हम लोगों ने पेरेंट्स का और जो बच्चों का बनाया ना, ये भी गलत है. आप उस पे थोड़ी सी फ्रेंडशिप को रखें. ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी है,
1: छुपाते छुपाते ना कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर पड़ जाता है बाद में,
2: और फिर आप गलत तरफ भी जा सकते हैं. आप ये देखिए ना, आपको
1: कंट्रोल नहीं हो सकती.
2: एग्जैक्टली, आपके हाथ से तो गई फिर.
1: ओके लास्टली कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ स्टूडियो में आने का?
0: बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, पता भी नहीं चला टाइम का.
1: मैंने तो बोला था, देखो मैंने शुरुआती वादा कर लिया था.
2: और आपसे मिलकर तो लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम नहीं, मैं वैसे पहले भी एक दफा आपसे मिली थी, मेरा ख्याल है कोई मॉल में कुछ ऐसे हुआ था.
1: अच्छा मॉल में, हाँ हाँ हाँ,
2: कुछ इस तरह से कोई था, कोई ओकेजन था, कोई मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं 18 दिसंबर का था या कोई था.
1: अच्छा, पर आपके लिए तो पहली मरतबा माइक पे था ना यहाँ पे, ऐसे
2: माइक में मेरे साथ
0: फर्स्ट टाइम. यस,
1: तो फिर आपका एक्सपीरियंस जानते हैं कैसा रहा आपके.
2: हाँ जबरदस्त, बहुत अच्छा.
1: अभी एकदम चिल है ना, आपने बोला थोड़ा सा.
2: हाँ अभी तो मैं कह रही हूँ आप इधर आ जाए, मैं उधर आ जाती हूँ.
1: वेरी नाइस. मुझे लगता है दोनों को ना साथ में कुछ पॉडकास्ट वॉडकास्ट कर लेनी चाहिए साइड में, बहुत बढ़िया जाएगी आपकी बातों को अगर आप पूरा पॉडकास्ट में तब्दील करते हैं. हाँ वीडियो छोड़ो,
2: पहला गेस्ट आपको बुला लूं फिर.
1: बिल्कुल, कोई मसला ही नहीं है. ऑडियो फॉरवर्ड में चेप दें, वीडियो की भी जरूरत नहीं, आराम से घर में बैठे बैठे सुबह पे अंडे खाते खाते.
2: Don't forget.
1: But that's a very genuine advice. I'm not just saying it for the sake of it.
2: और पूरी टीम का पूरी टीम है, आप ये देखें.
1: हाँ भाई, अरे बहुत अच्छी चीज है.
2: वही तो कह रही
1: हूँ. वो ये नहीं खाता, वो नहीं खाता.
2: Conscious रहना.
1: But thank you so much, आप दोनों यहाँ पर आए हैं. And it's been a pleasure.
0: Thank you for inviting us.
1: I really wish you all the best.
0: Thank you so much.
1: तुम्हारे जरिए बहुत सारे लोग और इंस्पायर होंगे इस फील्ड की तरफ भी आने के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इस बारे. But I wish you all the best and thank you so much for आने के लिए. अपना ख्याल रखिए, आप जरूरी है.
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
3: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
4: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
4: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
5: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि

0: जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवश खान और शो है ये हदीस टू हैबिट, जिसमें आप जानते हैं कि हर दफा हम आपके लिए लेकर आते हैं एक टॉपिक जिसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो आज भी मेरे पास एक टॉपिक है और इसकी मुनासबत से हम हदीस भी शामिल करेंगे और समझेंगे कि दीन हमें इसके बारे में क्या समझाता है। तो चले शुरुआत करते हैं शो की। आज हमारा टॉपिक है बीमार की आयादत करना। आपने यकीनन कई बार सुना होगा कि इस्लाम में बीमारों की आयादत को काफी ज्यादा अहमियत दी गई है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, इसका क्या फर्क पड़ता है माशरे पे, ये सब कुछ इंशाल्लाह आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी पे गौर करें तो हमें एहसास होता है कि हम कितने लोगों से रोज मिलते हैं, बात करते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन इसी मसरूफ जिंदगी में बाज़ औक़ात हम अपने ही करीबी लोगों को, उनके एहसासात को नजरअंदाज कर देते हैं। खास तौर पर जब कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। वो अपने मामूल के काम नहीं कर पाता, घर या बिस्तर तक महदूद हो जाता है और उसकी जिस्मानी हालत के साथ साथ उसकी जहनी कैफियत भी मुतासिर होती है। ऐसे वक्त में सिर्फ मेडिसिन काफी नहीं होती, इंसान को मेडिसिन के साथ साथ मोहब्बत, तवज्जो और एहसास की भी जरूरत होती है। और यही वो जगह है जहां इस्लाम हमें एक बहुत खूबसूरत सबक देता है, बीमार की आयादत, यानी किसी बीमार शख्स के पास जाना, उसका हालचाल पूछना, उसके लिए दुआ करना और उसे तसल्ली देना। ये सब सिर्फ इखलाकी काम नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है। आज की दुनिया बहुत तेज रफ्तार हो चुकी है, हर शख्स किसी ना किसी मसरूफियत में लगा हुआ है, कोई पढ़ाई में, कोई नौकरी में, कोई कारोबार में, और हर वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया भी हमारी तवज्जो को तकसीम कर रहे हैं। इस तेज जिंदगी में इंसान अक्सर जज्बाती तौर पर दूर हो जाता है। हम लोगों से बात तो करते हैं लेकिन दिल से जुड़ नहीं पाते। अब जरा सोचें, जब कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है? उसकी पूरी रूटीन रुक जाती है, वो कमजोर महसूस करता है, अकेला रह जाता है और अक्सर अपने ख्यालात में गुम हो जाता है। बाज़ औक़ात उसे लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन वो पीछे रह गया है। यह एहसास अकेलापन बहुत तकलीफ दे होता है। औकात बीमारी से ज्यादा तकलीफ ये एहसास देता है कि कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया। ऐसे में एक छोटा सा अमल, एक मुलाकात, एक फोन कॉल या एक मैसेज किसी इंसान की पूरी कैफियत बदल सकता है। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, जैसे नमाज, रोजा या हज, इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी का निजाम है जो हमें इंसान बनना सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, बीमारों की आयादत करें और कमजोर लोगों का सहारा बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा कराम की आयादत फरमाया करते थे। जब कोई सहाबी बीमार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले जाते, उनका हाल पूछते, उनके पास बैठते और उनके लिए दुआ फरमाते। यह अमल सिर्फ रस्मी नहीं होता था بلکہ ایک محبت بھرا تعلق ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بیمار کے دل کو سکون دے دیتی تھی۔ وہ شخص محسوس کرتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہیں۔ یہی وہ اعلی اخلاق ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بڑا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت کم ہے، وسائل محدود ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بڑا کام چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ بیمار کی عیادت ایک ایسا عمل ہے جس میں نہ زیادہ پیسے لگتے ہیں نہ زیادہ وقت، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص بیمار ہے، وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، کمزور ہے اور دل سے اداس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس آ کر صرف اتنا کہے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جلد صحت دے، تو یہ جملہ اس کے دل میں امید جگا سکتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کی فکر کر رہا ہے، یہی احساس اس کے دل کو طاقت دیتا ہے۔ انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان دل اور جذبات بھی رکھتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اور زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے، اس کا حال پوچھے اور اس کے ساتھ چند منٹ بیٹھ جائے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم صرف جسمانی مدد نہ کریں بلکہ جذباتی سہارا بھی بنیں۔ اگر ہم اس سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارا معاشرہ بہت بدل سکتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، رشتوں میں محبت بڑھے گی، دل نرم ہوں گے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا سیکھ جائیں گے۔ یہی وہ معاشرہ ہے جس کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایک ہمدرد، محبت بھرا اور جڑا ہوا معاشرہ۔ لسنرز، آج ہم نے یہ سمجھا کہ بیمار کی عیادت صرف ملاقات نہیں بلکہ عبادت ہے، ایک ایسا عمل جو انسان کے دل کو جوڑتا ہے، امید دیتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف دوسروں کے لیے آسانی بنیں گے بلکہ خود بھی اللہ کی رحمت کے نزدیک ہو جائیں گے۔ اور اب وقت ہے حدیث فاؤنڈیشن کا، کیونکہ جب ہم کسی عمل کو صرف اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں تو اس کا اثر ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی

बुलाया और फरमाया, ए बरीरा, क्या तुमने आयशा के बारे में कभी कोई ऐसी बात देखी जिससे शक पैदा हो? बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ईमान से जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, जिस जात ने आपको हक के साथ भेजा, मैंने उनमें कभी कोई बात ऐसी नहीं देखी जो शक पैदा करे। हाँ, वो अभी कम उम्र है, कभी कभी आटा गोंद कर सो जाती है और दाजन यानी बकरी या मुर्गी जो भी हो ये आकर खा जाती है। बस यही। ये सुनकर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मजीद बोझल हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दिन मिंबर पर चढ़े। मदीने की मस्जिद नबवी में मजमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों के गुरोह, उस शख्स के बारे में तुम मेरा क्या ख्याल रखते हो जो मेरी इज्जत पर हमला कर रहा है? अल्लाह की कसम, मैंने अपने अहले बैत में हमेशा खैर देखी है और जिस मर्द का वो जिक्र करते हैं मैंने उसे भी सिर्फ भलाई में देखा है। वो मेरे अहले खाना के पास कभी नहीं आता मगर मेरे साथ। ये सुनकर साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो कबीले औस के सरदार थे खड़े हो गए और पुकारा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दिफा के लिए हाजिर हूँ। अगर ये शख्स हमारे कबीले औस से हुआ तो मैं खुद उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, और अगर वो हमारे भाई खजरज में से हैं तो हमें हुक्म दीजिए, हम फौरन अमल करेंगे। ये सुनकर कबीले खजरज के सरदार साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें उस वक्त कबाइली गैरत ने जोश में कर दिया था, खड़े हो गए और बोले, तुम झूठ कहते हो, खुदा की कसम तुम न उसे कत्ल कर सकोगे और न ही इजाजत पाओगे। अगर वो तुम्हारे कबीले का होता तो तुम कभी ना चाहते कि वो कत्ल किया जाए। अब मंजर बदल गया। औस और खजरज के दरमियान एक बार फिर पुरानी रकाबत जाग उठी और नौबत यहां तक आ पहुंची कि दोनों कबीले तलवारों पर हाथ रखने लगे। मस्जिद में शोर बढ़ने लगा। गुस्सा, गैरत और गलत फहमियों का तूफान था। और सुत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े दोनों तरफ के लोगों को प्यार, हिल्म और हिकमत से थामने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लोगों, रुक जाओ, रुक जाओ, ये शैतान की फूंक है। आखिरकार सब खामोश हो गए और मस्जिद में सन्नाटा छा गया। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं उस दिन रोई, इतना रोई कि आंसू थमने का नाम न लेते थे। मेरी आंखें सूज गई, दिल भारी हो गया और दो दिन और एक रात बगैर नींद के गुजर गई। मुझे लगता था कि मेरे आंखों के आंसू मेरे जिगर को फाड़ डालेंगे। और जब मैं इसी हाल में बैठी थी, मेरे वालिदैन पास बैठे रोते थे और उसी वक्त एक अंसारी औरत आई, दरवाजा खटखटाया, मैंने इजाजत दी, वो अंदर आई, मेरे पास बैठी और मेरे साथ रोने लगी। सामिन इकराम, ये वो लम्हा थे जब जमीन पर सब्र की इंतहा थी। मजीद वाकये को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। दिल से देसी।
2: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने, अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं है, क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया, वो कहने लगे कि ये शख्स कुछ नहीं है मगर एक बशर तुम ही जैसा। उसकी गरज ये है कि तुम पर बरतरी हासिल कर ले। अल्लाह को अगर भेजना होता तो फरिश्ते भेजता। ये बात तो हमने कभी अपने बाप दादा के वक्तों में सुनी ही नहीं कि बशर रसूल बनकर आए। कुछ नहीं, बस इस आदमी को जरा जुनून लाहक हो गया है, कुछ मुद्दत और देख लो, शायद अफाका हो जाए। नूह ने कहा, परवरदिगार, इन लोगों ने जो मेरी तकदीब की है, इस पर अब तू ही मेरी नुसरत फरमा। हमने उस पर वही की कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार कर, फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और वो तन्नूर उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा लेकर उसमें सवार हो जा, और अपने अहलो आयाल को भी साथ ले, सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले फैसला हो चुका है, और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, ये अब गर्क होने वाले हैं। फिर जब तू अपने साथियों समेत कश्ती पर सवार हो जाए तो कह, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें जालिम लोगों से नजात दी, और कह, परवरदिगार, मुझको बरकत वाली जगह उतार और तू बेहतरीन जगह देने वाला है। इस किस्से में बड़ी निशानियां हैं और आजमाइश तो हम करके ही रहते हैं। उनके बाद हमने एक दूसरे दौर की कौम उठाई, फिर उनमें खुद उन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा जिसने उन्हें दावत दी कि अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है, क्या तुम डरते नहीं हो?

देता है कि जब तुम मर कर मट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पिंजर बन जाओगे उस वक्त तुम कब्रों से निकाले जाओगे। बाईद, बिल्कुल बाईद है ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है। जिंदगी कुछ नहीं है मगर बस यही दुनिया की जिंदगी, यही हमको मरना और जीना है और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं। ये शख्स खुदा के नाम पर महज झूठ कर रहा है और हम कभी इसकी मानने वाले नहीं हैं। रसूल ने कहा, परवरदिगार इन लोगों ने जो मेरी तकदीब की है इस पर अब तू ही मेरी नुसरत फरमा। जवाब में इरशाद हुआ, करीब है वो वक्त जब ये अपने किए पर पछताएंगे। आखिरकार ठीक ठीक हक के मुताबिक एक हंगामे आजीम ने उनको आ लिया और हमने उनको कचरा बनाकर फेंक दिया। दूर हो जालिम कौम। फिर हमने उनके बाद दूसरी कौमें उठाई। कोई कौम न अपने वक्त से पहले खत्म हुई और न उसके बाद ठहर सकी। फिर हमने पे दर पे अपने रसूल भेजे। जिस कौम के पास भी उसका रसूल आया उसने उसे झुटलाया और हम एक के बाद एक कौम को हलाक करते चले गए, हत्ता के उनको बस अफसाना ही बनाकर छोड़ दिया। फिटकार उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियों और खुली सनत के साथ फिरौन और उसके आयाने सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने तकब्बुर किया और बड़ी दूंकी ली। कहने लगे, क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए, और आदमी भी वो जिनकी कौम हमारी बंदी है। बस उन्होंने दोनों को झुटला दिया और हलाक होने वालों में जा मिले। और मूसा को हमने किताब अता फरमाई ताकि लोग उससे रहनुमाई हासिल करें, और इब्ने मरियम और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक सतह मुर्तफा पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और चश्मे उसमें जारी थे।

हाथ से मदद दिए जा रहे हैं तो गोया उन्हें भलाइयां देने में सरगर्म हैं, नहीं, असल मामले का उन्हें शऊर नहीं है। हकीकत में तो जो लोग अपने रब के खौफ से डरने वाले होते हैं, जो अपने रब की आयात पर ईमान लाते हैं, जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जिनका हाल ये है कि देते हैं जो कुछ भी देते हैं और दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है, वही भलाइयों की तरफ दौड़ने वाले और सबकत करके उन्हें पा लेने वाले हैं। हम किसी शख्स को उसकी मकदरत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते और हमारे पास एक किताब है जो हर एक का हाल ठीक ठीक बता देने वाली है और लोगों पर जुल्म बहरहाल नहीं किया जाएगा, मगर ये लोग इस मामले से बेखबर हैं और इनके आमाल भी उस तरीके से जिसका जिक्र किया गया है मुख्तलिफ हैं। वो अपने ये करतूत किए चले जाएंगे यहां तक कि जब हम उनके अय्याशों को अजाब में पकड़ लेंगे तो फिर वो डकराना शुरू कर देंगे। अब बंद करो अपनी फरियाद, दुफान, हमारी तरफ से अब कोई मदद तुम्हें नहीं मिलनी। मेरी आयात सुनाई जाती थी तो तुम रसूल की आवाज सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलते थे, अपने घुमंड में उसको खातर ही में न लाते थे, अपने चौपालों में उस पर बातें छांटते और बकवास किया करते थे। तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके असलाफ के पास ना आई थी या ये अपने रसूल से कभी वाकिफ ना थे कि अनजाना आदमी होने के बायस उससे बिदकते हैं या ये इस बात के कायल हैं कि वो मजनून है? नहीं, बल्कि वो हक लाया है और हक ही उनकी अक्सरियत को नागवार है और हक अगर कहीं इनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो जमीन और आसमान और उनकी सारी आबादी का निजाम दरहम बरहम हो जाता। नहीं, बल्कि हम उनका अपना ही जिक्र उनके पास लाए हैं और वो अपने जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं।

क्या तू उनसे कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही बेहतर है और वो बेहतरीन राजक है। तू तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो राह रास्त से हट कर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर रहम करें और वो तकलीफ जिसमें आजकल ये मुब्तला है दूर कर दें, तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। इनका हाल तो ये है कि हमने उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, फिर भी ये अपने रब के आगे न झुके और न आजजी इख्तियार करते हैं। अलबत्ता जब नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि हम इन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल दें, तो यकायक तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर खैर से मायूस है। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की कुव्वतें दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। गर्दशे लालो नहार उसी के कब्जे कुदरत में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके पेश रो कह चुके हैं। ये कहते हैं, क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमको फिर जिंदा करके उठाया जाएगा? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा भी सुनते रहे हैं। ये महज अफसाना हाय पारीना है।